0: और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिट से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है, सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारी पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुने योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह 1 केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर

सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योगपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपके स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो। लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें। पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठकर के अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठकर के सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है,

आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें। हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार

विस्तार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति, हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें शौच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है, इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का, गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद कुप मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है।
सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के आंगन सोते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की। तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया। आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और

ओम भूर्भुवस्वः। जीवन की नई ऊर्जा के संग स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो पहली किरण में, जहां सूरज की रोशनी नहीं ईश्वर की ऊर्जा जगती है। मैं हूं आपकी आध्यात्मिक संगिनी आकांक्षा, जो लेकर आ गई है आज का भक्तिमय कार्यक्रम आपके लिए। आज हम सब चलेंगे प्रकृति, ईश्वर और इंसान की उस यात्रा पर जहां सब एक दूसरे से जुड़े हैं अदृश्य लेकिन अमर संबंधों में।

तकलीफ में तेरे सिवा कोई खड़ा नहीं, इसलिए माँ से कोई बड़ा नहीं। घर कैसा भी हो, माँ के बिना अधूरा ही लगता है। माँ वो हस्ती है जिसके बिना हमारी कोई हस्ती नहीं है। ये जिंदगी है जनाब, माँ नहीं जो हर वक्त प्यार दे। एकदम प्रकृति माँ की तरह। जी हाँ, प्रकृति केवल पेड़ पौधा या पहाड़ नहीं, ये माँ है जो हमारे हर श्वास में, हर कण में समाई है, जो सूरज की रोशनी से हमें शक्ति देती है, चांद की चांदनी से हमें शीतलता देती है। और कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। बिल्कुल, माँ और प्रकृति से बढ़के कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इसी ने तो हमें जन्म दिया और ये दुनिया दिखाने का अधिकार दिया। प्रकृति से कट जाना ईश्वर से कट जाना है। जो पेड़ बचाता है वो ईश्वर की पूजा करता है बिना मंदिर जाए। तो चलिए बिना मंदिर जाए एक भजन का श्रवण करते हैं और साथ ही साथ प्रकृति माँ की अनुभूति में भी लीन हो जाते हैं।

कभी आपने सोचा है ईश्वर ने हमें क्या दिया बिना मांगे? सूरज की रोशनी दी, जल की धाराएं दी, वायु की सांसें, सब बिना कोई कीमत लिए मिलते हैं। यही ईश्वर का प्रकृति रूप है। यत्र नार्यत्र पूज्यते रमयते तत्र देवता। जहाँ प्रकृति, नारी और धरती का सम्मान है, वहाँ ईश्वर का निवास है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जैसे बीज में वटवृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हमारी आत्मा में ब्रह्म छिपा है। जब हम ध्यान करते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तब हम ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं। तो चलिए केवल 5 मिनट खुले आसमान में बैठिए, अपनी सांसों को देखिए और प्रकृति के स्पर्श को महसूस करिए। साथ ही साथ सुनिए ये प्यारा सा भजन।

हम सभी को पता है कि माँ से बढ़के कोई नहीं, और सभी धर्मों में भी माँ की ममता एक शाश्वत और सार्वभौमिक सत्य बताया गया है। चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि माँ की ममता से बड़ा वाकई कुछ और नहीं। ये कहानी माँ के निस्वार्थ प्रेम और त्याग की भावना को दर्शाता है, जो सभी धर्मों और संस्कृतियों में समान रूप से पूजनीय है। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी, जिसके पास अपनी बेटी के अलावा और कोई नहीं था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो गई। माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने हिस्से का खाना भी उसे खिला दिया, जिस तरह हर माँ करती है। खुद भूखी रही पर बेटी को भूखा नहीं सोने दिया। एक रात जब माँ अपनी बेटी के साथ सो रही थी, तो उसने देखा कि उसकी बेटी को तेज बुखार है। माँ घबरा गई, उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और रात भर उसे सहलाती रही। सुबह होने तक माँ की हालत भी खराब हो गई। गांव के लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि माँ और बेटी दोनों ही बेहोश पड़ी हैं। वे दोनों को उठाकर एक मंदिर में ले गए। गांव के पुजारी ने जब माँ और बेटी की हालत देखी तो वो समझ गया कि माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। पुजारी ने कहा, ये माँ की ममता है जो सभी धर्मों और संस्कृतियों में एक समान है। ये निस्वार्थ प्रेम और त्याग की भावना है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। गांव के लोगों ने माँ और बेटी की देखभाल की। धीरे धीरे माँ और बेटी स्वस्थ हो गए। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने माँ की ममता का सम्मान करना सीखा। उन्होंने समझा कि माँ की ममता ही सबसे बड़ी भक्ति है। ये कहानी दिखाती है कि माँ का प्यार बिना किसी शर्त के होता है। ये प्यार सभी धर्मों और संस्कृतियों में एक समान रूप से पाया जाता है। माँ की ममता ईश्वर के प्रेम का ही एक स्वरूप है।

हम प्रकृति के उपभोगकर्ता नहीं, हम इसके रक्षक हैं। और हर रक्षक को ईश्वर की विशेष कृपा मिलती है। एक बालक जो रोज एक पौधा लगाता था और बड़ा होकर एक गांव को जंगल बना गया, यही है इंसान का धर्म, सृष्टि को लौटाना। तो चलिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें शक्ति दो प्रकृति को समझने और खुद को बदलने की।

चलिए अब मैं आप सभी को एक और कहानी के माध्यम से इंसानियत की ओर लेके चलूंगी। सभी धर्मों की आत्मा में बसी एक कहानी जिसको मैंने नाम दिया है ईश्वर का स्पर्श। एक छोटा बच्चा हर दिन अपनी माँ से पूछता, माँ ईश्वर क्या है और वो क्या करते हैं? माँ हंसकर कहती, ईश्वर सबकी सेवा करते हैं बेटा। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। बच्चा खुद रसोई में गया, खुद सफाई की, दादी की मदद की। शाम को माँ ने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा क्या किया आज? बच्चा बोला, आज मैंने वही किया जो ईश्वर करते हैं, सेवा। क्योंकि अगर तुम मेरी माँ हो तो तुम्हारे अंदर ही तो ईश्वर रहते हैं। माँ की आंखें आंसू से भर गई और वो जान गई कि ममता, सेवा और प्रेम ही ईश्वर है।

गीता कहती है, अनन्य भक्त के हृदय में ही मैं निवास करता हूँ, और माँ का हृदय सबसे बड़ा मंदिर होता है। इस्लाम धर्म के अनुसार जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, ये एक हदीस है, और प्रकृति अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। हवा, पानी, सूरज, ये सब अल्लाह का करम है। ईसाई धर्म के अनुसार जीजस ने कहा है, लव दाई नाइबर्स, और माँ का प्यार सबसे बड़ा उदाहरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार माता की करुणा बुद्धत्व का बीज है। जो प्रकृति को पीड़ा देता है वो अपने भीतर के बोधिसत्व को मारता है। यहूदी धर्म के अनुसार अ मदर्स प्रेयर रीच गॉड बिफोर द एंजल्स डू, और प्रकृति परमेश्वर की ब्रीथ यानी श्वास है जो सृष्टि में बहती है। ईसाई धर्म में माँ मैडोना मैरी, प्रभु यीशु की माँ को ईश्वर की माँ माना गया। ईसाई धर्म में माँ त्याग, बलिदान और पवित्रता का प्रतीक है। मदर मैरी के आंचल में पवित्रता की सबसे सुंदर छाया मिलती है। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध ने कहा था, माँ का प्रेम अनमोल है जो कभी किसी से बदला नहीं मांगता। बौद्ध दृष्टिकोण में माँ करुणा, दया और सह अस्तित्व का आधार है। यहूदी संस्कृति में माँ को परंपरा की रक्षक, संस्कारों की वाहक और आध्यात्मिक शिक्षक माना जाता है।

अब आपको ले चलते हैं आज की मंथन की ओर। माँ से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं और आत्मा से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। जो अपने मन की ममता को बचा लेता है वो दुनिया में कहीं भी ईश्वर को पा सकता है। हर धर्म का मूल एक ही है, प्रेम दो, सेवा करो और प्रकृति की रक्षा करो। माँ, ममता और प्रकृति, ये तीनों ही ईश्वरीय सत्ता के अलग अलग रूप हैं और हर धर्म, हर संस्कृति ने माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। आइए माँ की इस अद्भुत महिमा को हम हर धर्म की रोशनी में समझें। हिंदू धर्म में माँ मातृ देवो भव, माँ ही भगवान है। वेदों और उपनिषदों में माँ को सर्वप्रथम पूज्य कहा गया है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सभी स्त्री और माँ के ही स्वरूप है। माँ धरती है, माँ गंगा है, माँ शक्ति है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इस्लाम में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। उसकी सेवा, उसकी दुआ, उसके आंसू अल्लाह तक सीधे पहुंचते हैं। माँ की नाराजगी रब की नाराजगी मानी जाती है।

सिख धर्म में माँ, गुरु ग्रंथ साहिब में भी माँ को संस्कारों का बीज, कर्तव्य की प्रेरणा और पवित्र आत्मा का माध्यम कहा गया है। माता खीमा बख्शीश दीखान, जिथे बच्चे पल दे सच दे। माँ वो खेमा है जिसमें बच्चा सच में पलता है। तो चलिए, माँ की इतनी सारी महिमा अब हमने जान ही ली है, तो चलिए अब उस माँ के चरणों में एक भेंट अर्पण करते हैं।

माँ प्रकृति और इंसानियत। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो धरती की तरह सहती है, जल की तरह बहती है, आकाश की तरह सब कुछ समेट लेती है। माँ रोती नहीं पर अंदर से टूट जाती है, फिर भी मुस्कुराती है। वो इंसान नहीं, इंसानियत की जड़ है। जब कोई धर्म, कोई किताब, कोई महापुरुष माँ को ईश्वर से भी ऊंचा माने, तो समझ लीजिए माँ खुद ही एक धर्म है, एक आध्यात्म है, एक पूजा है। और माँ सृष्टि की सबसे पवित्र पहचान है, हर धर्म हर आत्मा की सबसे मूल शक्ति वो है माँ।

आध्यात्म में माँ का स्थान ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था बताया गया है। जब कोई साधक आंखें बंद करता है तो उसकी आत्मा सबसे पहले माँ की मूरत को देखती है। माँ का नाम जपने मात्र से शांति मिलती है। माँ हर पंथ हर विचारधारा में एकमात्र अटूट प्रेम है। जैन धर्म में माँ को जन्मदाता नहीं धर्मदाता कहा गया है। पारसी धर्म में माँ प्रकृति की शुद्धता और नैतिकता का स्रोत मानी जाती है। आदिवासी परंपराओं में माँ को भूमि अग्नि और जल की देवी कहा गया है। माँ की गोद में ईश्वर की गोद जैसा सुकून होता है। तो चलिए इस सुकून की अनुभूति करते हैं इस माँ की भेंट के माध्यम से।

माँ और इंसानियत दोनों बिना स्वार्थ के जीती हैं। माँ बिना शर्त प्यार करती हैं। इंसानियत भी वही है जो बिना मतलब किसी के आंसू पोछे। माँ भूखी सो सकती है पर बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। इंसानियत वही है जो दूसरों के लिए जीना सिखा दे। इसलिए माँ और इंसानियत एक दूसरे का प्रतिबिंब है। चलिए आपको अब माँ के स्पर्श से जुड़ा एक सूफियाना विचार सुनाती हूँ। माँ की हथेली पर खुदा की मोहब्बत उतरती है और उसकी दुआओं में जन्नत से भी बेहतर ठिकाना मिलता है। और अब आज के एपिसोड की आखिरी बात, माँ पर कोई धर्म नहीं होता, बेशक उसका कोई मजहब नहीं, पर हर मजहब उसी से शुरू होता है। उसकी कोई भाषा नहीं, पर हर प्रेम उसी की बोली से जन्मता है। उसकी कोई सीमा नहीं, पर हर जीवन उसी की गोद में सीमित होता है। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो सब अधूरा है। माँ रब की रचना नहीं, बल्कि रब भी शायद माँ की रचना हो। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं लूंगी आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री राम, अल्लाह हाफिज़।

हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जाए खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा, मगर ये कहूंगा
1: क्या
0: यही है यही तो है वो मीना मीना।

0: क्या बात है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉकर जतना। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो के 99.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। सो भाई आ गए हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान और आपने ट्यून कर लिया अपना गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो यस ऑफ कोर्स भाई आज का जो दिन है वो है सैटरडे, यानी कि सीधी सी बात कहा जाए तो आज वीकेंड है। और अगर वीकेंड है तो वीकेंड वाली बात भी होनी चाहिए और वीकेंड वाला समा भी होना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत कुछ है जो आपसे कहा जा सकता है, सुना जा सकता है, जाना जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। सो चलिए पहले आज जानेंगे कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, क्योंकि हर रोज़ का थॉट ऑफ द डे हमारे लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर देकर जाता है और हमको काफ़ी कुछ मिल जाता है इस नएपन से, क्योंकि हर रोज़ का जो नया दिन होता है वो एक नई लाइफ लेकर के आता है। और जब कुछ नई लाइफ मिलती है हमको तो हमको एहसास होता है कि रोज़ करने को जो है वो बहुत कुछ है और ये जो करना है ये हम ही को करना है, राइट। चलिए फिलहाल अब आपको ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, आज का थॉट हमसे कहना क्या चाहता है, आज के थॉट मुलाकात में आपसे क्या बात कह रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आर जे अदनान। दिन है सैटरडे का, मॉर्निंग है शो और मॉर्निंग जॉक है आर जे अदनान।
1: Now you're listening गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आर जे अदनान।

सो वैसे तो हमेशा से हम एक बात बहुत ज्यादा करते चले आते हैं, यानी हर कोई बड़ा ही कॉमन सा बोलता है एक स्टेटमेंट कि भाई लाइफ में उद्देश्य होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम भी मानते हैं और कहते हैं कि हर रास्ता किसी मंजिल को जाता है, पर आज का थॉट कहता है ऐसा नहीं है।

अर्थ आपके लिए वो जरूरी चीजें हैं, राइट सो ये सब कुछ है आपके लिए उन रस्तों पर जिन रस्तों की कोई फिलहाल मंजिल नहीं है। ये कहना मेरा नहीं है बल्कि आज के थॉट ऑफ द डे का कहना है, यानी आज का थॉट कहता है कि ये जो मंजिल है जरूरी नहीं है कि किसी रास्ते पर जाए। बिल्कुल, आई होप कि आपको आज का थॉट ऑफ द डे काफी ज्यादा पसंद आया होगा। फिलहाल आपको ले चलते हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक के लिए, और उसके बाद आज बताने को है काफी कुछ, यानी काफी ज्यादा आपके काम की जानकारी है, कुछ तो इंस्टाग्राम से जुड़ी है और कुछ है पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई बात जो आप तक पहुंच जानी चाहिए। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।

जिस पे आप काफी ज्यादा वक्त बिताते हो और अगर उसी को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाए या उसका नया वर्जन मिल जाए तो आप क्या करोगे? शायद एक्सप्लोर करना चाहोगे, जानना चाहोगे। सो इंस्टाग्राम ने कर दिया है लॉन्च इंस्टाग्राम प्लस। अब जब नाम ही इंस्टाग्राम के आगे प्लस लगाया गया है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो इसमें प्लस होने वाले हैं, यानी वो फीचर्स जो थे ही नहीं वो अब इसमें ऐड हो जाने वाले हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल को लेकर के अब एक मात्रा फिक्स की गई है, उससे ज़्यादा आप फ्यूल नहीं ले सकेंगे। फिलहाल एकदम हाल ही फिलहाल में ये चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए आपको रूबरू कराएंगे इन दोनों ही बातों से, लेकिन उससे पहले छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM।

0: फिलहाल सरकार ने पेट्रोल डीजल खरीदने के कुछ नियम जो है वो बदल दिए हैं, और आई होप कि भाई आप भी कंज्यूमर हैं, आप भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप तक ये खबर जानी और आपके जरिए समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, Ajay Khan.

उससे पहले आया है दो कमेंट चैट बॉक्स पर, क्योंकि आपने ट्यून किया है 89.6 एफएम को फ्रीक्वेंसी से रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के एप्लीकेशन से, जो आपको मिलता है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर। आपको सिंपली जाना होता है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर, टाइप करना होता है RADIO रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली GYANASTHALI ज्ञानस्थली, और इतना ही टाइप करते हुए आपका आ जाता है लाल और काले रंग के आइकन में एप्लीकेशन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। सो भाई दो मैसेजेस में कमल नैन जी का है, आरजे सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू कमल नैन जी, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में, इम्तियाज अहमद मौजूद हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड आप सभी का इस्तकबाल है एक बार वापस से आपके अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो चलिए भाई जान लेते हैं, बहुत ज़रूरी अपडेट है और आप तक आनी भी ज़रूरी थी। सो नए नियम में क्या क्या है, सबसे पहले बात तो देखिए, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल यूज़र्स के लिए रिटेल पंपों से बल्क ख़रीद पर अब रोक हो गई है। सो प्रति ग्राहक या प्रति वाहन को एक दिन में 200 लीटर की ख़रीद की लिमिट है, यानी उससे ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे। चाहे एक ग्राहक को 200 लीटर मिलेगा या प्रति वाहन को एक दिन में 200 लीटर। सो ये नियम फ़िलहाल 90 दिनों के लिए लागू किए गए हैं, ज़रूरत पड़ने पे इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सो आखिर क्यों लगाया बल्क ख़रीद पर बैन, इस सवाल का जवाब हम आपको बता देते हैं कि कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग और ईंधन की किल्लत रोकने के लिहाज से इसे लगाया गया है। थोक और रिटेल कीमतों में बड़े फ़र्क की वजह से यूज़र्स रिटेल पंपों से ख़रीद रहे थे, इससे आम जो उपभोक्ता हैं उनके लिए जो सप्लाई है वो अफेक्ट होने का ख़तरा मंडरा रहा था। यही वो वजह है कि इन नियमों को वो चेंज किया गया है, इसीलिए अब प्रति व्यक्ति या फिर प्रति वाहन आपको 200 लीटर का ही पेट्रोल डीजल मिलेगा, जो फ़िलहाल 90 दिनों के लिए ये नए नियम

लागू किए गए हैं। आई होप कि ये जानकारी आप ज़रूर अपने जहन में रखेंगे, क्योंकि हो सकता हो आप दूर कहीं खेतों से सुन रहे हों और आपको सिंचाई के लिए चूँकि पंपिंग सेट लगाने पड़ते हैं जिसमें डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, या कई बार अदर फंक्शंस में होता है, या कमर्शियल पर्पस होता है, इंस्टीट्यूशनल पर्पस होता है, सो कई सारे पर्पसेस होते हैं, और उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इस पर बैन लगाया गया कि भाई 200 से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। आई होप कि ये जानकारी आपके काम की रही होगी और ये आप बाकी लोगों तक भी ज़रूर पहुंचा देने वाले हैं। फ़िलहाल हम चल रहे हैं एक ख़ूबसूरत सा गाना सुनने की तरफ, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो आने के बाद इंस्टाग्राम को जो प्लस किया गया, आखिर उस प्लस में क्या है ऐसा जो काफ़ी अलग बना रहा है इंस्टाग्राम को,

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलो भाई चन्ना वे घर आ जाओ, और अगर अभी भी नींद आ भी है तो अब नींद को कहो बाय बाय, और एनर्जी को कहो आ जा वे आ जा नींद चला जा। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग शो का अर्जुन मान, और वक्त 9:46 और साथ ही साथ वक्त हो गया है आपको बताने का इंस्टाग्राम प्लस के बारे में। सो भाई जैसा कि आप नाम से सुन रहे हैं इंस्टाग्राम में प्लस कुछ हुआ है, तो क्या है ये इंस्टाग्राम प्लस के फीचर और इस इंस्टाग्राम पे आपको क्या कुछ मिलने वाला है, आइए ये बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग जॉक गुड मॉर्निंग गोंडा में सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: Are you listening? Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

सो भाई क्या है ये प्लस वाला, आइए बताते हैं आपको कि इस प्लस में क्या कुछ हो रहा है। सो इंस्टाग्राम प्लस क्या है, इंस्टाग्राम का पेड सब्सक्रिप्शन है ये, क्योंकि इसमें कई सारे फीचर्स और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले तो है सुपर हर्ट। अब ये सुपर हर्ट क्या है, सो दोस्तों की स्टोरी पर खास रिएक्शन स्क्रीन पर कलरफुल हर्ट एनिमेशन दिखेगा और प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए एक्सक्लूसिव फीचर होगा। इस पर फीचर्स की बात करें तो एक्सटेंडेड स्टोरी होगी, स्टोरी 24 नहीं 48 घंटे तक दिखेगी इसमें। इसके अलावा स्टोरी स्पॉटलाइट होगा, यानी स्टोरी को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का ऑप्शन, जैसे जो देख पाते हैं खुद से उन्हीं तक दिख पाता है जो हमारे कॉन्टैक्ट में होते हैं। बट इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्टोरी पहुंचाने का इसमें ऑप्शन होगा, जिसका नाम होगा स्पॉटलाइट। इसके अलावा ये मल्टीपल ऑडियंसेस के लिए होगा। जी हाँ, हर स्टोरी के लिए अलग अलग स्टोरी ग्रुप बना सकते हैं, यानी जैसे आपकी जेंट्री है कि कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी है, कुछ को बॉलीवुड में, कुछ को हेल्थ में, जिम वगैरह को, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग में, कुछ लोगों को सिंगिंग में, जो भी आप लगा रहे हैं स्टोरी उसके ग्रुप्स बना सकते हैं कि उसी ग्रुप को फिर वो शो हो। स्टोरी में नए बदलाव होंगे, जैसे स्टोरी प्रीव्यू होगा, बिना रिएक्ट किए स्टोरी देख सकेंगे अगर आप इंस्टाग्राम प्लस का इस्तेमाल करेंगे, और स्टोरी रीवॉच इनसाइट्स होगा, यानी स्टोरी कितनी बार देखी गई है ये भी पता चल जाएगा कि स्टोरी को कितनी बार देखा गया है इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा किसी ख़ास इंसान ने स्टोरी देखी या नहीं देखी ये भी चेक करने का ऑप्शन होगा, जिसका नाम होगा सर्च व्यूअर लिस्ट। इसमें जा करके आप उस शख्स को उसकी स्टोरी देख सकते हैं जिसके लिए स्पेशली आपने लगाया है। इसके अलावा प्रोफाइल को अपनी पसंद जैसा बना सकते हैं, आप अपनी पसंद का ऐप आइकन चुन सकते हैं, बायो का फॉन्ट बदल सकते हैं, 6 पोस्ट तक पिन कर सकते हैं, पोस्ट सीधे प्रोफाइल हाईलाइट में जोड़ सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं इंस्टाग्राम प्लस में। सो जाहिर सी बात है मेटा ने जब ये लॉन्च किया है इंस्टाग्राम प्लस, तो कहीं ना कहीं इसका अपना सब्सक्रिप्शन प्राइस भी होगा। तो आपको बता दें 299 रुपये पर मंथ इसका जो है वो सब्सक्रिप्शन प्राइस है इंस्टाग्राम प्लस का, और ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। वैसे तो भाई हमें यूजुअली लगता है कि हम लोग का बाकी काम चल ही जाता है, प्लस तक के लिए क्यों आना, लेकिन हो सकता है इसमें से कई लोग ऐसे हों जिनका नहीं हो कि भाई प्लस जैसे एप्लीकेशंस उनको चलाने हैं। सो ऑफकोर्स यू कैन गो, और कहीं ना कहीं भाई इस बात का भी ये समझ रहती है कि हम अपने टूल्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। कई बार पर्सनल तक ही चीज़ें रह जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि उसको हम प्रोफेशनल टूल की तरह, उसको मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं और भर भर के उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो अगर ऐसा है तो अच्छी बात है कि आप जो है कॉमर्शली भी उसको यूज़ करना चाह रहे हैं और उसके फीचर्स का आप सीधा सीधा फ़ायदा उठाते हैं।

कस्टमर्स क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए। फिलहाल आज बातों में तो काफ़ी कुछ है, क्योंकि आज है सैटरडे मॉर्निंग, सुबह चीत भी चलती रहेगी और गाने भी प्ले होते रहेंगे। फिलहाल अगले म्यूजिकल ब्रेक का वक्त आ गया है और आरजे अदनान आपके साथ लाइव हैं आपके अपने 89.6 FM से।

अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास।

0: ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: हम बबलू बालेश्वरगंज से, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या, चलिए हम बताते हैं क्या। दरअसल जिस एग्ज़ाम को लेकर के इस वक्त पूरे नेशनल लेवल पे काफ़ी गहमा गहमी चल रही है, यानी नीट को लेकर के, फ़िलहाल नीट 2026 की अपडेट एक आ गई है। सो नीट री एग्ज़ाम स्टूडेंट्स को क्या मिलने वाला है इस बार, री एग्ज़ामिनेशन में कुछ बदलाव किया है NTA ने या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, क्या बदलाव किए हैं इस बार नीट का जो पेपर वापस से अब हो रहा है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, आइए हम आपको बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

नीट को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी देखी गई और लगातार प्रदर्शन भी हुए और काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ भी हुई, लेकिन इसी बीच में एनटीए ने कुछ बदलाव भी किया है। सो एनटीए ने नीट यूजी 2026 री एग्ज़ाम को लेकर के स्टूडेंट्स की फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव किए हैं। सो जो स्टूडेंट्स मई में हुई परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये अपडेट है। अब 21 जून 2026 को होने वाली एग्ज़ाम में उन्हें 15 मिनट का ज़्यादा वक्त मिलेगा। जी हाँ, सो एनटीए के हिसाब से नीट यूजी 2026 री एग्ज़ाम का वक्त दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक रहेगा, यानी कुल 195 मिनट्स 3 घंटे 15 मिनट का वक्त मिलेगा। इसे एक्स्ट्रा 15 मिनट में एग्ज़ाम शुरू होने से पहले की जो औपचारिकता हैं, जैसे अटेंडेंस शीट पर साइन करना, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, बाकी जो सुरक्षा प्रक्रियाएं शामिल हैं, सो इससे स्टूडेंट्स को पूरा वक्त पेपर सॉल्व करने के लिए मिल सकेगा, उन्हें प्रशासनिक कामों की वजह से वक्त की कमी महसूस नहीं होगी। सो किस तरह से ये ऑफकोर्स हो सकता है आपके लिए बेहतर, ये भी आप समझ सकते हैं कि 15 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं ताकि साइन हो जाए, चेकिंग जो करना है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ वक्त ज़ाया हो जाता है। और अब पूरा पूरा 3 घंटे मिल पाएंगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। सो एनटीए का ये बदलाव इस बार आया है जो नीट का दोबारा से एग्ज़ाम हो रहा है, यानी री एग्ज़ाम हो रहा है। सो चलिए, अच्छी बात है। फिलहाल आप अपने ज़रूर विचार रख करके बता सकते हैं और हम आपको ले चलते हैं म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, क्योंकि आने के बाद भी कुछ है जो काफ़ी ख़ास है। आपको बने रहना है अपने मॉर्निंग वाले शो मॉर्निंग वाले जॉक आरजे अदनान के साथ। और अब हम आपको ले चलते हैं एक बेहतरीन खूबसूरत से गाने की तरफ, जिसको सुन करके दिल मचल जाने वाला है।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में, क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
7: कहाँ गए थी 4 घंटे से गुलगुली?
8: मॉल गई थी शॉपिंग पे।
7: मॉल? मॉल से क्या क्या लिया?
8: एक हेयर क्लिप और 45 सेल्फी।
7: है?

0: सो भैया जून, और वो भी 13 जून, यानी मेरा भी नहीं 13 जून है भाई, 13, यस। तो इस जून के मंथ में अभी जो ज़्यादातर लोगों से बात हो रही है या जितने मिल जाते हैं उनसे हालचाल में, ये समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं टूर करके आए हैं या करने जा रहे हैं या टूर पे हैं। सो ऐसे वक्त में जब छुट्टियां हो जाती है और फैमिली निकलती है टूर करने, ट्रैवल करती है, और बहुत सारी जगह लोग घूम करके जाते हैं, लेकिन अक्सर देखा है कि घूम कर आते हैं लेकिन बीमार होकर के घर में अंदर वापस आते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ है ना कि घूमने निकले थे और जब लौटे तो बीमार हो गए? ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। सो छुट्टियों पे जो है बच्चों के साथ स्पेशली ऐसा क्यों होता है कि ये घूमने तो जाते हैं लेकिन बीमार हो करके लौटते हैं? आइए आपको बताते हैं रीज़न क्या है इसके पीछे और किस तरह से हम इस बात का ख्याल रखें तो फिर कहीं ना कहीं हम ये बीमारी भी दूर कर सकते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.

सो स्पेशली होता है कि जब बच्चे टूर पे जाते हैं तो वो बीमार होकर के वापस आते हैं। सो क्या है ये हॉलीडे इम्यूनिटी डिप? जी हाँ, इसका नाम दिया गया है हॉलीडे इम्यूनिटी डिप। सो इसमें होता ये कि बच्चे जो हैं अपनी जो नियमित दिनचर्या है इसमें बेहतर रहते हैं, और छुट्टियों में इनका जो रूटीन

है वो बिगड़ जाता है, जैसे उठने का वक्त, सोने का वक्त, चलने खेलने का वक्त, खाने का वक्त, ये सब बिगड़ जाता है। छुट्टियों के दौरान या फिर लौटने के बाद बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। होता क्या है, खांसी, ज़ुकाम या फिर पेट में कोई संक्रमण हो जाता है, यानी एलर्जी, थकान, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। सो छुट्टियों में बच्चों के ज़्यादा बीमार पड़ने की वजह क्या है, सोने जागने खाने पीने का टाइम टेबल बिगड़ जाता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको। इसके अलावा घर के जो पौष्टिक खाने हैं उसकी जगह, जाहिर सी बात है, अगर बाहर आप गए हैं घूमने तो वहाँ पर आपको बाहर का ही सामान मिलेगा, जिसमें स्पेशली जंक फूड और स्वीट ड्रिंक्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। एयरपोर्ट हुआ या ट्रेन से जा रहे हैं, होटल हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, चूँकि वायरस बैक्टीरिया भी होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट में आने की भी संभावना जो है वो बढ़ जाती है। सो रूटीन बिगड़ने से नींद ख़राब हो जाती है और इससे इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो सकता है। सो गर्मियों में डिहाइड्रेशन की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। सो बच्चों को हॉलीडे इम्यूनिटी डिप से बचाना कैसे, देखिए सबसे पहले तो पानी अच्छे से पिलाएं जितनी ज़रूरत होती है। दूसरी बात है बैलेंस्ड खाना दें, जी हाँ, जिसको हम बैलेंस्ड भोजन बोल सकते हैं, डाइट बोल सकते हैं, संतुलित भोजन बोल सकते हैं। हाथों की सफाई अच्छे से कराना सिखाएं, जो मतलब एक हैंड वॉश का सही प्रॉपर तरीका है, कुछ टाइम तक अच्छे से उसको मलते रहना, उसके बाद हाथ के हर हिस्से के उंगलियों के बीच में, ताकि कहीं कोई ऐसा बैक्टीरिया बचाना रह जाए। इसके अलावा आउटडोर एक्टिविटी के बीच में आराम, अगर बाहर बच्चा खेल रहा है तो उसके बीच में आराम भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। एंड बहुत ज़रूरी है जो ये कि भाई अगर बाहर जा रहे हैं तो बच्चों के जो सोने का वक्त है उसको ज़रूर मेंटेन करें, उसको वैसे ही बना के रखें। थोड़ा बहुत आगे पीछे एक दिन हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम होगा, पूरे पूरे वीक होगा, 5-6 दिन होगा, तो बच्चे का रूटीन बिगड़ने से ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो बीमार हो जाते हैं और हो जाता है हॉलीडे इम्यूनिटी डिप। सो आज आपको समझ में आया कि आखिर ये हॉलीडे इम्यूनिटी डिप क्या है। सो हॉलीडे में यानी छुट्टियों में इम्यूनिटी का डिप कर जाना, ऑफ कोर्स बीमार पड़ जाना बच्चों का, स्पेशली घूमने के बाद जब आते हैं तो हम लोग कहते हैं पानी बदल गया, पानी हवा नहीं बल्कि वक्त, खाना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बच्चों को और उनकी इम्यूनिटी पर भी, इसलिए इसका अगर ख्याल रखते हैं तो, अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखते हुए जाएंगे और कहीं ना कहीं जब बच्चे लौटेंगे तो वे हेल्दी होंगे, और यही हम चाहते भी हैं कि भाई किसी भी घर के बच्चे हों, जब वो आएँ तो खुशी खुशी आएँ, और कहीं ना कहीं इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर हम इन बातों को ध्यान रखते हैं तो हाँ, फिर बच्चों का इम्यूनिटी जो डिप है वो नहीं होगा, यानी उससे कहीं ना कहीं हम बचा सकते हैं, और बचाना भी चाहिए क्योंकि हमको पहले से ही इसके बारे में पता है, राइट। तो चलिए भाई, अब ये बात हो गई, अब हम आपको ले चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। और अगला म्यूज़िकल ब्रेक क्या होने वाला है, आपको कौन सा सॉन्ग आप सुनने वाला है, यस, जबरदस्त सॉन्ग है, इसको एंजॉय करिए, वापस आएंगे, बातचीत का सिलसिला बढ़ाते रहेंगे।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

So, भाई सीखने सिखाने को तो बहुत कुछ है, क्यों? क्योंकि समर स्पेशल छुट्टियां भी तो आपकी चल रही है. सो ऐसे कई सारे कोर्सेज होते हैं जो समर कोर्सेज आप करते हैं. डोंट वरी, मैं कोई ऐसा समर कोर्स दे करके आपको बताने नहीं आया, मैं तो बस रिमाइंड करा रहा था कि भाई ऐसे वक्त में जब आपके पास थोड़ा सा वक्त ज़्यादा होता है, सो कुछ भी नया जान लेने का, कुछ भी नया सीख लेने का वक्त आपके पास हमेशा होता है, और ऐसे वक्त को आप जो है अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर सकते हैं. ऑब्वियसली बात है भाई, कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि ऐसा मौका आपके पास आया है जिसमें आप ख़ुद को इस तरह से कुछ नए चीज़ों में देख सकते हैं. सो वहाँ ऐसी चीज़ों को करने में ऑफकोर्स पीछे नहीं हटा जाता है और सीख लिया जाता है. सो जब भी आपको लगे कि अभी वक्त है और आप सीख सकते हैं, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको सीखना भी चाहिए. और फिलहाल इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं, और ऑफकोर्स आपको हम बताने वाले हैं कुछ चीज़ें, और हो सकता है कि भाई आपसे पूछ भी लिया जाए. क्यों? क्योंकि आपको हम बता दें, कुछ नई अपडेट्स आप तक के लिए हम ले आए हैं, और ये जो अपडेट है आप अगर जानेंगे तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलने वाला है. सो फिलहाल एक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि भारत की हीरा राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है. ऑप्शन दो है, ए सूरत, बी मुंबई. सो सूरत या मुंबई को किसको भारत की हीरा राजधानी के रूप में जाना जाता है, इस सवाल का फटाक से जवाब दीजिए, और फिर हमको बताइए आप कि आपको क्या लगता है कि भारत की हीरा राजधानी के रूप में आखिर किस शहर को जाना जाता है, सूरत को या मुंबई को. ये सवाल है, चैट बॉक्स पर आकर के इसका जवाब दे सकते हैं, और सुनते रहिए अपना 89.6 FM.

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

क्या बात है। सुबह जिस तरह से इस वक्त गोंडा को काले काले बादलों ने घेर लिया है, उसमें ये गाना तो मतलब मूड ही बना दे रहा है। है और एक सवाल था, सवाल ये था कि भारत की हीरा राजधानी के रूप में किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मुंबई, जिसका जवाब प्रीति जी ने दिया है मुंबई। ऑल राइट, बट राइट आंसर इज सूरत, ऑप्शन ए। यस, क्यों? इसके पीछे रीजन है, क्यों कहा जाता है। सो अगर आपको नहीं पता तो आइए हम आपको बताते हैं। सो देखिए, कुछ भी कहा जाए, हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है और कहीं ना कहीं काफी ना काफी कुछ है। सो भारत के अगर हीरा शहर के रूप में प्रसिद्ध किया जाएगा तो भाई ये गुजरात का सूरत आता है, जिसको हीरा राजधानी भी कहा जाता है, यानी हीरो की राजधानी आपका सूरत है। सो गुजरात के पश्चिमी राज्य के तापी नदी के किनारे मौजूद है। हालांकि अब हीरा खनन का प्रमुख देश नहीं है, लेकिन सूरत अपनी जो असाधारण प्रसंस्करण क्षमता है उसकी वजह से ये पूरे विश्व में औद्योगिक वैश्विक केंद्र बन गया है। सो ये सच है कि दुनिया भर के जो गहने हैं वो आभूषणों की दुकान में दिखने वाले हर 10 में से 9 हीरे यहाँ काटे और तराशे जाते हैं, और दुनिया का लगभग 90% कच्चा हीरा यहीं पे प्रोसेस्ड होता है, और इसी वजह से सूरत को हीरा शहर नाम मिला है। सो अपने चमकदार रत्नों के अलावा सूरत, चूंकि हमें पता है कि इसके अलावा कपड़ा उद्योग वहाँ बहुत बड़ा है, यानी हम जो लॉट का माल कहते हैं जो कपड़े आ रहे हैं, स्पेशली जो लेडीज़ के होते हैं, सलवार सूट वगैरह, ये सूरत से ही आते हैं, सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। सो रेशम शहर भी कहा जाता है इसके अलावा। सो ये भारत के तेज़ी से डेवलप होने वाले और साफ सुथरे शहरों में एक है। इसके अलावा चूँकि अब बिज़नेस के रूप में देखा जाए तो भी ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑफकोर्स स्कोप्स बने हैं। सो अगर सूरत जो है उसको बताएं, दुनिया के लगभग 90% छोटे हीरों की पॉलिश किया जाता है, और अगर कोई हीरा न्यूयॉर्क या लंदन की किसी अंगूठी में लगा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो पहले सूरत आया होगा। सो हीरे जो हैं 100% कार्बन से बने होते हैं, और सूरत का जादू जो है वो घर्षण और वैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करके लाइट को सटीक कोणों पर नियंत्रित करने में मौजूद है। सो यहीं पे हीरा उद्योग की शुरुआत 1901 में हुई थी, जब एक स्थानीय व्यापारी पूर्वी अफ्रीका से हीरा काटने वालों से भरी एक नाव लेकर के आया था। सो विशाल हीरा और कपड़ा उद्योगों की वजह से सूरत में भारत सबसे कम बेरोजगारी की दर यहीं पे है। चूँकि हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसलिए सूरत में कामगार हीरे की नोक वाले औजारों का इस्तेमाल करके बाकी हीरों को काटते हैं। सो ये स्पेशलिटी है, ये खासियत है। इसके अलावा आपको हम बता दें, सूरत को पहले भारत के सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले शहर के रूप में भी स्थान दिया गया था, और इसके अलावा इसे लगातार दुनिया के शीर्ष 5 सबसे तेज़ी से डेवलप होने वाले शहरों में भी नंबर मिला हुआ है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन का एक समय भारत का सबसे स्वच्छ स्टेशन का खिताब मिला था, और ये इस मायने में अनूठा है कि ट्रेन की पटरियां पहली मंजिल पर हैं यहाँ पर। सो ऐसा बहुत कुछ है जो सूरत में है, कभी अगर आप जाएं गुजरात तो सूरत ज़रूर घूमें, यहाँ आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है, बिजनेस से हट करके भी, यानी बहुत सारी संस्कृति है, बहुत सारी विरासत है और न जाने क्या कुछ। फिलहाल आइए इस खूबसूरत से गाने को सुनते हैं, क्योंकि रोमांटिक सा मौसम हो रखा है इस वक्त, गोंडा में काले काले बदरा छा गए, और ऐसे सॉन्ग्स क्या बात है भाई साहब।

तो जिससे है उससे क्यों नहीं कह देते भाई साहब, मौसम भी है, समा भी है और आप भी है भाई। घर में बोल सकते हैं, मम्मी को देखते हैं तो मम्मी को बोल दे, भाई को लगता है भाई को बोले, बहन को लगता है बहन को बोले, दोस्त को लगता है दोस्त को बोले, या कोई भी हो, जिससे आप चाहते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसे कहने में क्या हर्ज, राइट। सो चलिए भाई, इसी के साथ साथ कुछ मैसेजेस भी आए हैं। सो यस ऑफ कोर्स, सबलू सुन रहे हैं इंडिया मुंबई से और लिखते हैं गुड मॉर्निंग अर्जुन नाथ जी, गुड मॉर्निंग टू यू। अनिल वर्मा जी सैदापुर से हैं, लिखते हैं सुप्रभात सुनने वाले और सुनाने वालों को, मुझे नहीं चाहिए सारी दुनिया की खुशियां और दौलत, मेरे लिए तो तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा ही पूरी कायनात है। क्या बात है। प्रीति जी आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इम्तियाज अहमद मौजूद हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड सविता दुबे जी लिखा है सुप्रभात, जल्दी नहीं आ सकी, आज सुबह लखनऊ में बारिश हुई, अब गोंडा में हो रही है। क्या बात है, आपको दोनों तरफ की अपडेट्स मिली हुई है। मनी मौजूद है, गुड मॉर्निंग टू यू। दीपांशी मौजूद है, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं जो इस वक्त फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM की एप्लीकेशन से जुड़े हुए थे। सो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया है आरजे अदनान को इजाज़त देने का, लेकिन लगातार आप सुनते रहिए अपना 89.6 FM वाला यस रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
11: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर गांव की गूंज, जहां हर एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि समाज का आईना होता है। हम हैं आपकी अपनी आवाज, आपके फेवरेट शो गांव की गूंज की टीम के साथ। आज हमारी 89.6 FM की टीम लेकर आई है एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम हाल ही में उत्तर प्रदेश के माधोपुर गांव गए थे, जहां हरियाली ही और सादगी थी, लेकिन उसी सुंदरता के बीच छुपी है एक कड़वी सच्चाई, बेटियों के प्रति भेदभाव। आज हम उसी सच्चाई को आपके सामने रखेंगे और उसे बदलने की शुरुआत करेंगे।
12: जब हम माधोपुर पहुंचे, तो सच कहूं, ऐसा लगा जैसे किसी किताब के पन्ने में प्रवेश कर लिया हो। चारों तरफ फैले हुए गेहूं के खेत, जिनकी बालियां हवाओं के साथ ऐसे झूम रही थीं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू थी और लोगों के चेहरों पर एक सच्ची मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी थकान पल भर में उतर गई हो।
13: हाँ जया, यह सब बहुत सुंदर था, लेकिन जैसे जैसे हम गांव के अंदर गए, कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने दिल को बेचैन कर दिया। हमने देखा कि यहां लोग बहुत मेहनती हैं, परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बात बेटियों की आती है तो वही लोग, वही परिवार अचानक बदल जाता है।
11: मुझे याद है, जब हमारी गांव की गूंज की टीम 89.6 एफएम की टीम एक घर में गई थी, वहां सब लोग खाना खा चुके थे, पुरुष बच्चे बुजुर्ग सब, और उसके बाद चुपचाप बिना कुछ कहे घर की बहुएं और बेटियां रसोई में बैठकर बचा हुआ खाना खा रही थीं। उनके चेहरे पर एक शिकायत नहीं थी, लेकिन आंखों में एक आदत सी थी, जैसे ये उनके जीवन का हिस्सा बन चुका हो।
2: हमार तो जियरा हिल के रहेगा, हम सोचित रहे कि ये का नियम है, का बेटी और बहू के पेट कम होते है, का वो लोग इंसान नहीं है का? ये सब देख के लगत है कि आज भी हम कहीं न कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। जहाँ प्यार है, अपनापन है, लेकिन बराबरी अभी तक ना पहुँची है।
14: ए

0: हमने माधवपुर में सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं देखी, बल्कि एक सच्ची सोच देखी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ लोग बहुत धार्मिक हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन जब हमने ध्यान से सुना तो कई जगह एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, भगवान बस बेटा देना। कुछ लोग तो तंत्र मंत्र तक कराते हैं सिर्फ इस इच्छा में कि घर में बेटी नहीं बेटा ही जन्म ले।
1: यह सुनकर मन में एक सवाल उठा, क्या भगवान को भी हम भेदभाव सिखा रहे हैं?
2: और बात यहीं तक सीमित नहीं थी, हमने कुछ ऐसी बातें भी सुनी जो दिल को झकझोर देने वाली थी। कानूनन यह गलत है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे यह जानने की कोशिश करते हैं कि गर्भ में बच्चा लड़का है या लड़की,
3: और अगर उनका पता लग जाए कि पेटे में लड़की है तो उनका जन्म ले के पहले ही खत्म करने की सोच लेते हैं। गांव की दाई या कुछ गलत रास्ते अपनावे वाले लोग हैं, महतारी का इसी दवाई दे हैं जो मासूम की जिंदगी का दुनिया देखे इनके पहले ही खत्म कर दे, जानू कि नहीं।
1: अरे बाप रे बाप,
2: सोचिए जिसे हमने देखा भी नहीं, जिसने कोई गलती भी नहीं की, उसे सिर्फ इसीलिए जीने का हक नहीं मिलता क्योंकि वो बेटी है।
1: यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अन्याय है। अरे हम कहते हैं कि हम शिक्षित तो हो रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर आज भी हम एक बेटी को जन्म लेने का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं तो हम किस विकास की बात कर रहे हैं?
3: अरे ये सब तो सुन के हम सन्न रह गए। हम सोचत रहे कि आज भी कहीं न कहीं बेटी के जन्म से पहले रोक दियल जात है। का कसूर बाबू नन्ही सी जान के, सिर्फ इतना कि वो बिटिया बा, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है।
1: बिल्कुल सही कहा था।
0: और जो बेटियां जन्म लेती भी हैं, उनका जीवन भी आसान नहीं होता। हमने देखा घर में लड़के आराम से बैठे हैं या पढ़ाई के नाम पर बाहर जा रहे हैं, और वहीं लड़कियां छोटी सी उम्र में रसोई में लगी हैं, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, पानी भरना, यहाँ तक कि खेतों में भी काम करना।
2: उनके लिए बचपन, खेल, सपने, सब कुछ जैसे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उन्हें यह सिखा दिया जाता है कि तुम्हें तो ससुराल जाना है, तुम्हें घर का काम सीखना है।
1: और दूसरी तरफ बेटे चाहे पढ़ाई में अच्छे हों या नहीं, माँ बाप उनके लिए हर संभव कोशिश करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कर्ज लेते हैं, यहाँ तक कि खेत तक बेच देते हैं, बस इसीलिए क्योंकि वो बेटा है और उन्हें लगता है कि वही उनका भविष्य है।

0: हमारी 89.6 एफएम की टीम ने इस गांव में कई घरों में एक ही बात बड़े गर्व से सुनी। लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारे तीन तीन बेटे हैं, तीनों शहर में नौकरी करते हैं। उनकी आवाज में गर्व था, एक संतोष था, जैसे उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। लेकिन जब हमने धीरे से पूछा, क्या वे आपका ध्यान रखते हैं, क्या वे आपसे मिलने आते हैं, तो अचानक वही चेहरे जो अभी तक गर्व से चमक रहे थे एकदम शांत हो गए, आंखें झुक गईं और होठों पर एक मजबूर सी खामोशी छा गई।
1: हम उसी घर में कुछ देर बैठे और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पता चला कि इनके तीन बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ शहर में बस गए हैं। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी जिंदगी, लेकिन उस अच्छी जिंदगी में अपने माँ बाप के लिए कोई जगह ही नहीं बची।
2: वो तो ना उन्हें अपने पास बुलावत है, ना ही गांव आवे की उनका फुर्सत है, और सबसे दुखद बात ये है कि अपन माँ बाप का शहर बुलावे से भी कतरात है, क्योंकि उन्हें डर लागत है कि कहीं उनके साथ

0: आधे सीधे साधे माँ बाप उनकी सारी इमेज का खराब ना कर दें।
1: पूरा कहा तू बहनी, सोचिए जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों की पढ़ाई में, उनके सपनों के लिए, उनके भविष्य के लिए लगा दी, खेत बेच दिए, अपनी जरूरतें छोड़ दी, आज वही माँ बाप अपने ही बच्चों के जीवन में एक बोझ जैसे महसूस किए जा रहे हैं। यह सिर्फ दूरी नहीं है, ये भावनाओं की दूरी है जो सबसे ज्यादा दर्द देती है।
2: लेकिन उसी घर में एक कहानी और भी थी, एक ऐसी कहानी जिसने हमारे दिल को छू लिया।
3: उस घर की एक बेटी भी थी, रीमा।
1: रीमा? रीमा ने शहर में शादी करने से साफ मना कर दिया था। जब रिश्ते आए बड़े बड़े शहरों से, अच्छे घरों से, तो उसने एक ही बात कही, मेरे माँ बाप मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर दूर नहीं जाऊंगी।
0: रीमा कहत रही कि जब हम शहर में जाइबे, हम बगल के गांव में शादी करब, ताकि रोज माई बाबू का देख सकी, उनका दवा पानी, उनका हाल चाल सब खुद देखी। और सच माँ वो अपनी जिद पर अड़ के रह गई और बगल के गांव में ही शादी करी से, जानियो कि नहीं।
1: हाँ, बगलियम करी से।
0: हाँ,
2: आज वही रीमा सरकारी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका है। सुबह स्कूल जाती है, बच्चों को पढ़ाती है और शाम को अपने माता पिता के पास आ करके उनका हाल भी पूछती है, उनको दवा देती है और उनके साथ बैठती भी है।
3: हमने अपनी आँखों से देखा, उसके माँ बाप उसे भर भर कर आशीर्वाद दे रहे थे। उनकी आँखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, गर्व और प्यार के आंसू थे।
1: और उन्होंने कहा, हमने जिंदगी भर अपने बेटों के लिए सब कुछ किया, लेकिन असली सहारा हमारी बेटी निकली। उनकी आवाज में पछतावा था, अपनी सोच पर, अपने फैसलों पर।
0: देखो ना दीदी, जिन बिटवन की खातिर सब कुछ दे दिया गा, वो सब शहर में बड़े खुश हैं, लेकिन असली सुकून तो बिटिया से मिलत है। बेटी ना हुई होती तो घर खाली खाली लागत, और बेटी साथ अगर है तो बुढ़ापा में सहारा बन जाती।
2: अब सवाल ये नहीं है कि बेटा जरूरी है या बेटी, सवाल यह है कि हम किसे क्या समझते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, बेटा नाम रोशन कर सकता है, लेकिन बेटी जीवन रोशन करती है।

0: आज हम सब यहाँ पर एक परिवार के मामले पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। रामलाल के घर में 5 बेटियाँ हैं और अब वह दूसरी शादी करना चाहता है ताकि उसे बेटा हो सके।
1: प्रधान जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या यह सच है कि हमारे कानून में एक पत्नी के रहते दूसरी शादी की अनुमति नहीं है? तो फिर हम गांव की सभा में ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं जो न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है?
2: और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये न्याय है कि 5-5 बेटी होवे का दोष सिर्फ माँ पर डाल दिया जाए? हमें तो ये बात समझ में नहीं आवत है।
3: क्या किसी ने यह सोचा कि बेटी या बेटा होना उसके हाथ में नहीं है? विज्ञान कहता है यह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो फिर हर बार माँ को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है?
1: एक नारी जो 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में पालती है, उसके दर्द को सहती है, उसे ही दोष देना, क्या ये इंसाफ है या हमारी गलत सोच?
4: और क्या बेटियाँ होना कोई अभिशाप है? वो 5 बेटियाँ जो आज उस घर में हैं, क्या वो प्यार नहीं दे सकती? क्या वो अपनी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती? या सिर्फ कि वो बेटियाँ हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है?
5: लेकिन समाज में तो बेटा जरूरी होता है वंश चलाने के लिए, नाम के लिए।
2: ये तो नाम का वंश होए, नाम तो तब रोशन होए जब घर में इंसानियत बची रहा है। एक बात भाई कि 5-5 बेटियाँ हुई गई तो मेहरारू का दोष दो और दूसर शादी कर लो। और वो औरत तो इंसान ना हो जो दूसरे का दिल का दर्द न समझे। इका न्याय नहीं कहा था, इका अत्याचार कहा जात है।
1: पर आज हम ये फैसला लेते हैं तो हम सिर्फ एक औरत के साथ अन्याय नहीं करते बल्कि हम पूरे समाज को ये संदेश देते हैं कि बेटी होना गलत है और ये सोच कभी खत्म नहीं होगी।
3: हमें यह तय करना होगा कि हम परंपरा को मानेंगे या सच्चाई को।
4: और अगर बदलाव यहीं से शुरू नहीं होगा तो कहीं से भी नहीं होगा।

0: आज हमने जो देखा सुना उसने सिर्फ हमारे मन को दुखी नहीं किया बल्कि हमें जिम्मेदार भी कर दिया। अगर हम सिर्फ सुनकर देखकर चले आते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि हम भी उसी गलती का एक हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि बदलाव छोटी छोटी शुरुआत से आती है।
1: जब एक माँ अपनी बेटी को बेटे जितना खाना देती है, जब एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए उतना ही सोचता है, जब एक परिवार बेटी के जन्म पर उतनी ही खुशी मनाता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है।
2: हम हमेशा कहते हैं कि समाज बदलना चाहिए, लेकिन समाज बनता किससे है? हमसे, हमारे घरों से, हमारी सोच से। अगर आज भी हम अपनी बेटियों से कहें कि तुम रसोई संभालो और बेटों से कहें तुम आगे बढ़ो, तो फिर हम किस बात की बराबरी कर रहे हैं?
1: एक पढ़ी लिखी बेटी सिर्फ अपने लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए बदलाव लाती है। वो अपने बच्चों को शिक्षित करती है, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाती है और वो अपने माँ बाप का सहारा भी बनती है। इसीलिए बेटी को रोकना नहीं है, उसे उड़ान देना है।
3: देखो बहनी, बेटी का रोके के ना चाहिए, उके सपना ना तोड़े के चाहिए। वो भी चाहत है कि कुछ बन जाए, वो भी चाहत है कि माई और बाबूजी का नाम रोशन करे। जब वो बड़ा हो के उड़ना चाहत है तब हम ओकर पंख कहे काट दे। अब उका उड़े दियो के रोक ना लगाओ, बेटी के पंखन में उड़ान भरो।
4: हमने हमेशा बेटों को ही सब कुछ समझा, लेकिन आज समझ में आया कि असली सहारा तो बेटी होती है।
5: आज मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी बहन को भी पढ़ाऊंगा और उसे भी आगे बढ़ने का मौका दूंगा।

0: आज माधोपुर में बदलाव की जो लौ जली है उसे बुझने नहीं देना है। जया, किरण दी, हमें रुकना नहीं है, चलिए अब किसी और गांव चलते हैं, किसी और चौपाल पर बैठते हैं, क्योंकि यह संदेश जितना दूर तक जाएगा उतनी ही मासूम जिंदगियां खिल उठेंगी।
1: बेटी है तो भारत है, उससे ही हर आंगन है, उसके सपनों से ही रोशन है ये सारा जीवन। कलम पकड़ेगी, हल चलाएगी, रचेगी नया इतिहास, हर आंगन अब महकेगा, खुशियों का होगा वास। ऊंचाइयों को छुएगी अब, न डरेगी न ये झुकेगी, प्रगति की इस राह पर अब बेटियां ही नहीं रुकेंगी। शिक्षित होगी नारी तो जग में होगा सवेरा, मिट जाएगा अंधकार, होगा खुशियों का बसेरा। बिल्कुल सही समता, हमारा सफर जारी है, और जब तक हर घर में बेटी को उसका हक नहीं मिलता, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारी 89.6 FM की टीम का यही मिशन है, क्योंकि समाज तभी बदलता है जब हमारी सोच बदलती है।
2: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 FM गांव की गूंज, और हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी इन बातों से सहमत होंगे और आज से ही अपने घर की प्यारी सी बेटियों को ढेर सारा प्यार, सम्मान और दुलार अवश्य देंगे।
3: याद रखिएगा, बेटी है तो घर है, बेटी है तो प्यार है, बेटी है तो भविष्य है। नमस्कार।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई, वक्त हो चुका है 12 और आज दिन है शनिवार। तो आज मैं आई हूँ आपकी होस्ट आयुषी, लेके आपका अपना शो स्वास्थ्य संगनी। जी हाँ, स्वास्थ्य संगनी, क्योंकि आज है दिन शनिवार और शनिवार के दिन हम बात करते हैं अपने हेल्थ की। तो भाई, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा रहे होंगे। देखिए भाई, ज़िंदगी का आनंद उठाना ना सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे अहम चीज़ है। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह कभी जीते ही नहीं। देखिए, ये जो गुजर रहा है ना, ये ज़िंदगी जा रही है, समय नहीं जा रहा है। तो भाई, अपनी ज़िंदगी के हर पल को ऐसे जियो कि ये पल फिर नहीं आने वाला है। और अब हम आज बात करने वाले हैं एक नई जिंदगी की। जी हाँ, नई जिंदगी, यानी कि नन्ही जिंदगी जो एक माँ के गर्भ में पल रही है। तो भाई, आज का शो स्पेशली डेडिकेटेड है प्रेग्नेंट लेडीज को। जी हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज, यानी कि हमारी भाई वो लेडीज जो माँ बनने वाली है या माँ बनने का सोच रही है, मैं उनको भी इस शो में या फिर हम कहें कि आज के इस बातों में इंक्लूड जरूर करूँगी। माँ बनने के लिए सोचना माँ बनने के प्रोसेस का एक पहला स्टेज होता है, या फिर आप स्टेप समझ लें। तो भाई, आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंट लेडीज की। अब देखिए, आपने कई सारी बातें तो सुनी ही होंगी कि भाई प्रेग्नेंट लेडीज को क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, केयर क्या होती है और न जाने कितनी सारी चीजें। लेकिन आज की बात ना बड़े ही प्रॉफिट की है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट की है, क्योंकि भाई आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की और वैक्सीन्स की, जो कि एक गर्भवती महिला को ज़रूर जाननी चाहिए। अब देखिए, वैक्सीन तो लगवानी ज़रूरी है और स्कीम्स के बारे में जानना और उसका लाभ उठाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई हम सभी जानते हैं कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रखी है और इसमें जो सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए काम कर रही है, उस लाभ उठाना भी हमारा कर्तव्य, क्योंकि भाई ये वही गवर्नमेंट करा रही है जिसका चयन हमने खुद किया था। तो चलिए, आज की इन बातों को शुरू करते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम समर्पित है सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को जो 9 महीने तक पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट के रखती है, यानी कि हमारी माँ को। आज हम बात करने वाले हैं योजनाओं की जो सरकार हर गर्भवती महिला के लिए बनाई जाती है, जो सरकार ने हर गर्भवती महिला के लिए बनाई है, लेकिन जिनके बारे में अक्सर आपको पता ही नहीं होता है। तो चाय की चुस्की लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके या आपके किसी आपके अपने के बहुत ज्यादा काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे जरूरी योजना के बारे में, वो है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, जिसे हम PMMVY के नाम से जानते हैं। सोचिए, सरकार आपको सिर्फ इसलिए पैसे दे रही है क्योंकि आप माँ बन रही हैं, है ना कमाल की बात। और लेकिन देखिए सखियों, ऐसी बात है कि ये तो पैसे ऐसे ही नहीं मिलते हैं, इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे काम भी करने होते हैं जो वैसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपकी उम्र 19 साल या उससे ज़्यादा है और या आपका पहला जीवित बच्चा है, तो सरकार आपको 5,000 रुपये देती है। और अगर आपका दूसरा बच्चा बेटी हो तो आपको 6,000 मिलते हैं। है ना मजे की बात। देखिए बेटी पर ज्यादा इनाम है, सरकार समझदार है सखियों। ये राशि 3 किश्तों में आपको मिलती है। पहला किश्त होती है 1,000 रुपए जब आप आंगनवाड़ी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, और वो करवाएं आप अपनी आखिरी महावरी के 150 दिन के अंदर। दूसरी किश्त मिलती है आपको 2,000, कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच यानी कि ANC चेकअप के बाद। और तीसरी किश्त मिलती है 2,000 रुपए बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने पर और पहली वैक्सीन लगने के बाद। तो 3 काम जिसमें रजिस्ट्रेशन, जांच और टीका, और फिर 5,000 आपके खाते में। है ना आसान। आवेदन के लिए बस अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाएं, साथ में रखिए एक आधार कार्ड, बैंक पासबुक जो आधार कार्ड से लिंक हो, गर्भ अवस्था प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर। ऑनलाइन भी आवेदन हो सकता है। अब बात करते हैं हम दूसरी बड़ी योजना की, वो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी कि PMSMA। देखिए दोस्तों, इसमें हर महीने की 9 तारीख को, सिर्फ 9 तारीख को हर सरकारी अस्पताल में CHC और PHC पर गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जांच करवाने का मौका दिया जाता है। और जांच भी कोई साधारण नहीं, खून की जांच, यूरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर, अल्ट्रासाउंड और विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह भी वहां पे मिलती है। सब कुछ बिल्कुल मुफ्त। तो अगर घर वाले पूछें कि 9 तारीख को कहाँ जा रही हो, तो बताइए कि माँ की तारीख है 9, डॉक्टर के पास जाना है और 9 तारीख को अपना जांच जरूर कराएंगे। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो ये तारीख आपको जरूर से नोट करके रख लेनी चाहिए और मौका बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और अब एक और योजना, जननी सुरक्षा योजना यानी कि JSY। इसमें अगर कोई गरीब परिवार की गर्भवती महिला सरकारी अस्पताल में प्रसव कराती है तो उन्हें नगद सहायता दी जाती है, गाँव में 1,400 रुपए और शहर में 1,000 रुपए। उत्तर प्रदेश इस योजना में प्राथमिकता वाले राज्यों में से है। दोस्तों घर पर प्रसव आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना है, सरकारी अस्पताल जाइए, वहाँ पैसे भी मिलेंगे और माँ और बच्चे की जान भी सुरक्षित रहेगी। तो भाई ये थे कुछ जरूरी स्कीम। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मुझे पता है, लेकिन भाई मैं आपको बता दूं कि ये अभी बस शुरुआत है। भाई स्कीम्स बहुत सारी हैं, कौन कौन सी हैं उन पे हम बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन भाई ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना। देखिए दोस्तों, अगर आप एक पुरुष हैं जो हमारी बातों को सुन रहे हैं तो आपका धर्म है इस शो को बहुत अच्छे सुनना और समझना, क्योंकि आप जो है अपने घर की महिला जो गर्भवती है, चाहे आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो या आपकी भाभी हो, कोई भी हो, उसकी सेहत की जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मुस्कान आने वाली है। और जब आप भाई चाचा दादा नाना कुछ भी बनेंगे, है ना, आपका ओहदा बढ़ेगा, तो आपकी जो ड्यूटी है वो डबल हो गई। अब आपको ख्याल रखना पड़ेगा उस गर्भवती महिला का जो आपको इतनी बड़ी पदवी हासिल करा रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे बात करेंगे आज की योजना और इम्पोर्टेंट वैक्सीन के बारे में।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
11: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो गैनसले 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए? इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
12: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
11: भैया बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
12: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो, NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी RJ आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है। क्यों? नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
11: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
12: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती

0: 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
1: अच्छा।
0: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
1: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
0: बहुत सारी,
1: जैसे?
0: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ।
1: जी।
0: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
1: और बाकी?
0: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी RJ आकांक्षा जी, NBSU का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते, तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है, और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है, त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है, माता पिता दोनों KMC कर सकते हैं।
1: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
0: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। NBSU में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है, और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल। यदि बच्चा गंभीर हो, NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर SNCU को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
1: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए?
0: देखिए आकांक्षा जी,
1: जी
0: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
1: जी
0: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है, या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे, तो सीधा NBSU। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है, देर मत करो। RJ दीदी
1: जी,
0: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए, ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
1: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
0: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है, और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उससे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे। कैम्सी यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल ना घी ना हल्दी। बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं और डॉक्टर जो तारीख दे फॉलो अप जरूर कराएं, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े तो तुरंत वापस NBSU।
1: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है।
0: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
1: और भैया, हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों?
0: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
1: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
0: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
1: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: वेलकम बैक दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी आज की होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी, क्योंकि आज है दिन शनिवार और शनिवार को हम बात करते हैं आपकी सेहत की। और आज की जो बात है वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक छोटे से नन्हे से बच्चे के बारे में जो कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने ही वाला है और साथ ही साथ उसकी माँ की जो गर्भवती है। अब देखिए, गर्भावस्था में स्त्रियों का बहुत ज्यादा

0: बताना चाहिए था ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली योजना है यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना। काम थोड़ा लंबा है लेकिन इसके फायदे उससे भी ज्यादा लंबे हैं। देखिए इस योजना में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मदद दी जाती है, तो सुनिए ध्यान से और देखिए कि क्या चीजें हैं। अगर आप एक पंजीकृत श्रमिक यानी कि रजिस्टर्ड मजदूर की पत्नी हैं और गर्भवती हैं, तो आपको 6,000 की एक मुश्त सहायता मिलती है। अगर बेटे का जन्म हो तो आपको 20,000 की राशि दी जाती है। अगर बेटी का जन्म हो तो आपको 25,000 की राशि दी जाती है। तो दोस्तों सुना आपने, बेटी पर हमें 25,000 रुपए मिल रहे हैं, तो अब बेटी कोई बोझ नहीं है और ये अब कोई कहेगा भी नहीं, क्योंकि सरकार ने खुद ये कहा है कि बेटी अनमोल है। और सुनिए, अगर जन्म से ही विकलांग बेटी हो तो सरकार आपको 50,000 की FD भी करवा के देती है, जो 18 साल बाद उस बच्ची के नाम मिल जाती है। ये उसके भविष्य के लिए है। इसके अलावा सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर 3 महीने के न्यूनतम वेतन के बराबर राशि और ऊपर से 1,000 का मेडिकल बोनस भी मिलता है। और गर्भावस्था के दौरान पोषण के लिए क्षेत्र के हिसाब से 1,000 से 3,000 रुपए तक की राशि आपको सहायता के रूप में दी जाती है। अब आपके जहन में ये बात जरूर आएगी, अरे जल्दी बताइए आवेदन कैसे कराना है। बस अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाइए, साथ में लेकर जाइए अपना आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर। अगर श्रमिक कार्ड बना है तो वो भी आपको अपने साथ लेके जाना है। और ऑनलाइन आवेदन के लिए UPBOCW, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, UPBOCW.in पर जाएं। अब बात करते हैं एक और कमाल की योजना की, वो है यूपी फ्री अल्ट्रासाउंड योजना। सखियो अल्ट्रासाउंड कराना कितना जरूरी है ये तो आप जानती होंगी, लेकिन कभी कभी पैसे नहीं होते और दूर भी जाना पड़ता है या प्राइवेट सेंटर बहुत ही ज्यादा महंगा लगता है। तो यूपी सरकार ने क्या किया इसके लिए, मैं बताती हूँ भाई, ये काम को थोड़ा सा आसान कर दिया है। PMSMA के तहत ई बाउचर की व्यवस्था की है, यानी एक डिजिटल कूपन जिससे आप किसी भी प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर पर मुफ्त अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं। अब तक 14.5 लाख से भी ज्यादा बाउचर जारी हो चुके हैं और 6.5 लाख महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं। पूरे यूपी में 1200 से ज्यादा प्राइवेट सेंटर इस योजना में शामिल भी हैं। ये बाउचर हर महीने की 1, 9, 16, 24, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 1, 9, 16 और 24 तारीख को जिला महिला अस्पताल CHC PHC पर मिलता है। बाउचर की वैधता 1 महीने की होती है और अगर उपयोग ना हो पाए तो दोबारा बनवाया भी जा सकता है। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों, इन सभी योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आप समय पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। देर बिल्कुल मत कीजिए, समय पर योजनाओं का लाभ जरूर उठाइए। जैसे ही पता चले कि आप माँ बनने वाली है, पहला कदम उठाइए आंगनवाड़ी की तरफ। जी हाँ, आंगनवाड़ी जाइए, क्योंकि दोस्तों जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो आपको जरूर जाननी चाहिए गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में। जी हाँ, देखिए गवर्नमेंट ने भी हमारे भारत की महिलाओं के लिए, हमारे भारत की गर्भवती महिलाओं के लिए चीजें थोड़ी सी आसान कर दी, टेंशन थोड़ी सी हल्की कर दी। क्योंकि भाई देखिए आजकल के जमाने में इतनी महंगाई हो गई है कि लोग थोड़ा सा डरते हैं कि अरे भाई इतनी महंगाई है और प्रेगनेंसी भी है, कैसे चलेगा हमारा खर्चा। तो भाई खर्चा तो आपका कुछ परसेंट यहीं ही निपट जाएगा। जी हाँ, सरकार आपकी मदद कर रही है जिससे आप अपना और अपने बच्चे की सेहत का अच्छे से ध्यान रख सकती हैं। और हमेशा ये जानिए, देखिए जानकारी लेना, सुनना, समझना ठीक है, लेकिन उसके प्रति काम करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी जाएं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो रजिस्ट्रेशन कराएं अपने नजदीकी जिला अस्पताल। और कभी भी ये ना सोचे कि गवर्नमेंट क्या ही करती है, बहुत सारी चीजें हैं, बस आप अभी उसके बारे में जानकार नहीं है। तो आप जानकारी अभी आपको मिल चुकी है, इसको आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और नोट डाउन कर लिया है तो भाई इसके प्रति अपने कदम उठाएं और सरकारी सेवाओं के लाभ भी उठाएं। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में, क्योंकि आज बात हो रही है आपके और आपके बच्चे के हित की।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ

0: सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: स्वागत है श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अदनान। आपके अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभकारी की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि नवजात शिशुओं की सुरक्षा। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे पैदा होते ही अचानक बीमार पड़ जाते हैं और परिवार जो है वो घबरा जाता है। कुछ लोग घर के नुस्खों में लग जाते हैं तो कुछ देरी कर देते हैं। कई बार ये देरी बच्चे के लिए खतरनाक हो जाती है। इसीलिए आज हमने बुलाया है अपनी गांव-गांव की ज्ञान की पिटारी, हमारी टीकन भाभी को। स्वागत है एक बार आपका वापस से इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई।
2: धन्यवाद आरजे भैया, और धन्यवाद रेडियो के सभी श्रोताओं को। बहुत ही जरूरी विषय उठाया आज आपने। नवजात बच्चा जो जैसे कि कच्ची मिट्टी होता है और उसको जरा सा भी खतरा लगे तो तुरंत ही विशेषज्ञ इलाज की जरूरत भी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा भाभी, सही जानकारी हो तो परिवार बच्चे की जान बचा सकता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे SNCU पर। यानी SNCU ये है क्या और क्यों जरूरी है, शायद ये हमारे श्रोताओं को नहीं पता, लेकिन ये आज हमारी टीकन भाभी जरूर बताएंगी।
2: बिल्कुल भैया, SNCU का पूरा नाम है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। ये एक खास यूनिट है जो जिला अस्पताल या बड़े मेडिकल सेंटर में होता है। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर और नर्स, खास मशीनें और बच्चों की निगरानी की सुविधा होती है। ये यूनिट उन बच्चों के लिए है जो समय से पहले पैदा हों और कम वजन के हों, सांस नहीं ले पा रहे हों, पीलिया, संक्रमण, दौरा या तेज बुखार से ग्रसित हों, दूध ना पी पा रहे हों या बहुत ज़्यादा ठंड या गर्म हों। SNCU को ऐसे समझो जैसे नवजात बच्चों की ICU, जहां हर बच्चा विशेषज्ञों की निगरानी में सुरक्षित रहता है।
0: अच्छा, मतलब गांव के लोग जिसे नाजुक बच्चा कहते हैं वही बच्चा SNCU में ले जाना चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल, और नाजुक का मतलब सिर्फ छोटा होना नहीं होता है। कई बार बच्चा बिल्कुल ठीक लगता है पर लक्षण अंदर ही अंदर बढ़ रहे होते हैं, यही सबसे खतरनाक बात है।
0: तो टीकन भाभी, ये तो परिवार को जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए। अब जरा इन लक्षणों के बारे में बताइए।
2: बहुत जरूरी है। मैं साफ साफ बात बता देती हूँ कि नवजात में मैं जो बताने जा रही हूँ उनमें से किसी भी एक लक्षण को हल्के में मत लेना, तुरंत SNCU ले जाए। जैसे दूध ना पीना या बहुत कम पीना, बच्चा बहुत सुस्त, हाथ पांव ढीले हो जाए उसके, उसकी सांस तेज चली हो, मतलब 60 से ज्यादा प्रति मिनट, सांस लेने में मुश्किल, छाती का धसना, लगातार रोने लगे या उल्टी बहुत ही ज्यादा हो और सोना भी उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाए, दौरा, फिट्स, शरीर बहुत गर्म या बहुत ठंडा पड़ जाए, नाभि में पस आने लगे, लालिमा धाली नाभि या फिर उससे बदबू आने लगे, गंभीर पीलिया हो जाए, खासकर 24 घंटे के भीतर बार बार उल्टी, दूध वापस आना, मतलब जब हम दूध का सेवन कराएं बच्चों को और वो तुरंत ही उस दूध को बाहर फेंक दें।
0: बिल्कुल, तो भाई एक बात याद रखना, नवजात में देरी का मतलब खतरा, एक मिनट भी इंतजार मत करना। बिल्कुल श्रोताओ, इसे दिल में बांध लीजिए कि खतरे का एक भी लक्षण मतलब सीधा SNCU। सो टीकन भाभी, जब परिवार SNCU पहुंचता है तो वहां क्या क्या होता है?
2: अरे आरजे भैया, SNCU तो पूरा वैज्ञानिक और सुरक्षित इलाज का केंद्र है। मैं एक एक सेवा बताती हूँ। जैसे पहला है वार्मर, इंक्यूबेटर नवजात अपना तापमान नहीं संभाल पाता, वार्मर में शरीर गर्म रखा जाता है। दूसरा है ऑक्सीजन या CPAP। अगर बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो तो CPAP से फेफड़ों में मदद मिलती है। तीसरा है दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन फैलने ना पाए इसलिए तुरंत दवा दी जाती है। फिर है फोटोथेरेपी, पीलिया के लिए सुरक्षित नीली रोशनी वाली थेरेपी। कई बार होता है कि हम घर पे ही बल्ब लगा के भी ये थेरेपी देने लगते हैं, लेकिन श्रोताओं ध्यान रखिए, पहले परामर्श फिर कोई थेरेपी। पांचवा है शुगर या फ्लूइड मैनेजमेंट, लो शुगर नवजात में बहुत खतरनाक होता है, इसकी लगातार निगरानी की जाती है। छठवां है फीडिंग सपोर्ट, अगर बच्चा खुद नहीं पी पा रहा तो नली यानी एनजी ट्यूब से माँ का दूध दिया जाता है। नेक्स्ट है कंगारू मदर केयर यानी KMC, माँ या पिता बच्चे को सीने से चिपकाते हैं और इससे बच्चा जल्दी ठीक होता है। अगला है निरंतर निगरानी, हार्ट रेट, ऑक्सीजन, तापमान, वजन, हर 1-2 घंटे में इन सभी की जांच होती है। फिर अगला है परिवार को सलाह देना कि कैसे दूध पिलाना है, कैसे साफ सफाई रखनी है और कब वापस आना है। और आखिरी और दसवां है फॉलोअप यानी डिस्चार्ज के बाद कब दिखाना है, अभी समय भी बताया जाता है।
0: वाह क्या बात है, इतना सब कुछ एक ही जगह, लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा।
2: बिल्कुल भैया, और सबसे खास बात ये है कि ये सारी सेवाएं पूरी तरह निशुल्क यानी मुफ्त हैं।
0: मुफ्त?
2: जी
0: सच में?
2: बिल्कुल।
0: लोग तो समझते हैं अस्पताल में बहुत खर्च होगा।
2: नहीं जी, सरकार ने नवजात के लिए इलाज को मुफ्त रखा है, इसमें शामिल है भर्ती, दवाइयाँ, फोटोथेरेपी, वार्मर, CPAP टेस्ट, दूध पिलाने की सलाह और 108 एम्बुलेंस की सुविधा। गरीबी और पैसों की वजह से कोई इलाज ना रुके, ये सरकार का एकदम साफ साफ संदेश है।
0: तो भाभी अस्पताल तो करेगा ही, लेकिन बात ये आती है कि परिवार आखिर क्या करे।
2: परिवार तो आरजे भैया बहुत कुछ करता है, समय पर अस्पताल ले जाएं और डॉक्टर की दवा बीच में ना रुके, KMC जरूर करें, साफ सफाई, हाथ धोकर ही बच्चे को छूना, केवल माँ का दूध 6 महीने तक कुछ और नहीं, और फॉलोअप की तारीख कभी ना छोड़ें।
0: सही बात है, घर की जिम्मेदारी घर वालों की।
2: हाँ अर्जी भैया, और प्रीटर्म और लो बर्थ वेट बच्चों पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को जल्दी ठंड पकड़ती है और इन्फेक्शन जल्दी लगता है, बार बार दूध चाहिए होता है, वजन धीरे धीरे बढ़ता है। तो KMC यानी कंगारू मदर केयर ऐसे बच्चों के लिए वरदान है।
0: तो भाभी कई बार बच्चे इसलिए भी बीमार होते हैं क्योंकि गर्भावस्था में समस्याएं आती थी, क्यों?
2: बिल्कुल, और इसलिए गर्भवती महिलाओं को ये जरूर करवाना चाहिए, जैसे 4 ANC चेकअप, IFA की गोलियां, TT और TD वैक्सीनेशन, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच और संस्थागत प्रसव। अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा SNCU जाने से बच सकता है।
0: और अगर बच्चा बीमार हो जाए तो?
2: तो आरजे भैया सीधे 108 पर फोन करो, एम्बुलेंस आती है, ऑक्सीजन, ट्रेन स्टाफ, स्ट्रेचर और गर्माहट देने के सामान सबके साथ होते हैं, और वो भी सब कुछ एकदम मुफ्त होता है। बच्चा जब SNCU से ठीक होकर आता है तब भी सतर्कता बहुत जरूरी होती है, सिर्फ स्तनपान या दवा समय पर, या फिर ठंड, भीड़, संक्रमण से बचाना, साफ पानी और साफ सफाई, कोई भी खतरे का लक्षण दिखे तो तुरंत वापस जाना होता है।
0: मतलब इलाज सिर्फ SNCU तक नहीं, घर पर भी जिम्मेदारी उतनी ही है।
2: समुदाय मिलकर बहुत कुछ बदल सकता है, जैसे गर्भवती महिलाओं को ANC के लिए प्रेरित करें, संस्थागत प्रसव बढ़वाएं और नवजात के खतरे के लक्षण सबको सिखाएं, नाभि पर तेल घी कुछ ना लगाएं और इसकी सलाह भी दें, स्वच्छता बढ़ाएं। जब सोच बदलती है तो आरजे भैया पूरा गांव स्वस्थ होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नवजात बच्चा जब बहुत नाजुक होता है, बीमारी अचानक बढ़ सकती है, इसलिए समय पर इलाज जीवन बचाता है। SNCU आपकी सरकारी सुविधा है, इसे जानिए, पहचानिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत पहुंचिए। आपका एक कदम बच्चे की पूरी जिंदगी बचा सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद टीकन भाभी और सभी श्रोताओं को। आज आपने एक जीवन रक्षक जानकारी सुनी, इसे याद रखिए और अपने गांव में फैलाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और रेडियो से जुड़े रहिए।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुके हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी। आज है दिन शनिवार और शनिवार को हम बात करते हैं आपकी सेहत की, और आज हम बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं की और धरती पे जन्म लेने वाले बच्चों की। जी हाँ, बच्चे जो कि अभी फिलहाल अपनी माँ के गर्भ में है, पर उनकी सेहत का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी अभी भी है। अब हम बात करेंगे उस चीजों की जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत सारी महिलाओं को, मैं सच कहूँ तो बहुत सारे आदमी भी इन चीजों से डरते हैं। जी हाँ, वो है हमारी सुई। ये नाम जितना सुनने में छोटा सा है और क्यूट लग रहा है, लेकिन भाई मैं सच बताऊं कि ये नाम सुनते ही और इसके बारे में सोचते ही कई लोगों की थरथरी सी कांप जाती है। कहते हैं ना अवधि में, भैया इनकी तो थरथरी कांप गई। बिल्कुल, इंसान इतना घबरा जाता है, इतने पसीने छूट जाते हैं कि भाई ये सुई हम कैसे फेस करेंगे। लेकिन याद रहे, ये छोटी सी सुई आपको बहुत बड़ी बीमारी से बचा सकती है और आपको बहुत सारे लाभ भी दिलवा सकती है। जी हाँ, यानी इंजेक्शन की आज हम बात करने वाले हैं, और इंजेक्शन की बात हो रही है तो भाई मैंने भी बताया, हम आज वैक्सीन के बारे में भी बात करेंगे। तो डरिए मत, आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्भ अवस्था में कौन कौन से टीके लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है और क्यों। क्योंकि भाई हम भारतीय हैं, अगर हमें ना पता चले कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो हम वो काम करने वाले नहीं है। किसी में इतना दम नहीं है कि वो ये काम करवा दे। तो भाई इसके लाभ भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये टीके सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके पेट में पड़ रहे नन्हे जीव को भी बचाते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी टीका वो है TDAP वैक्सीन। TDAP यानी टिटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस, हिंदी में कहें तो धनुस्थम, डिप्थीरिया और काली खांसी से बचाव। दोस्तों, नवजात शिशु के लिए काली खांसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। वो इतना छोटा होता है कि खुद खांस भी नहीं सकता, तो इससे बचाव सबसे ज्यादा जरूरी है, और बचाव का सबसे अच्छा तरीका है वैक्सीन लगवाना। माँ को गर्भावस्था के दौरान टीका जरूर लगवाना चाहिए। ये टीका 27वें से 36वें हफ्ते के बीच लगवाना चाहिए, यानी कि 7वें महीने के आसपास। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर गर्भावस्था में लगवाना होता है, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। हर बार ये टीका सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में मिलता है। दूसरा जरूरी टीका है फ्लू वैक्सीन, यानी कि इन्फ्लुएंजा का टीका। सरल भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो गर्भावस्था में इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, ऐसे में सर्दी जुखाम फ्लू ज्यादा असर करता है। गर्भवती महिलाओं में फ्लू से निमोनिया तक भी हो सकता है, तो फ्लू के मौसम में यानी सर्दियों में ये टीका जरूर लगवाएं। और अगर आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड कर रहे हैं ये गर्मियों में, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ज्यादा ही वीक है, तो आपको ये गर्मियों में भी लगवाना चाहिए अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं तो। गर्भावस्था के किसी भी महीने में आप इसको लगवा सकती हैं। एक बात ध्यान रखिए कि जीवित वायरस वाला फ्लू टीका नहीं लगवाना है, इनएक्टिवेटेड यानी कि निष्क्रिय वायरस वाला टीका ही लगवाएं। डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको इन टीकों के बारे में सही जानकारी दे देंगे। तीसरा टीका है COVID-19। जी हाँ, वही COVID-19 जिसने हमें घर में बंद कर दिया था, यानी कि लॉकडाउन लगवा दिया था, और हम अपने घर में थे काफी टाइम तक, हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि इन्होंने अपना तांडव मचा रखा था। जी हाँ, गर्भावस्था में कोविड का टीका लगवाना बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रही हो कि कोविड का टीका गर्भावस्था में क्या काम आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि भाई कोविड का टीका आपको जरूर लगवाना है। WHO से लेकर हमारे भारत सरकार तक सभी ने ये कहा है कि गर्भावस्था में कोविड का टीका सुरक्षित है और जरूरी भी है। ये टीका किसी भी तिमाही में लगवाया जा सकता है। उसके बाद चौथा टीका है जो थोड़ा सा नया है, जी हाँ, वो है RSV वैक्सीन, यानी कि एब्रिसवो, RSV यानी रेस्पिरेटरी साइनेटिक वायरस। ये नवजात बच्चों में सांस की गंभीर बीमारी कर सकता है। देखिए RSV नाम सुना है? नहीं सुना, मैं बताती थी भाई। RSV जिसे हम जानते हैं रेस्पिरेटरी साइनेटिकल वायरस, बच्चे को भी इससे सुरक्षा मिलती है। ये टीका 32वें से लेकर 36वें हफ्ते के बीच और सितंबर और जनवरी के बीच जरूर लगवाना चाहिए। अभी ये ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों में मिल रहा है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। अगर आपने पहले ये टीका नहीं लगवाया है तो गर्भावस्था में भी इसे आप लगवा सकती हैं। ये लीवर को सुरक्षित रखता है और सरकारी अस्पताल में ये मुफ्त भी मिलता है। तो दोस्तों, डरना बिल्कुल भी नहीं है। टीका वो कवच है जो माँ को और उसके बच्चे को, दोनों को सुरक्षित रखता है। अपने डॉक्टर से पूछिए कि कौन सा टीका कब लगवाना है, और कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी टीका बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। देखिए, हमारे भारत में ना जीनियस लोगों की कमी नहीं है। जी हाँ, जीनियस लोग जो हमारे घर के कुछ बड़े होते हैं, कुछ ऐसे अनुभवी लोग होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही अपना जो है बातें बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनकी बातें ना माने, लेकिन इस नाजुक स्टेज पे आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी की बात माननी है तो वो है अपने डॉक्टर की। जी हाँ, कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है, कोई भी दवा लेने को बोल रहा है, कोई भी वैक्सीन लगवाने को बोल रहा है, तो याद रहे आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप डायरेक्टली जाके उस वैक्सीन की डिमांड करें और लगवा लें। जब तक आपका डॉक्टर ना बोले, आपको कोई भी वैक्सीन या कोई भी दवाई नहीं खानी है। इनफैक्ट अगर आपको जो है सर्दी जुकाम भी हो जाता है, खांसी भी आ रही है, तो भी आप नॉर्मल मेडिकल स्टोर पर जाकर कोई भी दवाई लेके ना खाएं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको जो दवाई बोलेंगे आपको वही खानी है। तो दोस्तों, ये थी बात वैक्सीन की, लेकिन अभी बातें क्या यहीं तक हैं? बातें बहुत लंबी हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। अब भाई, ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज है और इसमें सारी जानकारी होना आपके पास ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे भारत में कहते हैं कि भैया बौकल बिल्कुल ना बनो। बौकल यानी कि पागल, बेवकूफ़, या फिर बहुत ज़्यादा भोला नहीं बनना है आपको। आपको सभी चीज़ के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप गर्भवती हैं तो गर्भावस्था के बारे में आपको सारी जानकारी होना ज़रूरी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आऊँगी मैं यानी आपकी होस्ट लेके एक आपका बहुत ही ज़रूरी सा इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
2: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी, क्योंकि आज है दिन शनिवार और शनिवार को हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आज हम बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं की, जिसमें हम आज जान रहे हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए गर्भावस्था के दौरान और कौन कौन सी सरकारी स्कीमें हैं। लेकिन याद रहे, सरकारी सुविधा अभी समाप्त नहीं हुई है, इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने कुछ जानकारियां हासिल की और इसी तरह हमारे साथ बने रहें इन जानकारियों के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस लिंक में मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक माँ की पूरी यात्रा समझें, शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि अक्सर हम जानकारी तो जमा कर लेते हैं लेकिन उसे असल जिंदगी में कैसे लागू करें ये नहीं समझ पाते। तो आज एक काल्पनिक कहानी के जरिए हम समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आप एक औरत की कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसका नाम है रेखा। रेखा एक 24 साल की महिला है, उत्तर प्रदेश की एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसके पति दिहाड़ी मजदूर हैं। जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो घर में खुशियां ही खुशियां फैल गई थी, लेकिन साथ में थोड़ी सी घबराहट भी थी। घबराहट, जी हाँ, वही घबराहट जिसने पूरे घर में खुशियां तो लाई थी लेकिन थोड़ा सा उदासी भी थी। वो क्या था मैं बताती हूँ, वो थे पैसों की कमी। प्राइवेट डॉक्टर बहुत ही महंगे थे और जानकारी वो तो कुछ थी ही नहीं। लेकिन एक दिन रेखा की पड़ोसन ने उसे एक रेडियो सुनाया, जहाँ पे आंगनबाड़ी जाने की सलाह दी जा रही थी। रेखा आंगनबाड़ी में गई, वहाँ आशा दीदी ने उसका PMMVY में रजिस्ट्रेशन कराया। पहली किश्त के 1000 रुपए उसके खाते में तुरंत आ गए और फिर आशा दीदी ने बताया कि 9 तारीख को जिला अस्पताल जरूर जाओ, मुफ्त जाँच होगी। रेखा भी उनकी सलाह मानकर चली गई। वहाँ जाके उसको यकीन हो गया कि भाई सरकार क्या कर रही है, क्योंकि उसकी खून जाँच हुई, ब्लड प्रेशर चेक हुआ और कई सारी जांचें भी हुई। साथ ही साथ डॉक्टर ने बताया कि खून में क्या क्या चीजों की कमी है। अब भाई रेखा तो भाई बड़ी ही मासूम सी इंसान, उसे कुछ ज्यादा जानकारी थी नहीं, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि उनकी बॉडी में आयरन की कमी है। उसे आयरन की दवाएं भी मिली, वो भी मुफ्त। उसके बाद दूसरा कदम उसने उठाया अल्ट्रासाउंड का। रेखा को अल्ट्रासाउंड की जरूरत थी, पैसे भी नहीं थे, लेकिन आशा दीदी ने उसे ई वाउचर दिलवाया और पास के प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर पर बिल्कुल मुफ्त अल्ट्रासाउंड भी हो गया। जब रेखा ने पहली बार अपने बच्चे की दिल की धड़कन सुनी तो वो रो पड़ी और कहने लगी कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये मुझे भी नसीब होगा, है ना ये खुशी की बात। उसके बाद तीसरा कदम उसने उठाया टीकाकरण। 7वें महीने में आशा दीदी ने याद दिलवाया कि TDAP का टीका लगवाना है। रेखा सरकारी अस्पताल गई, टीका लगा, वो भी मुफ्त। सर्दियों में आई तो फ्लू का भी टीका उसे लगाया गया। उसके बाद चौथा कदम, यानी कि अपना प्रसव। जी हाँ, प्रसव का समय आया। रेखा सरकारी अस्पताल गई और वहाँ पे सुमन योजना के तहत मुफ्त डिलीवरी, मुफ्त दवाइयाँ और मुफ्त नवजात की देखभाल। और पता है, बेटी हुई तो JSY से 1400 रुपए, PMMVY से बची हुई किश्तें और UP बालिका मदद योजना से 25,000 रुपए मिले। रेखा कहती है कि काश ये पहले से पता होता तो और भी बेहतर तैयारी होती। दोस्तों, रेखा की कहानी लाखों महिलाओं की कहानी है, फर्क सिर्फ जानकारी का है। तो आज ही वादा कीजिए कि आप सही जानकारी पाने के बाद अपना और अपने साथ साथ जो भी आपकी जानकारी में गर्भवती महिलाएं हैं उनको इन बातों का फायदा जरूर बताएंगे और लेकर भी जाएंगे इनकी जांच कराने और इनको इस सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलवाने। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे जरूरी बात की, वो है इमरजेंसी। इमरजेंसी में हमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहती हूँ। ये वो हिस्सा है जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए और याद रखना चाहिए कि गर्भावस्था में अधिकतर समय सब ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते, और उस वक्त अगर हमें सही जानकारी हो तो एक जान बचाई जा सकती। पहले समझिए कि कौन से लक्षण खतरे की घंटी है। पहला है, अगर बहुत ज्यादा खून बह रहा हो तो आपको तुरंत अस्पताल जाना है, एक पल भी देरी नहीं करनी है। दूसरा है, अगर पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा हो तो आपको बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, ये एक खतरे का संकेत है। तीसरा, अगर बच्चे की हलचल अचानक से बंद हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए तो फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चौथा है, अगर सिर में बहुत तेज दर्द हो, आंखों के आगे अंधेरा आ जाए, हाथ पैर चेहरा बहुत ही सूज जाए, तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक है। पांचवा है, अगर तेज बुखार हो, ठंड लगे या सांस लेने में तकलीफ हो तो भी तुरंत मदद कीजिए। छठा है, अगर पानी की थैली फट जाए यानी पानी आने लगे तो बिना देरी के आपको अस्पताल निकल जाना चाहिए। दोस्तों इन लक्षणों को थोड़ी देर देखते हैं और नजरिया, और दोस्तों ये जो लक्षण मैंने आपसे बताए साझा किए, इन सभी लक्षणों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि माँ की जान सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं हम एक और जरूरी बात की, किस नंबर पर कॉल करें। जी हाँ, देखिए मुसीबत की घड़ी आते ही ना हम बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं, और सबसे पहले जो हम चीज खोजते हैं वो है मदद। जी हाँ, और अगर हमें मदद का सही तरीका ना पता हो कि कहाँ से मदद लें, क्या करें क्या ना करें, तो वो जो परेशानी होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है आपकी, और सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो हमें किस नंबर पर कॉल करना है ये आप अभी से समझ लें, हो सके तो इसको सेव कर ले, नहीं सेव कर रहे हैं तो कहीं लिख लें जिससे कि जरूरत के वक्त पे आपको ये याद आ जाए। सबसे पहले आपको एक नंबर याद रखना है जो कि है 108। ये है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे 7 दिन बिल्कुल मुफ्त। बस 108 डायल करिए, एम्बुलेंस आपके दरवाजे तक आएगी। तो दोस्तों 108 यानी कि 108 याद कर लीजिए अभी और इसी वक्त। उसके बाद 102, ये है जननी एक्सप्रेस, गर्भवती महिलाओं के लिए एक खास एम्बुलेंस। ये सेवा खास तौर पर प्रसव के समय प्रसव से जुड़ी इमरजेंसी के लिए ही बनी है। उत्तर प्रदेश में ये सेवा भी बिल्कुल मुफ्त चल रही है। उसके बाद 104, ये है स्वास्थ्य हेल्पलाइन। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी सलाह चाहिए, घबराहट हो रही हो, समझ ना आए कि क्या करना है, तो 104 पर कॉल करिए। बिल्कुल डरिए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए, यहाँ पे आपको कॉल करना है, यहाँ प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी आपकी बात सुनेंगे और आपको मार्गदर्शन भी देंगे। तो दोस्तों ये तीन नंबर आपको बिल्कुल ही गांठ बांध के अपने दिमाग में रख लेनी है, वो है 108 यानी कि एम्बुलेंस, 102 जननी एक्सप्रेस, 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन, और अपने पड़ोसी को, अपने पति को, अपनी सास को, ये सबको ये नंबर बता दीजिए, क्योंकि इमरजेंसी में हम खुद घबरा जाते हैं, तब घर का कोई सदस्य यह नंबर डायल कर सकता है और आपकी मदद भी कर सकता है। और एक आखिरी बात, आशा दीदी आपकी सबसे पहली दोस्त है, उनका नंबर अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, वो रात को भी, त्योहार को भी, बारिश में भी, आंधी में भी, तूफान में भी, भाई सब सिचुएशन में आपके साथ रहेंगी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी, वैक्सीन, इमरजेंसी अगर होती है तो हमें क्या करना है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम्स की भी। अब आप भी भारतीय, हम भी भारतीय, और भारतीयों की आदतों से हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। इमेजिन करिए कि आपके शहर में कहीं सेल लगी है, बाय वन गेट वन फ्री। अब आप फ्री का नाम देखते हमारे बॉडी के अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है कि भाई फ्री है, इसका तो आनंद उठाना ही उठाना है, भाई फ्री मिल रहा है ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों फ्री स्कीम्स और फ्री वैक्सीन्स क्यों नहीं। जी हाँ, स्वास्थ्य हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्पेशली गर्भावस्था में आपको अपना ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो इन मुफ्त चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं और अपने ये प्रेगनेंसी जर्नी को और भी ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपने ये चीज़ें समझी होंगी, कहीं लिखी होंगी, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ली होंगी, और ज़रूरत पड़ने पर आप इसका लाभ भी उठा लेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है हमारे जाने का, फिर मिलूंगी मैं आपकी दोस्त आयुषी लेके आपके लिए बहुत सारी जानकारियां आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, क्योंकि भाई हम बात स्वास्थ्य की हफ्ते में कई बार करते हैं, क्योंकि भाई हम बात स्वास्थ्य की इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स और उनके अपने सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ध्यान रखना बिल्कुल ना भूलें।
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी, और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
5: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
0: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
5: जी हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
0: जी,
5: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
5: जी हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
0: जी,
5: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
0: जी तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीबी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
5: जी जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
0: जी,
5: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
0: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
5: जी आज दीदी
0: है? क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
5: हाँ टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
0: जी।
5: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक संकल्प है, हर घर तक बेहतर स्वास्थ्य की रोशनी पहुंचाने का, हर चेहरे पर मुस्कान लाने का। दोस्तों, हमारा ये विशेष कार्यक्रम समुदाय के बीच जाकर लोगों के जीवन से जुड़कर उनकी दिनचर्या, उनकी परेशानियों और उनके स्वास्थ्य से जुड़े अनुभवों को समझने का एक सच्चा प्रयास है। हम न केवल उन्हें स्वस्थ रहने के आसान और प्रभावी उपाय बता रहे हैं बल्कि उनके मन में उठ रहे सवालों और चिंताओं को भी ध्यान से सुन रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच जब हमने टीकाकरण पर लोगों से बातचीत की तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे, कभी संकोच, कभी डर, तो कभी जिज्ञासा। तब हमने इन सभी प्रश्नों को इकट्ठा किया और ये वादा किया कि हम उनके सभी प्रश्नों का जवाब विशेषज्ञों के माध्यम से जरूर उन तक पहुंचाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या पर जिस पर अगर अभी ध्यान न दिया जाए तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमसे सवाल पूछती रहेंगी। दोस्तों, आज का ये खास पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो बच्चों को होने वाले टीकाकरण को हल्के में लेते हैं या फिर इग्नोर करते हैं। और अगर स्वास्थ्य कर्मी घर तक पहुंचे तो कहते हैं कि हमारे बच्चे को टीके की जरूरत नहीं है। तो अगर आज आपके मन में भी इम्यूनाइजेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं SGPGI यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य, और आपसे बातचीत कर रही हैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च यानी कि CFAR की प्रोग्राम लीड रंजना द्विवेदी जी। तो आइए इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर टीकाकरण से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त करें, अपने संदेह दूर करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल जीवन की ओर मजबूत कदम बढ़ाएं।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर, और टीकाकरण ही नहीं, टीकाकरण क्यों नहीं कराते हैं लोग, लोगों को में क्यों हिचकिचाहट होती है टीकाकरण को लेके। बहुत सारे लोगों को कुछ तरह के संदेह होते हैं, कुछ उनकी अपनी मिथ्या धारणाएं होती हैं, और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में है। तो नमस्कार मैम।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।
1: मैम, टीकाकरण बहुत जरूरी है, सबको पता है
2: जी,
1: लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं। जानते हैं बच्चे की जान बचेगी, फिर भी हिचकिचाते क्यों?
2: देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है कि इसमें हिचकिचाहट ही सिर्फ नहीं है, कंप्लीट रिफ्यूजल भी होता है कि हम करवाएंगे ही नहीं, अच्छा सोचेंगे, अच्छा थोड़े दिन बाद करवा लेंगे। तो इसके लिए तो हम जब देखते हैं तो पूरा एक ये स्पेक्ट्रम है, कंप्लीट रिफ्यूजल ना से और सोचते हैं से लेकर अच्छा करवा लेते हैं तक। तो हेजिटेंसी जो है, मतलब हिचकिचाहट जो है टीकाकरण को लेके, ये हर एक के मन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो अभी कमजोर है, कुछ दिन बाद करवा लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे लेके जाएंगे बच्चे को, अगर बुखार हुआ, कोई और चीज हो गई तो। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारी के लिए हम टीका लगवा रहे हैं वो बीमारी तो बहुत दूर की बात है, इसलिए लोगों को वो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं समझ में आता है। पर जो फीवर अभी होगा, बुखार अभी होगा, जो बच्चा रोएगा, वो अभी तुरंत उनको दिख रहा है, तो वो तुरंत की वजह से ज्यादा हिचकिचाहट होती है।
1: तो इसी पे मैं पूछना चाहूंगी मैम, जैसे अगर आपके पास तो रोज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्या कुछ लोग सिर्फ पूछने के लिए आते हैं कि हम बच्चों का टीकाकरण कराएं या ना कराएं? संदेह रहता है उन्हें, मतलब इतना समझ के पढ़ लिख के भी आते हैं फिर भी उनके मन में संदेह रहता है कि कराएं या ना कराएं, तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास?
2: बिल्कुल आते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो अब गूगल चाचा से भी समझ के आता है और सब जगह से पढ़ के आता है, तो उसकी सारी पूछताछ ज्यादा होती है। जो थोड़ा हमारे गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, वो ANM के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी, तो उनसे लगातार मिलने की वजह से थोड़ा बहुत संदेह रहता है, पर उनको हेल्थ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है इन लोगों से, तो इसलिए उनकी शंकाएं जरा सा कम होती हैं। बीच तबके के लोग जो हैं, न बहुत ज्यादा अमीर न बहुत ज्यादा गरीब, उनमें डाउट तो रहता है पर उनमें एक्सेप्टेंस बेटर होता है।
1: क्यों रहता है मैम? एक्चुअल में देख अनुभव होता है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनको टीकाकरण हुआ, बुखार आ गया, मतलब कुछ उनका अपने अनुभव की वजह से ऐसा होता है या इन जनरल ऐसा होता है जिसका पहला टीकाकरण है वो भी इस तरह के होते हैं?
2: देखिए हमारी सोसाइटी जो है ना वो कहानियां बहुत बनाती है।
1: हाँ,
2: तो एक बच्चे को अगर फीवर आया, उसने पड़ोस में बताया भाई मेरे बच्चे को टीकाकरण के बाद फीवर आ गया, वो तीसरे को बताता है, तीसरा बताता है अरे उसको 105 डिग्री आ गया, पांचवें चौथे तक सातवें तक पहुंचते पहुंचते फीवर के साथ में झटका भी आने लगता है, झटके के साथ मुंह से झाग भी निकलने लगता है। तो जब तक वो उस औरत के पास पहुंचता है जो अपने बच्चे को पहली बार लेके जाने वाली है, उसका इतना बतंगड़ बन चुका होता है उस बात का कि वो हिचकिचाती है, अब डरती है कि मैं ना जाऊं, मैं ना लगवाऊं, अरे उसके बच्चे के साथ ये हो गया था तो मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो एम्पलीफाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो बढ़ चढ़ के बताते बताते कई लोग जो लगाने भी जा रहे होते थे उनके कान तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बढ़ गया होता है कि वो मना करने लगते हैं कि नहीं रहने दो भैया।
1: तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, नहीं लगाते लोग, किस संदेह के कारण नहीं लगाया, हिचकिचाहट के, और अल्टीमेटली बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मतलब उनको इसको दूर करने के लिए किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए समाज में, और दूसरी चीज़ अगर बच्चा कमज़ोर है कुपोषित है तो क्या उसका टीकाकरण किया? ये भी एक मिथ है लोगों के बीच में कि भाई हमारा बच्चा बहुत कमज़ोर है टीका लगेगा तो पता नहीं, और अगर बुखार उखार आ गया तो और कमज़ोर हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों को कैसे देखें हम?
2: देखिए जो बच्चे कुपोषित हैं उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनमें बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक नॉर्मल रिष्ट पुष्ट बच्चे को शायद बीमारियां कम हो, पर एक कमजोर बच्चे को ये जितने कीटाणु होते हैं वो सब पकड़ने लगते हैं। तो उस बच्चे को अगर टीकाकरण होता है तो चांस बड़ी बीमारी होने का घट जाता है, तो उस बच्चे की जान बच जाती है। तो अगर ऐसे कुपोषित बच्चे हैं उनको तो टीकाकरण होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, टीकाकरण ना होने से उनके शरीर को इसका एहसास ही नहीं होता है कि वो बड़ी बीमारियों से कैसे लड़े। तो हमारे पास जब टीकाकरण है तो टीकाकरण करने से आप समझ लो शरीर को ये अभ्यास होता है कि ये बीमारी आए तो हमें कैसे लड़ना है, और जब वो बीमारी आती है तो कुपोषित बच्चे का शरीर भी तैयार होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो जान माल सब बच जाता है।
1: बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि जब टीकाकरण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है, अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है लेकिन टीकाकरण उसको वो ताकत देता है कि अगर कोई बीमारी उसको घेरती है तो वो उससे लड़ सकता है। एक बड़ी चीज ये भी है मैम कि बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, पढ़े लिखे भी बहुत नहीं होते हैं, उनको उन तक शायद हमारी पहुँच भी नहीं हो पाती है और वो नहीं करवा पाते किसी कारण से टीकाकरण। तो अगर किसी का मतलब एक टीका छूटा पूरा हमारा, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल है पूरा, हमारा एक पूरा एक नियम है कि ये टीका लगेगा फिर वो टीका, अगर ऐसा कुछ होता तो उनके लिए क्या है कि जब जागे तब सवेरा, या मतलब किस तरह से वो अपने टीकाकरण को सुनिश्चित करवा पाए?
2: जब आपने दिहाड़ी की बात करी है
1: जी,
2: तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या शंकाएं रहती हैं या क्या प्रॉब्लम होती है। जब ये आप समझ जाओगे तो ही उसको दूर कर पाओगे। दिहाड़ी मजदूर का एक सेंटर पे बच्चे को लेके जाना, मैंने एक दिन की रोजी रोटी गई, आने जाने का खर्चा अलग से लगा, क्यू में खड़े होके टीकाकरण कराने का समय और गया, बच्चे को अगर फीवर आया डॉक्टर को दिखाना पड़ा दवा करनी पड़ी तो उसका खर्चा और गया, अगर उसको घर पे एक दिन और रुकना पड़ा तो एक दिन और की गई। और ये मत समझना कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं गया तो किसी और को वो ड्यूटी नहीं दे देंगे और उसको बिठा नहीं देंगे, तो उसके लिए ये एक रिस्की बात हो जाती है, इसलिए वो डरता है। अगर वो इन सब शंकाओं से पार उतरे तभी तो वो बच्चे को लेके जाएगा ना।
1: बिल्कुल।
2: तो उसको सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत है कि अगर छूटा है तो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा है तब भी आप टीकाकरण पूरा करो।
1: तो बच्चे की सेहत के लिए, उसके भविष्य के लिए टीकाकरण जरूरी है। दिहाड़ी आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि बच्चे, अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तब आप दिहाड़ी पे भी जा पाओगे, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो आप दिहाड़ी पे भी नहीं जा पाओगे। और टीकाकरण स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है, इसलिए सबको टीकाकरण करना चाहिए। मैम एक और चीज़ देखी गई है, बच्चा तो छोटा होता है, माँ बाप होते हैं, क्लोजली माँ बाप होते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना कि बच्चे को टीकाकरण, क्योंकि बहुत सा समाज में हम देखते हैं दादी नानी सबके अपने अनुभव होते हैं, हमने 10 बच्चे पैदा किए, हमारे बच्चे तो बिना टीकाकरण के अच्छे हैं, इस पे क्या आप सलाह देना चाहेंगी लोगों को? क्योंकि स्पेशली घर के बड़े लोगों को या जो भी उनको सपोर्ट करते हैं।
2: रंजना जी, ऐसा होता है कि माँ जो है वो अथॉरिटी नहीं होती है घर में, तो दो तरह के परिवार होते हैं, एक जैसे हमारे आपके, हम हमारे पति और हमारे दो बच्चे, इस तरह का परिवार होता है। एक होता है भरा पूरा परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं, तो वो एक सम्मिलित, एक सब लोगों का एक डिसीजन होता है, उसमें सिर्फ माँ बाप का नहीं होता है। तो ऐसे में माँ क्योंकि हेल्थ वर्कर के साथ बार बार बार बार उठती बैठती है, हमारी आंगनवाड़ी दीदियां सब घर जाती हैं, तो उन बहनों का इन्फ्लुएंस माँ पे होता है, पर फाइनल अथॉरिटी अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो वाले, तो फादर की होती है। पर माँ समझा बुझा सकती है, कह सकती है, और अगर सम्मिलित परिवार है तो फिर तो सास का बहुत बोलबाला रहता है। सास ससुर अगर कह दे कि नहीं कराना है तो माँ बाप चाहते हुए भी नहीं कराते। तो आपने जैसे कहा कि सास कह देगी हमने भी तो बच्चे पाले थे, कौन सा उनका टीका करवाया था, सब अच्छे हैं, कौन सा तुम्हारा बेटा जो है कहाँ से वो आ गया है कि उसको जो है टीकाकरण नहीं करवाए, तो कुछ नहीं, तुम काम नहीं करना चाहती हो, दिन भर वहां बैठी रहोगी गप्पे मारोगी इसलिए तुम जाना चाहती हो। पर हाँ, आज के जमाने में जैसे गूंज से या कहीं से भी अवेयरनेस जैसे हम फैला रहे हैं, तो कुछ समझदार सासें होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ बीमारियां तो है तो लगवा ही लो बहू, भेज भी देती हैं। तो दो तरह के थॉट्स होते हैं, और जब ये सम्मिलित डिसीजन की बात आती है ना, तो वहां थोड़ी सी हिचक बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो फास्टर होता है फटाक से कि हमें तो लगवाना है, पर पीछे से कौन देखेगा अगर बीमार हो, क्योंकि हम दो हमारे दो में तो हम दोनों वर्किंग हैं, काम कर रहे होते हैं, वो तो काम पे निकल जाएंगे, पीछे से बच्चे को कौन देखेगा, या तो बड़ा बच्चा देखेगा उस छोटे बच्चे को, तो थोड़ी दिक्कत तो उसमें आ जाती है। और सम्मिलित परिवार में तो दादा दादी चाचा चाची सब मिलके बच्चे पाल देते हैं, तो उसमें एक बार अगर हाँ हो जाए तो फिर बच्चे के साथ कोई और दिक्कत नहीं आती है, मामला बहुत स्मूथ हो जाता है।
1: धन्यवाद मैम। एक डर लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी होता है किन्हीं कारणों से किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और कोविड के बाद बहुत सारी अफवाहें फैली टीकाकरण के बाद लोगों की डेथ, और थोड़ा सा हमने देखा है कि हमारा जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, एक दोबारा से वो उस विश्वास को जगाने में बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि टीके कितना सुरक्षित हैं और इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
2: देखिए, वो जो कोविड वाली मेमोरी है ना, वो तो इंसान के जहन में बैठ गई है, कितनों को ही हमने मरते देखा, कितनों को ही इतना परेशान दौड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो जो मेमोरी है ना, वो यादें वो दिमाग में बस जाती हैं। ऊपर से जब कोई भी नया वैक्सीन आता है, जैसे कि हमने 2016 में IPV या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोनिया का वैक्सीन, ये सब लॉन्च किए, तो कोई नई चीज आती है ना, तो इंसान की दुविधा बढ़ती है, हिचकिचाहट बढ़ती है, और कोविड के मौतों के बाद से तो लोगों के दिमाग में डर तो बैठ ही गया था। पर ये जानना पड़ेगा कि हमारी ये जिन वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं वो तो कोविड से पहले भी थी और आज भी हैं।
1: बिल्कुल,
2: अगर सुरक्षित नहीं होती वो वैक्सीन, तो इतने सालों से चली आ रही है, हम देखते कि वो सुरक्षित नहीं है, पर ऐसा तो नहीं हुआ, कोविड से पहले भी थी और आज भी है। और एक बच्चे का अगर देखो, उस वैक्सीन को हम एक बच्चे को तो नहीं लगाते, हम तो वही वैक्सीन पूरे इंडिया में वही बैच हजारों बच्चों को लगता है, तो एक बच्चे की अगर मौत होती है तो वो इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है कि उस बच्चे की मौत क्यों ही, ऐसा तो नहीं हुआ कि इससे बहुत सारी मौतें हो गई, तब वो इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है। अदरवाइज अगर सिंपली एक क्लस्टर में एक ही बच्चे की मौत हुई तो ये जांच लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है उसमें कोई बड़ी बीमारी थी पहले से ही और उसको टीका लग गया, तो कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की मौत हुई हो। और ऐसी बातें ना, अफवाहें ऐसे फैलती हैं पागलों की तरह कि क्या बताएं हम, उससे लोग और डर जाते हैं। पर क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ कि हमारे टीके कोविड से पहले भी थे, आज भी हैं, तो वो बहुत ही सुरक्षित टीके हैं, तभी वो पब्लिक में अभी तक विश्वास के साथ दिए जा रहे हैं।
1: थैंक यू मैम। और धीरे धीरे हम लोग टीकों में बदलाव भी कर रहे हैं, बहुत सारे टीके लगने की जगह कई टीकों का एक वैक्सीन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जो होता है समुदाय में, उसका असर होता है, वो प्रभावित करता है टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रेरित करने या ना प्रेरित करने में?
2: बिल्कुल करता है। जितनी शिक्षा उतना डाउट। जो देखना ज्यादा शिक्षित होते हैं ना रंजना, वो आके पूछेंगे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। हमारा काम है उन्हें रीअश्योर करना। जो कम शिक्षित है, मैंने जैसे कहा, उन्हें आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी ऑलरेडी प्रिपेयर करके भेजती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको रीअश्योर करें, थोड़े बहुत उनके सवालों के जो जवाब है, शंकाओं के जवाब दें। और कई बार ऐसा होता है कि पहली बारी में वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अगल बगल भी पूछते हैं, अपने नेबर्स को पूछ लेते हैं, दूसरे जिस बच्चे के टीका लगा होता है उसकी माँ से भी बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो थोड़ा सबसे बतिया लेते हैं ना, तब लगता है कि इनको अब लग जाना चाहिए बच्चे को। तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा सा प्रयास करके रीअश्योर करना पड़ता है।
1: मैम, एक चीज है कि मुझे टीके की जानकारी है और एक चीज है कि मुझे टीके की समझ है, दोनों में अंतर है थोड़ा।
2: बहुत बड़ा अंतर है रंजना। जानकारी है वो तो चारों तरफ से उनको आते रहते हैं कि मेरे बच्चे को पोलियो का टीका लगना है, ये हुआ जानकारी, मेरे बच्चे को टीकाकरण होना है, किस उम्र पे पोलियो लगना है, कितने बूंद पिलाने हैं, उसको पिलाने के बाद बच्चे के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसकी समझ हमें होनी चाहिए, बुखार तो नहीं आएगा, कोई और परेशानी तो नहीं होगी, मेरा बच्चा रोएगा तो नहीं। ये होती है जानकारी कि अगर ऐसा होता है मुझे क्या करना है, किसके पास जाना है, दवा क्या करनी होगी। तो ये होती है जानकारी। ये तो ठीक है, समझ है कि होना है टीकाकरण, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जब उनको जानकारी पूरी समझदारी के साथ समझाई जाए, तब उनके जहन में ये होता है कि हाँ टीकाकरण होना है।
1: इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, आप डॉक्टर हैं, आपके पास जब लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझा ले जाती हैं, क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से खुद जानती हैं और आपको पता है कि किसको कैसे समझाना है। लेकिन समुदाय स्तर पे जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो जब काउंसलिंग करते हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ब्लंट सवाल आते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहला उन्हीं को झेलना है, माँ को तैयार भी उनको करना है, माँ को हिचकिचाहट है तो वो भी उन्हीं को दूर करनी है, और उनका अपने संदेश भी बहुत सही होने चाहिए जिससे वो कन्विंस हो सके और आप तक, आप मतलब टीका लगवाने के लिए आ सके। तो उनके लिए कोई मतलब कुछ टिप्स देंगी कि किस तरह से वो लोगों से बात करें, वो मतलब स्पष्ट भी हो संदेश उनका और वो पेरेंट्स को भी अहमियत उसकी समझ में आए। होता क्या है ना, मतलब मेरे घर वाले अगर मुझे समझा रहे हैं तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं समझ में आती जितना आप मुझे समझाएंगे। वही हाल आशा दीदी और हमारी आंगनवाड़ी दीदी और ANM की भी होती है, क्योंकि वो रोज हमसे मिलते हैं। तो उनके लिए मैं जानना चाहूंगी, मतलब उनको आपकी तरफ से क्या चीजें उनको इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए जिससे लोग टीकाकरण के लिए तैयार हों।
2: आशा दीदी लोग जब घर घर जाती है ना, दस्तक एक चलता है कि वो आपके बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं, नया बच्चा हुआ उनके घर में जाके उनको उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, अरे बिटिया हुई है, वेरी नाइस, लड़का हुआ है, बहुत बढ़िया। तो वो एक आशा दीदी के साथ ऑलरेडी विलेजेस में, गाँव में, घरों में माओ का, दादियों का, चाचियों का, सबका एक अलग सा रिश्ता बना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई मौत हो गई या कहीं कोई बीमारी हो गई तो वो लोग हिचकिचाते हैं उसमें भी। आशा दीदी इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन उस समय कि, और पहली बार में वो नहीं कर पाएगी, उसको बार बार बार बार जाना पड़ेगा। तो पहले ही समय की वो रिएश्योर कर देगी और हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना पड़ेगा उसको। पहली बार जाके कि कैसे हो कैसे नहीं हो, बच्चे के बारे में खबर लेना, अच्छा ये हो गया है, दूसरी बार में जाके तुम्हारे बच्चे को ऐसा हुआ था ना, अब कैसा है, तो तीसरी बार में जाके इसका तो एक टीकाकरण है, तुमने कितने बच्चे हैं, तुमने इनको लगाया है, ये किया है, तो फिर वो बाकी घर के बच्चों के लिए भी बात करना। ये शायद चौथी पांचवी बार में ऐसा होता है कि आशा दीदी ये कम्युनिकेट कर पाती हैं कि आप लोग जो हैं अपने बच्चे का टीकाकरण कर लीजिए। तो बच्चे की खबर लेने से शुरू करके बच्चे के बारे में बताना, और बार बार जाके माँ को रीअश्योर करना और टीके के बारे में बताना, अच्छा फलां को और अगल बगल के जो लोगों को टीका लग रहा है उनके बारे में भी जानकारी देना, अरे फला मौसी के बच्चे को टीका लगा था देखिए कितना बढ़िया तंदुरुस्त है, और फला मौसी के नहीं लगाया था उनको तो दस्त आ गए भाई। तो इस तरह से आप दूसरे लोगों की कहानियां बताकर भी उनको रीअश्योर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, अच्छी चीज़ है। आशा दीदी लोग जो भी हमारी प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जब उनके पारिवारिक रिश्ते भी बन जाते हैं सभी जितने भी उनके लाभार्थी होते हैं उनके साथ, और अलग अलग उदाहरण देके वो दूसरों को, मतलब एक परिवार अगर तैयार हुआ है तो उनके लिए एक उदाहरण होता है कि वो बाकी परिवारों के लिए करते हैं। इसमें क्या जो समुदाय का वृहद, मतलब इनकी तो एक तरह से कहते हैं ना तुम्हारी तो ड्यूटी है तो तुम टीका कर रही हो, और वो करती भी है, लेकिन और भी लोग हैं जो इनको सहयोग कर सकते हैं। आपको लगता है समुदाय में टीकाकरण के विषय में भी जैसे एक तो हम लोग जिस तरह से रेडियो पे अभी बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के साधन होते हैं, गांव में और भी लोग होते हैं जो जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आप मतलब कुछ बताना चाहेंगे इस पे कि कैसे लोगों से वो लोग सहयोग ले सकती है अगर कोई परिवार नहीं तैयार है, क्योंकि हिचकिचाहट दूर करना बहुत आसान चीज नहीं होती, वो भी एक बच्चे के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर नहीं मेरे से तैयार हो रहा तो मैं किसकी मदद लूं?
2: रंजना, जब हम लोगों ने न्यूमोकोकल वैक्सीन की लॉन्च करी थी तो ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी, नए वैक्सीन को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जिन लोगों से हमने गांव में लिया वो थे गांव के प्रधान। प्रधान साहब को सब लोग, अगर प्रधान ने कह दिया तो ठीक ही होगा, ये रवैया रहता है। तो हमारे साथ ये बहुत मदद हुई कि कई गांवों में प्रधानों ने हमारी बड़ी मदद की, कि उन्होंने कहा कि नहीं ये वैक्सीन ठीक है, आप सबको जाके टीकाकरण करवाना चाहिए। कई जगह हमें मस्जिद जाना पड़ा, वहां के मौलानाओं से बात करनी पड़ी, कई जगह स्कूलों में जाना पड़ा, वहां के प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी। तो ये कई लोग होते हैं जो पीपल ऑफ अथॉरिटी होते हैं उस जगह पर, इन लोगों से बात करने से कई बार हमारी समस्याओं का समाधान होता है, लोग आगे आते हैं और ये मानते हैं कि जब ये इन्होंने कह दिया तो सही ही होगा, और हम तब टीकाकरण आगे स्मूथली बढ़ता है।
1: तो मैम अच्छी चीज है कि अगर प्रधान है, हमारे बाकी जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनको सहयोग करेंगे तो हम जो हिचकिचाहट होती है इनको

0: माँ का दूध जो होता है उसमें से माँ की इम्यूनिटी बच्चे में ट्रांसफर होती है। कई विटामिन्स हैं, कई इम्यूनोग्लोबुलिन जो रक्षात्मक तंत्र होते हैं वो चीजें बच्चे में जाती हैं। सो जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया है वो बच्चों के साथ परेशानियां ज्यादा होती हैं। जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया है तो कम से कम 6 महीने तक अगर उन्होंने माँ का दूध पिया होता है तो उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। और साथ साथ हम जब टीकाकरण कर देते हैं तो यही बच्चे हैं जो कम बीमार पड़ते हैं। तो माँ का दूध तो पहला टीकाकरण हुआ, उसके बाद हमने एज डॉक्टर्स टीकाकरण करना शुरू किया। पहली रक्षात्मक शक्ति माँ होती है। अब आई बात कि टीकाकरण कैसे और कहाँ से और एंट्री पॉइंट कहाँ होता है। देखिए, एक एंट्री पॉइंट तो होता है ICDS वाला सेंटर। जब माएं राशन लेने जाती है ना, वहां पर दूसरी माओं से बातचीत होती है, तो वहाँ एक संगोष्ठी टाइप की हो गई कि एक ने दूसरे से कहा, अरे हम तो उस दिन गए थे फला दिन, तो वो दीदी मिली थी, बहुत अच्छे से हमारा टीकाकरण हो गया बच्चे का। दूसरी बोलेगी, अरे मैं तो देर हो गया, मैं तो लगवाया नहीं, अरे पोलियो का टीका छूट गया, रोटा वायरस का टीका छूट गया, बच्चे को बड़े दस्त हो रहे हैं। तो वो माँ की समझदारी पे है कि कौन सा मैसेज वो उसमें से लेती है कि टीकाकरण हुआ तो हमारा बच्चा स्वस्थ है। और इंसेंटिव क्या रहता है कि हमें राशन लेना है, जाती इसलिए है कि हमें राशन ने जाना है, और वहां जाके उसका दूसरे लोगों के साथ एंगेजमेंट होता है, दूसरे लोगों के साथ बातचीत होती है, और फाइनली ये बातचीत जो है उसको एक बिहेवियरल चेंज कराती है। तो उसके बिहेवियर में ये चेंज होता है कि हाँ, हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। तो वहां दूसरों से जब बातचीत करती है, जो उसके मन में शंकाएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसलिए ये एक एंट्री पॉइंट होता है जहां पर माँ ये हाँ या ना सोचती है कि हम टीकाकरण कराएं या ना कराएं, गई वो राशन के लिए होती है। फिर जो हमारे VHNDs होते हैं उसमें भी यही होता है कि पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है, पर कई बार ये भी उसमें बातें होती हैं कि फला के बच्चे को लगवाया था देखो और फला ने नहीं लगवाया देखो, आशा दीदी ने बहुत डांट लगाई कि समय पे टीकाकरण नहीं हुआ। तो ये जो डिलेज करते हैं, मिस करते हैं टीकाकरण, इसके बारे में भी उनको ज्ञान मिलता है कि नहीं करना चाहिए हमें। और आउटराइट जिनमें रिफ्यूजल होता है, जो कि बहुत कम होते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, वो वाले बहुत डिफिकल्ट केस होते हैं। वरना थोड़ा आप अगर रिएश्योर करो, समझाओ, उनके साथ एंगेज करो तो बहुत समझदार हैं माताएं, क्योंकि हर माँ को चाहिए कि हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देना है, माँ तो माँ ही होती है।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं कोई पेरेंट्स को समझाने में, तो ये प्लेटफॉर्म्स आप आंगनवाड़ी केंद्र उनको ले जा सकती हैं, VHND के सेशन में उनको ले जा सकती हैं, या आप किसी ऐसे लाभार्थी के घर भी ले जा सकती हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराया है, और उन्होंने अगर टीकाकरण के बाद बुखार आया है तो उसको कैसे मैनेज किया वो समझने के लिए भी हो सकता है। या आप छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना, वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों को मिलती है, वो भी दे सकती हैं। बहुत अच्छी मैम। एक और चीज में, मतलब अब हम अंत में आ रहे हैं अपने, अगर इस व्यवहारिक यात्रा को समझे हम, तो ये क्या यह कहना सही होगा कि अधिकांश परिवार पूरी तरह इनकार करने के बजाय हिचकिचाहट से स्वीकृति की ओर आगे बढ़ते हैं? यह यात्रा आमतौर पर कैसी दिखती है, किस बिंदु पर डर भरोसे में बदलना शुरू होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। देखिए, इंसान का जो व्यवहार होता है ना, वो कई चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे कि इन माओं में होता है कि पहले डरते डराते जाती हैं, उसके बाद एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है कि हम सोच रहे हैं। तो जितनी बार हमारा या आंगनवाड़ी दीदी का या किसी हेल्थ वर्कर का उनसे कांटेक्ट बनता है, तो डर के बाद सोच रहे हैं के बाद एक कॉन्फिडेंट एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ लगवाएंगे। उस दौरान अगर उनको आप बार बार बार बार रीअश्योर करो, मतलब डर जो है ना उसको आउट नंबर करना पड़ेगा आपको, किससे ना, बार बार रीअश्योर करके कि हाँ लगवाना है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि 3-4 बार ये सब एड्रेस करने के बाद वो डर से लगवाएंगे तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद अगर सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो अगली बार जरूर आएंगे टीके के लिए। तो आपको जो है ये देखना है कि जो सोर्स उनको रीअश्योर कर रहा है, जो उनको बता रहा है, जो हेल्थ वर्कर बात कर रहा है, वो ट्रस्टेड हो। सो अगर बुखार में कोई भी अनसर्टेनिटी रहे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, वो बदल जाए कि उसमें नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, हम टीकाकरण करेंगे, और सिर्फ टीकाकरण नहीं करेंगे, उसके आगे भी कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम मौजूद हैं, हम रहेंगे, आप कभी भी हमारे पास आ सकते।

0: करते हो, तो ये रीअश्योरेंस जब मिलता है कि पहले टीकाकरण में और उसके बाद तक हमारे साथ ये हेल्थ वर्कर हैं, तब वो डर धीरे धीरे चला जाता है। और एक बार टीकाकरण हुआ और सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बाद तो दोबारा तो आएगा ही आएगा।
1: तो हमें टीकाकरण करने वाले को भी भरोसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल टीके सुरक्षित हैं और बच्चे को कुछ नहीं होगा, और टीका करवाने वाले माँ बाप को भी पूरा विश्वास, क्योंकि जब विश्वास करने लगते हैं हम चीज़ों पे तो हमारा डर दूर होना शुरू होता है और फिर वो हमारे व्यवहार में आ जाता है और तभी वो हमें फ़ायदेमंद भी होता है। इसी के साथ मैम हम अपने पॉडकास्ट के अंत में हैं, फिर से एक बार समराइज करते हैं इस चीज़ को, और अगर संक्षेप में कहना हो तो इन समुदायों में टीकाकरण को लेकर हिचकिचाहट वास्तव में किस बारे में, हम रिकैप करेंगे मैम, है ना, सीधे सीधे मैं पूछना चाहूंगी कि हिचकिचाहट किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, और तीसरी चीज जो लोग हमारे सुन रहे हैं उन परिवारों के बारे में क्या समझना चाहिए, वो क्यों हिचकिचाते हैं। मतलब ये मैं डॉक्टर्स के लिए भी पूछ रही हूँ कि जब आता है कोई पेरेंट तो उसको एक होता है ना, मेरी सुन लोगे आप तब मैं आपकी सुनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर का जब सब कुछ बाहर आ जाएगा तभी शायद आप जो मुझे ज्ञान देंगी वो अंदर जाएगा। तो तीन चीज़ें हैं मैम, हिचकिचाहट जो होती है वो वास्तव में किस चीज़ को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, और तीसरी चीज़ हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो टीकाकरण दे रहा है उसका क्या व्यवहार।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूले। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। डिलीशियस
2: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। क्या हाल है भाई आज? क्योंकि आज है हमारा सुपर से भी ऊपर वाला शो, यानी कि आज है हमारा सैटरडे शो, यानी धमाल का शो। तो शो शुरू हो गया है, आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली विथ आरजे समता एंड आरजे अंशिका। तो भाई हम दोनों तो आ गए हैं, अपने टाइम से आ गए हैं, और आज सैटरडे के दिन दो गाने, इसीलिए आपको पहले से सुना देते हैं कि आपका मूड शूट थोड़ा सा अच्छा हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम लोगों का मूड अच्छा नहीं है तो आप लोगों का मूड क्यों हम खराब करें। मतलब ऐसा एक होता है ना कि अगर घर में औरतें अगर काम कर रही होती हैं तो यार हमारा मूड खराब है ना। घर के जो जेंट्स अगर आ रहे हैं या घर के जो हमारे भाई बहन, मम्मी पापा और हस्बैंड आ रहे हैं, तो हम अपना मूड उन पे क्यों थोपें? उनके लिए तो हमें हमेशा से एक्टिव रहना चाहिए, क्यों अंशिका?
6: बिल्कुल मैम,
5: तो ऐसे ही हम आज एक्टिव हैं, अपने शो को लेकर के आए हैं। गर्मी बहुत है, क्योंकि बंद कमरे में बैठना और बोलना इट्स नॉट अ इजी टास्क। आई मीन मतलब बहुत गर्मी है, और मुझे लगता है कि लेकिन हम लोगों में जो उत्सुकता होती है ना आपसे मिलने की, आप तक आवाज़ को पहुंचाने की, आपका हालचाल लेने की, चैट बॉक्स में आपसे हाय हेलो करने की, तो वो जो एक उत्सुकता होती है ना, वो शायद आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप बैठे हुए हैं एसी के नीचे, पंखे के नीचे, कूलर के पास में, और हम बैठे हैं यहाँ पर कहाँ पे?
6: गर्मी में।
5: गर्मी में बैठे हैं, पूरी गर्मी, मतलब क्या ही बता दें। कि खैर कोई नहीं, अगर हम प्यार करते हैं किसी से, हम किसी को अपना मानते हैं, तो ऐसी छोटी मोटी तो बलिदान, कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हैं।
6: बिल्कुल, बलिदान भी देंगे, कुर्बानी भी देंगे, और बहुत सारा आपको हम अच्छी अच्छी बातें भी बताएंगे, क्योंकि भाई हमारा तो काम ही यही है। हम दोनों आ गए हैं, तो चलिए आपको एक ही साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप सुन रहे हैं सुन सहेली, और प्यारी सी, बहुत ही प्यारी सी दोपहरिया है, क्योंकि आज थोड़ी सी सही मैम, लेकिन रिमझिम रिमझिम थोड़ी फुहार पड़ी है,
5: पड़ी थी, बहुत ही अच्छा मौसम, लेकिन अच्छा मुझे लग रहा है कि उसके बाद से ना ज्यादा वाली गर्मी होगी अब देखना।
6: हाँ।
5: क्योंकि आपने देखा होगा कि जब डोसा बनता है तो तवे पे जो छिनकार होता है, इट मींस कि तवा बहुत गर्म है, और थोड़ी सी छिनकार के बाद वो और तप जाता है। खाना है बट अभी नहीं खाना है आपको,
6: नहीं,
5: अभी
6: नहीं।
5: आपको 2 वीक जो है ना वो अभी प्रिकॉशन
6: मैं मतलब उस पे हूँ, मुझे
5: प्रिकॉशन पे हूँ। तो जैसे डोसे वाला जो तवा होता है, कभी देखा है ना, जब छिनकार मारते हैं तो छन्न से आवाज आती है, लेकिन उसके बाद तवा और गर्म हो जाता है। तो अभी प्रभु ने वही किया है, अभी डोसा हमारा बनना बाकी है। ठीक है, तो चलिए एक साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं इस प्यारे से मौसम में जो दोपहर है, उसमें क्या बोलेंगे?
6: शुभ दोपहरिया। बिल्कुल, डोसा बनेगा और डोसे के बीच का बैटर हम होने वाले हैं, क्योंकि गर्मी चाहे जितनी भी पड़े, हम तो बीच में बैटर की तरह पिसने वाले हैं।
5: बिल्कुल बिल्कुल, तो बिना देर लगाए हुए वैसे ही आज हमने आपको दो गाने सुनाए, उसके लिए कोई शाबाशी नहीं मिलने वाली अंशिका हम लोगों को, कभी भी कितना भी अच्छा कर लो लेकिन कोई शाबाशी नहीं देने वाला है कि भाई आते ही आज आरजे ने दो दो गाने सुना दिए
6: और कुछ तारीफ कर दी।
5: हाँ लाओ कुछ तारीफ कर दी जाए, नहीं कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं,
6: कोई वो नहीं मतलब।
5: चलो तो फिर हम अपना काम शुरू करते हैं, चलते हैं किचन में खाना वाना बनाते हैं और फिर क्या ही बता दें। तो चलिए आज की प्यारी सी पोयम, जो कि आज का दिन हम लेने वाले होते हैं पूरा प्यार पे, मोहब्बत पे, इश्क पे, तो आज की जो पोयम है वो भी हम लेकर के आए हैं प्यार इश्क मोहब्बत पे। तो शुरू करें।
6: बिल्कुल, प्यार इश्क और मोहब्बत हर किसी की जिंदगी में हर किसी को जरूर मिले, यही है हमारी आज की दुआ। और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं बहुत ही प्यारी सी पोयम जो आपको सुनाएंगी आपकी अपनी आरजे
5: समता।
6: यस यस मैम।
5: इतनी जैसे वो आवाज थी, जैसे नहीं वो कर्कश और वो बहुत जैसे अंदर से बिल्कुल वो परेशान
6: वाली
5: समता।
6: आपको सुनाएंगी आपकी अपनी आरजे समता, ये वाली।
5: चांद की चांदनी सा है तू, चांद की चांदनी सा है तू, मेरे चेहरे की खुशी सा है तू, जब भी आती है हवा का, जब भी आता है हवा का झोंका, महसूस होता है तेरे पास, मेरे पास है तू, धड़कनों में गूंजता है तेरा नाम, हर सुबह हो जाती है रोशन तमाम, बिना कहे समझ लेते हो तुम मेरे दिल की हर बात, कुछ ऐसी है हमारी मुलाकात, दूरी भी लगती है अब पास जैसी, मोहब्बत हो गई है कुछ खास वाली, तुझसे ही जुड़ी मेरी हर खुशी, तुझसे ही जुड़ी मेरी हर खुशी, तू ही है मेरी इस जिंदगी की बची कुची कमी, तू मेरी सुबह तू मेरी शाम है, मेरे इस छोटे से जहां में तेरा ही नाम है, खुदा से बस यूं ही दुआ है मेरी, खुदा से बस यही दुआ है मेरी, कि हर जन्म में बस तू ही मिले, ये जिंदगी है तेरी।
6: वाह, मतलब व्हाट अ इमोशंस, मतलब इतनी इमोशनल लग रही थी और एक एक लाइन में मुझे लग रहा था कि मतलब जैसे होता नहीं है कि कई बार हम अपनी दिल की बातें कहना चाहते हैं और पोइट्री से अच्छी कोई एक अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए अच्छा वो नहीं होता है, तो आज
5: प्लेटफॉर्म नहीं होता,
6: प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो आज मैम ने बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। तो यही कहना चाहूंगी और दिल से कहना चाहती हूँ कि जिसके लिए ये एक्सप्रेस किया है उस तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि प्योर जो एक प्योरिटी होती है ना लव में, सबसे अच्छी प्योरिटी होती है, और जब प्योरिटी है तो मुझे लगता है कि दिल की आवाज़ दिल तक पहुँचनी चाहिए और दिल को समझनी भी चाहिए, क्योंकि प्यार में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि समझें हम। हम बहुत प्यार करते हैं किसी से लेकिन वो हमारी अगर फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आज के दिन यही कहना चाहूंगी, लव स्पेशल है हमारा, कि जो जिससे जितना प्यार करता है ना वो उससे उसका डबल प्यार करे, और जो अपने प्यार को सच्चे दिल से चाहते हैं उन्हें वो प्यार मिले जरूर, क्योंकि जब नहीं मिलता है ना तो एक खालीपन, एक जो गैप होता है ना, वो कहीं ना कहीं इंसान को बहुत तकलीफ देता है।
5: बिल्कुल,
6: हम दिखा लेते हैं बाहर से कि नहीं नहीं अरे हम बहुत अच्छे हैं, आई एम वेरी वेल, और जैसे एक शब्द होता है मैम रिश्तों में हमेशा कहा जाता है यू शुड टू मूव ऑन यार, लेकिन वो इतना इजी नहीं होता है, हम बाहर से दिखाते हैं बट अंदर जो एक खाली कोना रह जाता है ना वो आपको पूरी लाइफ टीज देता है। आप खुश भी रह सकते हो, नो डाउट, मतलब हाँ हम खुश रह सकते हैं
5: थोड़े वक्त के लिए,
6: थोड़े वक्त के लिए
5: दिखावे का,
6: जब आप अकेले होंगे तो वो आपको चीजें फील होंगी। तो यही कहूंगी कि किसी की लाइफ में वो खालीपन ना हो, और जो मेरे पास बैठी है उनकी लाइफ में तो बिल्कुल ही ना हो, ये जरूर।
5: ये दुआ दिल से है,
6: आपको क्या लगता है?
5: दिल से ही है,
6: दिल से ही है, क्योंकि दुआ हमेशा दिल से ही दी जाती है, और वाकई मतलब हमेशा हम कहते हैं ना कि जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हम अपने लिए बहुत कुछ मांगते हैं कि ये भी देना वो भी देना,
5: पर किसी और के लिए मांगना जो लोग मांगते हैं ना वो मुझे लगता है कि सही इंसान होते हैं।
6: बिल्कुल मैम, अगर आप किसी के लिए गए और आपने कह दिया उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो,
5: हाँ,
6: तो वो ऑटोमेटिकली देख लेना कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा।
5: एग्जैक्टली,
6: ये स्वार्थी नहीं है, जैसे बहुत लोग कहते हैं अरे तुमने उनके लिए मांगा और मन में रख रहे हो कि मेरा भी अच्छा, हाँ, हो, तो ये तो स्वार्थ हुआ। ये स्वार्थ नहीं हुआ, ये एक टेलीपैथी हुई,
5: ये टेलीपैथी हुई
6: कि आप भगवान के पास गए, आपने कहा भैया भगवान उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, किसी के लिए भी, एवरीवन, मैम जाए अगर वो मेरे लिए कहें या मैं उनके लिए कहें।
5: हाँ, जैसे अभी अंशिका की तबीयत खराब थी,
6: हाँ,
5: तो मुझे लग रहा था यार कि मैंने 3 दिन अकेले मैं अकेले थी बहुत, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक आदत सी हो गई है, और अब तो मुझे हमेशा से यही डर लगा रहता है कि अंशिका की शादी हो जाएगी तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि भैया तुम लोकल में देख लेना,
6: वो डर नहीं सच होगा मैम।
5: अरे नहीं, आखिर तो जाना है ना यार, मतलब जिसे लगता है कि कभी ना कभी की, ये दिल से कह रही हूँ मैं, क्योंकि जब मुझे ऐसा फील होता है तो मुझे लगता है यार कि जैसे एक छोटे बच्चे को बड़ा करो, पालो पोसो, उसे तैयार करो और फिर वो चला जाए, तो मैंने इसे तैयार किया है। और अभी फिर ये जब कभी बात होती है ना कि मेरे लिए देखा जा रहा है, या फिर भाई देखो लड़की हो तो भाई आज नहीं कल तो तुम्हें जाना ही जाना है, नो डाउट, बट मैं ईश्वर से यही प्रेयर करती हूँ कि अंशिका की शादी यहीं गोंडा में हो, ताकि ये अपना एफएम छोड़ के ना जाए और हमारे साथ हमेशा बनी रहे यहाँ पर।
6: मतलब मैं तो घर जवाई दामाद लाने वाली हूँ।
5: हम तो यही दुआ करेंगे,
6: मेरे पापा भी ये दुआ कर रहे हैं,
5: तो बस ठीक है,
6: मुझे घर जवाई दामाद चाहिए, तुम कहीं मत जाना, मेरे लिए घर जवाई दामाद ले आना।
5: जी जी जी,
6: अब ऐसे ये मजाक था, मतलब जब होगी तब देखेंगे, क्योंकि वो पॉइंट फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करती हूँ, तो वो तो जब होगा तब होगा लिसनर्स। लेकिन यही कहेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, जब भी आप किसी के लिए कुछ कहने जा रहे हैं तो सच्चे दिल से कहिए, क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से कहेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आपको रिवॉर्ड के तौर पर कह लें, या ये कह लें कि अच्छा करते हैं तो अच्छा ही मिलता है, ज़रूर मिलेगा। अब आते हैं हमारे आज के हम बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट वाले सेगमेंट पे, क्योंकि भाई अभी तक पोएम तो हमने आपको बता दी, अब आपको बताना है हमें रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो हमारा आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो कि प्यार को ही लेकर के है, क्या कहता है प्यार, क्या समझाता है आपको आपका एहसास, दिल से क्या होता है प्यार, बताइए। आज रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताने से पहले ये सवाल आप सभी से है और मैम से भी है कि क्या है प्यार, आप बताएं आपके हिसाब से प्यार क्या है, और मैम से पूछते हैं कि उनके हिसाब से प्यार क्या है।
5: प्यार विश्वास है, और सबसे बड़ा पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके लाइफ में कोई है तो आप उसके ऊपर पहले तो आप विश्वास करना सीखें, क्योंकि आप देख नहीं रहे, आप देख नहीं रहे कि वो ऑफिस में है, घर पे है, काम कर रही है या फिर काम कर रहा है, मैं लड़की के लिए भी बोलना चाहूँगी, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो उसमें सफ़र केवल लड़की करती है। पूछो कैसे,
6: कैसे,
5: क्योंकि अगर वो जॉब में है तो आप उसको बता, वो कितना भी अपने आप को प्रूफ कर पाएगी, ठीक है कि मैंने ये किया वो किया, बट आपकी वो वाइफ नहीं है कि आप घर पे आ गए, आपने उसका मोबाइल चेक किया, पूरा दिन का रूटीन पूछा, दैट्स इट। बट वो अगर आपके आपके प्यार में है तो वो जो आपको बता रही है तो वो झूठ तो नहीं बोलेगी ना,
6: बिल्कुल।
5: अगर प्यार में है तो, अगर प्यार में नहीं है तो वो आपके साथ फरेब कर सकती है, तो इसीलिए सामने वाले को विश्वास होना अपने प्यार पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
6: तो भाई मैम ने तो बता दिया कि विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब आप भी चैट बॉक्स में जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, फटाफट से बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके हिसाब से प्यार क्या है। तो आप बताते हैं आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो कि निकल करके प्यार से ही आता है। अगर प्यार है तो प्यार के साथ साथ एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। आज हम आपको यही बताएंगे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में कि जिससे आप प्यार करते हैं उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक्सेप्ट करने का मतलब आता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब तक उसने हमारे साथ सब कुछ अच्छा किया तब तक तो बहुत अच्छी है यार, बहुत केयर करती है, मुझसे बहुत प्यार करती है, या अगर लड़का है तो अरे मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ज़रा सा समय बदलता नहीं है, ज़रा सा उसका बिहेवियर बदलता नहीं है कि हम यूँ छोड़ देते हैं कि नहीं अरे अब तो बहुत बदल गए हैं, पहले तो बहुत प्यार करते थे, अब तो जब देखो तब वो गुस्सा ही करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर आपने क्या प्यार किया था तो ये शर्त लगाई थी कि जब तक वो मेरे साथ अच्छे रहेंगे मैं तब तक ही प्यार करूँगी या करूँगा। अगर ज़रा सा कहीं स्लिप हो गया तो इसका मतलब है प्यार ख़त्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी की अच्छाइयों को एक्सेप्ट किया है तो उसकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना होगा। हम किसी के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं तो क्या सिर्फ ये देखते हैं कि जब तक वो अच्छी बातें कर रहा है तब तक ही आप बातें करोगे? हो सकता है दो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ना मिले, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे आइसक्रीम पसंद है तो सामने वाले को भी पसंद हो सकता है सामने वाले को बिल्कुल ना पसंद हो।
5: बिल्कुल,
6: ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे रेड कलर पसंद है तो मैं फोर्स करूँ कि नहीं आपको भी रेड ही पसंद होना चाहिए, हो सकता है उसे बेबी पिंक पसंद आता हो। कहने का मतलब सिर्फ आज इतना है कि किसी की अच्छाइयों के साथ उसकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करें और प्यार में कभी शर्त ना रखें, क्योंकि जो शर्त पर प्यार करते हैं इसका मतलब है कि वो सही तरीके से जानते ही नहीं है कि प्यार होता क्या है। क्योंकि जो सही तरीके से जानते हैं ना कि प्यार क्या होता है
5: वो कभी शर्त नहीं लगाते हैं। एग्जैक्टली
6: तो आपका प्यार शर्तों पर नहीं होना चाहिए, उस पर होना चाहिए जिसे आप प्यार करते हैं।
5: बिल्कुल,
6: आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ यही कहता है, तो समझे सोचे और थोड़ा सा अपने आप को बदलने की कोशिश करें।
5: अगर आप बदल जाएंगे ना तो किसी की जिंदगी सुधर सकती है, सवर सकती है। और अगर आप ईगो में रहेंगे, मतलब अपने आप को बिल्कुल ये साबित करेंगे कि हाँ मतलब मेरे जैसा कोई नहीं है और उस लड़की ने मुझे धोखा दिया या फिर उस लड़के ने हमें धोखा दिया, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, तो इसमें सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब होती है, ये आप जान लीजिए। तो प्लीज़ अगर आप किसी को भी अपना बनाने के लिए पहले वादे किए हैं और अब ऐसा कुछ हो रहा है, तो या तो उसको फिर वहीं पे छोड़ के आइए जहाँ से आपने उसका हाथ थामा था।
6: और अगर आप छोड़ नहीं सकते हैं तो फिर कोशिश करें लोगों को बदलने की, क्योंकि देखिए हम हमेशा कहते हैं ना कि अरे उसने अपने प्यार से उसे बदल दिया, तो बिल्कुल प्यार में इतनी पावर होती है कि वो किसी इंसान को बदल भी सकती है। कई बार आपने सुना होगा अरे नहीं उनका तो हार्ट चेंज हो गया, मतलब पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए, तो वो आपके प्यार से होगा। देखिए कोई आपके साथ गलत बिहेवियर करेगा, अगर आप भी उसके साथ वही बिहेवियर करेंगे तो वो इंसान कभी नहीं बदलेगा।
5: बिल्कुल,
6: लेकिन किसी की नफरत के बदले अगर प्यार दे रहे हैं तो एक ना एक दिन तो यार उसका दिल पसीजेगा ना।
5: बिल्कुल,
6: कि मैं इससे इतनी बुरी तरीके से बिहेव करता हूँ लेकिन ये तो मुझसे कितना प्यार करती है या करता है, एक दिन फील जरूर होगा। तो उस पॉइंट पे जोर दें और कोशिश करें कि आप अपने आप को सैक्रिफाइस किए बिना अपने रिलेशनशिप को या अपने प्यार को आगे ले जा सकते।
5: जी,
6: तो आई थिंक मुझे लगता है कि अभी के लिए हमने काफी ज्ञान दे दिया,
5: काफी डोज दे दिया है, तो अब हम लोगों को स्टॉप करना चाहिए, हल्का करते हैं और गाने सुनाते हैं। आज सैटरडे है वैसे भी, तो आज गानों की भरमार हम ज्यादा करने वाले हैं। उसके बाद लेकर के आएंगे आज OTT एंड सीरीज में, एंड नेक्स्ट रहेगा हमारा आज का लव राशिफल और उसके बाद गेम। तो बने रहिए हमारे साथ, बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
6: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
7: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
6: एक कमबख्त दिल की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
7: तो भुगतो।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले।

0: इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड आवास विकास कॉलोनी गोंडा।
0: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। तो आज गाने सुन करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आज हम लोगों की बकबक थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि आज ही के दिन हम लोग ज्ञान नहीं देते हैं। आज के दिन लोग ज्ञान नहीं बांटते हैं, आज के दिन हम लोग खुशियां बांटते हैं, एंटरटेनमेंट खुशियां बांटते हैं।
4: और मैम लिसनर्स को वाकई बहुत मजा आ रहा है, वो चैट बॉक्स में दिख भी रहा है।
1: तो ऐसा करें हम लोग हर रोज कुछ नहीं, बस खाली गाने चला के हम लोग हाय हेलो करके बैठ जाएंगे। मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही करना चाहिए।
4: लिसनर्स आप बताइए मतलब ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई जनता जनार्दन है, तो जैसा हाँ। जनता कहती है वैसा हम करेंगे
1: जी।
4: और पूरा जो है चैट बॉक्स में हम दिल से, और दिल है बहुत सारे, चाय है और स्माइली है, और किसी ने रोते हुए फेस भी भेजे हैं, कोई रो भी रहा है। तो हमारा चैट बॉक्स रंगा रंग है, इसमें तरबूज भी है, आइसक्रीम भी है,
1: माय गॉड,
4: और भी कुछ है, मतलब मैं भी देख रही हूँ और क्या। हाँ, रोज भी है, दो रोज है, एक आपके लिए एक मेरे लिए। मतलब आई थिंक कि लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है कि आज मैम लोग बकबक नहीं कर रही
1: जी।
4: लिसनर्स बताइए अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है या कैसा लग रहा है। ओ, मोर भी है, मोर मुझसे मिस हो गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, यानी कि हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट जो आपको लेके चलेगा एंटरटेनमेंट की तरफ। लेकिन आज हमने सोचा है कि हम आपको डराएंगे।
1: क्यों?
4: क्योंकि आज मैं जो लेकर आई हूँ उसे देखेंगे जब आप, तो आपको थोड़ा सा डर महसूस तो होने वाला है।
1: अच्छा, क्या हॉरर कुछ है क्या?
4: यस मैम, इस बार हमारे पास हॉरर है।
1: ओके।
4: क्योंकि क्या होता है ना कि कॉमेडी देखते देखते बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स होंगे उनको लगता होगा कॉमेडी में मजा नहीं आ रहा। मतलब अगर आप भी हैं मेरी तरह, मुझे भी हॉरर देखने में बहुत मजा आता है, स्पेशली रात को 12-1 बजे आप देखिए, मतलब कमरे की लाइट बुझा करके, ओह माय गॉड, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसे फिर जब आप सोएंगे ना तो वो आपको बिस्तर के नीचे,
1: ओह माय गॉड,
4: आसपास,
1: मत बोलो।
4: नहीं बोलूंगी, वो साए महसूस भी होता है।
1: अच्छा,
4: ऐसा होता है, मैंने ऐसा टेस्ट किया है अपने ऊपर कि मैं जब हॉरर मूवी मजे से बढ़िया से देखती हूँ और रात को जब सोती हूँ उसको देखने के बाद, और फिर मैं महसूस करती हूँ मेरे बेड के नीचे कुछ चल तो नहीं रहा।
1: लो, कहीं बिच्छू तो नहीं, सांप तो नहीं?
4: अरे सांप का नाम,
1: सांप का तो नाम लो यार, हम तो बस तुरंत देखने लगते हैं नीचे इधर उधर।
4: ऐसा ना करें मैम, सांप का नाम ना लें, चाहे फिर आप और किसी चीज का नाम ले लीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत डर लगता है। तो चलिए लिसनर्स, अब बढ़ते हैं, सांप का नाम नहीं लेंगे हम, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ दो लोग मौजूद हैं और उनके होते हुए यहाँ कोई सांप नहीं आ सकता है, क्योंकि हम सांप पे भी भारी हैं।
1: सांप पे भारी हैं?
4: दोनों लोग मिलकर के।
1: अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल,
4: नहीं मैंने लिसनर्स को कहा। ऐसा है कि नहीं है, आप बताइए।
1: हाँ है।
4: है?
1: हाँ बिल्कुल है,
4: वेरी पावरफुल, वो तो जब सामने आ जाएगा तब पता चलेगा। चलिए फिलहाल चलते हैं, आपको बताते हैं कि आज जो मैं शुरू करने वाली हूँ वो बहुत ही एक अच्छी सी सीरीज है जो कि अभी न्यू रिलीज हुई है इसी वीक, यानी कि कल, और नाम भी बड़ा अच्छा सा है, यूनिक सा भी है, राख।
1: ओके।
4: अली फजल और सोलानी बेंद्रे का इसमें है, और बहुत ही अच्छी सस्पेंस है, और सस्पेंस के साथ में ये थोड़ी सी इस उस पे बेस्ड है कि नेगेटिविटी जो होती है वो किस तरीके से पॉजिटिविटी पे कभी भारी पर जाती है, लेकिन लास्ट में जो जीतेगी वो आपके अंदर की पॉजिटिविटी ही जीतेगी। तो किस तरीके से आपको अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी रखनी चाहिए, और वो अगर आपके अंदर है तो नेगेटिव एनर्जी आप पे हावी नहीं हो पाती है, वो इस मूवी में दिखाया गया है। कि जो हीरोइन होती है मैम उसके मतलब उसको नेगेटिव एनर्जी पूरी तरीके से अपने काबू में कर लेती है, लेकिन फिर भी लास्ट में उसके अंदर से जो एक पॉजिटिविटी निकलती है वही जीतती है।
1: ओके।
4: तो बहुत ही अच्छी है, जरूर।
1: तो ऐसे ही होता है, पता है, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, मुझे ऐसा कुछ लगता है, फील होता है
4: जी मैम, ऐसा ही होता है बिल्कुल। तो चलिए जरूर देखिएगा और अपने बढ़िया से वीकेंड को और बढ़िया बनाइएगा, और डरिएगा बिल्कुल नहीं, कि डरने जैसा तो कुछ भी नहीं है। Amazon Prime पे आप इसे देख सकते हैं, तो जरूर देखिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे, जो कि आपको तो पता ही होगा कि जब से बिग बॉस सलमान

0: धवन ने होस्ट करना शुरू किया है, तब से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में शो को होस्ट करने का एक जो क्रेज है,
1: हाँ, वो ज्यादा
0: वो बहुत ज्यादा।
1: और मुझे लगता है कि सलमान खान से पहले भी अमिताभ जी के कौन बनेगा करोड़पति,
0: कौन बनेगा,
1: उसके बाद सलमान जी आए, उसके बाद अब तो सभी लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग भी शो करें, हम लोग भी शो करें। अच्छा ये बताओ कि तुम ओटीटी सीरीज के बारे में बताती हो या फिर टीवी सीरियल्स के बारे में बताती हो, तो खतरों के खिलाड़ी शुरू हो गया है कि नहीं?
0: खतरों के खिलाड़ी का सीजन आई थिंक
1: सर्दियों में होता है, जनवरी में, दिसंबर टू जनवरी में होता
0: है, जो बिग बॉस का टाइम होता है वही खतरों के खिलाड़ी का।
1: लेकिन इस बार वो मतलब नहीं हुआ था स्टार्ट,
0: ये
1: सीजन नहीं हुआ था।
0: तो मैं आपको ये बता रही थी कि सलमान जी का ये जो शौक है वो अभी अभी नया आया है शिल्पा शेट्टी जी के मन में।
1: ओके।
0: और वो नया अपना होस्ट शो लेकर के आ रही है जो कि बहुत ही मजेदार और कॉमेडी से भरपूर होने वाला है, और इसमें महिलाओं के लिए स्पेशली, वैसे सॉरी महिलाओं के लिए नहीं, अगर मेल भी शौकीन है तो वो भी सीख सकते हैं क्योंकि वो आपको कुकिंग सिखाने वाली,
1: कुकिंग वो भी शिल्पा जी।
0: जी
1: कौन से चैनल पे आ रहे हैं शिखा?
0: और ये चैनल पे नहीं आएगा मैम, ये G5 ऐप पे।
1: अच्छा G5 ऐप पे आएगा,
0: ऐप पे आप इसे देख सकते हैं। और इसमें शिल्पा शेट्टी, जैसे कि सभी जानते हैं कि वह इनकी स्लिम ट्रिम जो बहुत ही अच्छी सी एक फिटनेस है,
1: मेरी तरह
0: आपकी तरह बिल्कुल, तो जो फिटनेस है वो उसका राज यही बताती है कि वो खाती हैं जो भी मतलब अपनी डाइट में चीजें लेती हैं वो कुछ उनकी इजाद की हुई चीजें हैं, तो वो भी आपको बताएंगी कि आप अपने आप को फिट कैसे रखें।
1: जी बिल्कुल,
0: तो जरूर देखिए और इंजॉय करिए, इसमें आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। अब आ जाते हैं कॉमेडी, क्योंकि वह थोड़ी सी कॉमेडी तो बनती है
1: बिल्कुल।
0: और जब बात हो कॉमेडी की, और अगर हम बात ना करें भूल भुलैया की, तो कुछ मजा नहीं आएगा।
1: ओहो, भूल भुलैया सीजन 3 या 4?
0: आई थिंक 4।
1: 4, मैं तो जरूर इसको हॉल में देखने जाऊंगी, क्योंकि मैंने 1, 2, 3 मुझे बेहद पसंद है, और जब भी आती है ये हम लोग जरूर देखते हैं मूवी ये।
0: बिल्कुल देखिए लिसनर्स, क्योंकि इस बार भी अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव, ये सभी होने वाले हैं, और नेटफ्लिक्स पर आप इसे देख सकते हैं, रिलीज हो चुकी है और बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कॉमेडी से होगी ये भरपूर और भूल जाएंगे आप किसी और का सुरूर। तो जरूर देखिएगा और एंजॉय करिएगा
1: जी,
0: बहुत मजा आएगा।
1: ठीक है, तो अंशिका हम सोच रहे हैं कि अभी हम लोग ना, टाइम हो रहा है 2:32, ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग एक सॉन्ग चला दें, और सॉन्ग के मिड में हम एक वर्ड भी देते रहेंगे और साथ ही साथ में लव राशि फल भी बताएंगे, क्योंकि आज का दिन यार हम लोग ज्यादा ना बोलते हुए गेम पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो लिसनर्स रेडी हैं आप गेम खेलने के लिए, तो आप लोग चैट बॉक्स में आकर के एक बार यस यस यस यस का इमोजीज भेज दें, और तब तक हम चलाते हैं एक सॉन्ग, और सॉन्ग के मिड में ही हम आपको देंगे आज वर्ड, यानी कि आज हम आपको अक्षर नहीं देने वाले, हम आज आपको देने वाले हैं एक वर्ड, जैसे आम, इमली, अनार, ऐसे वाला।
0: ओह वाओ,
1: ठीक है, तो चलिए सीजन है बारिश का, तो बारिश से रिलेटेड ही हम आपको आज वर्ड्स देने वाले हैं, तो गाने के मिड में मैं आऊंगी और आपको वर्ड दूंगी, तब तक के लिए सुनिए इस प्यारे से गाने को।

तो लिसनर्स, हमने आपको वर्ड दिया था बारिश, और बारिश से पहला गाना आया है प्रीति जी का, जिन्होंने भेजा है कि बरसात के मौसम में घर से, तो वो सॉन्ग हमने लगा दिया है। तो आइए सुनते हैं प्रीति जी के सॉन्ग को, एंजॉय करते हैं।

ओके, तो नेक्स्ट सॉन्ग इज जो है वो है सबलू जी का, और नेक्स्ट वर्ड हम आपको देंगे वो भी चैट बॉक्स में, तो चैट बॉक्स में बने रहें और नेक्स्ट वर्ड का इंतजार करें।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज अंशिका। तो चलिए भाई फटाफट राशिफल यानी कि लव राशिफल हमें आपको बता दूं। तो लव राशिफल में सबसे पहला है मेष राशि वालों के लिए क्या निकला है, आइए जानते हैं। जीवन साथी के साथ प्यार भरे पल बिताएंगे और आपसी समझ बहुत आपकी मजबूत होने वाली है। वृषभ राशि वालों के लिए है कि प्रेम संबंधों में छोटी मोटी गलतफहमी हो सकती है, धैर्य बनाए रखें। मिथुन राशि वालों के लिए है कि लव लाइफ में नए रोमांच का अनुभव होगा, साथी के साथ समय बिताना सुखद हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए है कि लव लाइफ में कुछ छोटी मोटी समस्याएं या गलतफहमियां सामने आ सकती हैं। सिंह इज माय फेवरेट राशि, जिसमें आज का दिन है कि अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद से बचें, यानी उनकी भावनाओं को समझें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कन्या राशि वाले, सिंगल जातकों के लिए जीवन में कोई नया व्यक्ति दस्तक दे सकता है, प्रेम प्रस्ताव मिलने के योग हैं। ओके। तुला राशि वालों के लिए है कि रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी, साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने के अवसर मिलेंगे। एंड वृश्चिक राशि वालों के लिए है कि प्रेम जीवन में अनुकूलता रहने वाली है, एक दूसरे को समझने और सहयोग करने का मौका मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए है कि आज अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं या प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। मकर राशि वालों के लिए है कि जीवन साथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद समाप्त होंगे और संबंध बेहतर होगा। कुंभ राशि यानी मी एंड मी ओनली मी क्या है, रिश्तों में स्थिरता आएगी, साथी के साथ भविष्य के फैसलों पर चर्चा हो सकती
1: है। नॉट बैड।
0: तो साथी के साथ मुलाकात तो हो पहले, मीन
1: अब देखिए चर्चा होगी तो इसका मतलब
0: मुलाकात होगी,
1: नहीं तो चर्चा कैसे होगी।
0: आमीन। मीन राशि वालों के लिए है कि आपकी लव लाइफ में उत्साह कुछ इमोशंस भरा जुड़ाव आज हो सकता है। तो ये थी आज की लव राशिफल जो कि मेरे लिए भी बहुत बेहतर निकली है, एंड आई थिंक सो कि अंशिका आपके लिए भी। आपकी कौन सी राशि है?
1: मेरी भी कुंभी है मैम।
0: तो कहाँ चर्चा करने जा रही हो आज तुम?
1: अब निकला है तो देखते हैं, हो सकता है कोई मिल जाए,
0: मिल जाए रास्ते में मिल जाए। वैसे तो इनको अगर कोई मिलता है तो फिलहाल वो डांट खाए बिना जाता नहीं है, मैंने इनको देखा है बहुत, ये मेरे सामने केवल सीधी बनती है, है बहुत लड़ाका, मैंने कई मामलों में इसको लड़ते हुए देखा है। बट काफी लोग तो पता है अंशिका हम लोगों से इसलिए भी दूरी बनाते हैं कि भैया कौन छेड़े इन लोगों को,
1: ये लोग छेड़ दिया तो फिर छोड़ेंगे नहीं।
0: हाँ, छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मर्दानी का गाना है ना, उसमें एक गाना है ना कि
1: हाँ। लाइन होती है ना, छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, हाँ। पर छेड़ के देखो तुम मुझको,
0: तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो बस यही बात है। तो चलिए आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को जो कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है, एंड मी ऑल्सो लव से भरा हुआ गाना है। आखिर तुम्हें आना है देर लगेगी, एंड रियली आखिर तुम्हें आना है थोड़ी देर लगेगी।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

लिसनर्स, तो भाई आज के शो के बारे में फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आज के प्रोग्राम का फीडबैक अभी तक आप लोगों ने नहीं दिया है कि आज हम लोगों की ज्ञान की भाषा ज़्यादा नहीं चली थी। अंशिका और हम लोग आज सोच के ही आए थे कि आज हम लोग ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, आज सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट ही करवाएंगे। तो गानों के साथ साथ अब हमारे हमें दे इजाज़त और मिलेंगे मंडे को, यानी लजीज मंडे को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

हाँ जी, तो वक्त हो चला है आपके फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा का। मैं हूँ आपके होस्ट एंड आरजे आकांक्षा, लेके आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम। आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो गाना 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। भाई आज धड़कने तो बहुत ज्यादा धड़कने वाली है, कारण है मौसम बड़ा औसम है, और जब मौसम औसम होता है तो मूड मन और सब कुछ कहाँ होता है भाई, टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द नहीं, ऊपर नीचे मतलब ऐसे गोते खाता है भाई, बीच में कहीं अटका पड़ा होता है। इसलिए बढ़ेंगे आज की पहली डिमांड के साथ में, और पहली डिमांड किसी और की नहीं, आपकी अपनी आरजे आकांक्षा की प्लेलिस्ट से है। लगातार आपकी कॉल्स आ रही है। सबसे पहले अगर आप किसी के साथ में कहीं एक प्यारी से रोमांटिक वाले मतलब लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलेंगे तो कौन सा गाना प्ले करेंगे, आपका और उनका हाथ दोनों साथ हो तो फिर आप क्या मांगेंगे ऊपर वाले से, ये गाना आपको वही बताएगा। तो आपको भैया बता दूं उससे पहले, अगर आपको भी अपने डिमांड्स को कंप्लीट करवाना, वैसे आज इस ट्रेंडी वाले सैटरडे, तो सैटरडे में थोड़ा आपको अपने हाथों को मजबूत करना पड़ता है, लगातार आपको कॉल्स मिलानी पड़ती हैं, और जो लकी कॉलर होते हैं गानों के एंड पे उनकी कॉल उठ जाया करती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा के द्वारा। फिलहाल नंबर वही है 6393316429 यानी कि 6393316429 और ये गाना आप सभी के लिए, वैसे जब हाथ में हाथ हो या फिर कोई दिल के पास हो तो गाना यही होना चाहिए। तो आप सभी हमारे दिल के पास है, इसलिए आप सभी को डेडिकेट करते हुए आज का पहला गाना आपकी अपनी आरजे आकांक्षा की ओर से। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, फिर आते हैं देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में आज का लकी फर्स्ट कॉलर कौन बनता है।

0: हाँ जी दोस्तों, तो लाइफ में कुछ हो या ना हो, अगर किसी का साथ हो, कोई आपके दिल के पास हो, उसका हाथ हो या ना हो, वो आपके दिल के करीब हो ना, तो ये गाना उसको जरूर से डेडिकेट कर दीजिएगा। सलामत, चाहे जहाँ जो भी रहे, बस सलामत रहना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे आज के हम पहले कॉलर की ओर और देखते हैं हमारे लकी कॉलर कौन बने हैं। हेलो
1: मैम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, अपना शुभ नाम बताएं।
1: हम लक्ष्मणपुर से बोल रहे हैं, रविंद्र
0: जी। लक्ष्मणपुर से हमारे रविंद्र जी ने कॉल मिला लिया है, पहले लकी कॉलर बन गए हैं। क्या सुनना चाहेंगे रविंद्र जी?
1: आ गया दिल चुराने में आ गया।
0: आ गया दिल चुराने में आ गया। ओह, ये 90s में से? ओके, शुक्रिया, एंजॉय करते रहिए, थैंक यू सो मच। तो फिर चलते हैं भाई रविंद्र जी की डिमांड पे, सुन लेते हैं कि ये दिल चुराने आए हैं और किस किस का दिल चुराना चाहते हैं इस गाने के माध्यम से। एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को 3 से 4 के सफर में, आपके अपने शो कॉलर ट्यून गुंडा को।

गाना हमारे मौसम जी को डेडिकेट करना चाहिए। बहुत प्यारा सा मौसम है और वैसे ये जब आता है तब सभी का दिल चुरा ही लेता है। एंजॉय करते हैं रविंद्र जी की डिमांड पे दिल चुराने वाला ये गाना।

0: जी, और मौसम भी जब भी ऐसे आते हैं, मौसम बन के तो भैया दिल सबका चोरी हो जाता है। लेकिन हमारे पास में कॉल भी लगातार आ रही है, देखते हमारे साथ में कॉल पे कौन है नेक्स्ट कॉलर। हेलो,
1: नमस्कार, गुड आफ्टरनून
0: जी। नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: सबलू सावंत बोल रहा
0: जी। सबलू सावंत जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अभी तक तो आप थे मोतिहारी बिहार में, उसके बाद आप पहुँचे बोरीवली मुंबई में, इस वक्त आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सांता क्रूज से बोल रहा
0: हूँ। देखिए, ये एक जगह कभी टिकते नहीं, आप मौसम है जो बदलते रहते हैं, या फिर आपके पाँव है जो ठहरते नहीं, बस चलते रहते हैं।
1: नहीं, वहाँ से
0: ओके तो फिलहाल क्या सुनना चाहेंगे?
1: सॉन्ग है जानी दुश्मन की, एक अनोखी कहानी मूवी से, जाने मन तो खूब।
0: ओह, जाने मन तू खूब है। आज मतलब ये गाना सुनने का मूड कैसे हुआ? मौसम अच्छा है इसलिए या कुछ और?
1: यहाँ तो मौसम बहुत ही बेस्ट
0: है ना आज।
1: आप लोग बताइए कि
0: बहुत बहुत बहुत बहुत औसम वाला मौसम है, इसीलिए तो हमने मतलब जब बरसात का बीजीएम यूज कर लो तो आप समझ जाया करिए यहाँ का मौसम क्या है। फिलहाल एंजॉय करिए आपकी डिमांड का ये सॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

हाँ जी, तो वेलकम कर लेते हैं चैट बॉक्स वासियों को, यानी कि हमारी प्रीति शुक्ला जी बहराई से हैं, नीना जी, ओहो चंगू जी, दीपांशु तिवारी जी हैं, उस्मान खान जी हैं, सरू सावन जी मुंबई बोरीवली से, जिनका बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से, कमल नैन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, धर्मेंद्र मोहन भारती जी आवास विकास कॉलोनी गोंडा से, के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, और हथियागढ़ से हमारे दीपक जी, इसके अलावा दरक्षा अंसारी जी और बबीता जी, राम भवन जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। और ये गाना भाई बड़ा ही प्यारा है आप सभी महिला मित्राणियों के लिए।

0: आगे और चलते देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे हमारे साथ में कॉलर कौन है। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून, अपना शुभ नाम बताएं।
1: मैम नाम तो आपको पता नहीं, पहली बार तो आपने बता दिया कि मोबाइल को हाथ में थाम के रखे। हम तो मोबाइल क्या कर चूरी, मोबाइल की सांस ही नहीं लेने दे रहे, लेकिन मोबाइल को सांस लेने दे, इतने कॉल कर चुके हैं।
0: हाँ।
1: दो घंटे खाली गई होगी, उठ भी नहीं रहा था।
0: क्या बात है भाई, बहुत सही बात है। और गाना फोन तभी उठता है, आज को आपको दिन पता है जब गाने का एंड आता है।
1: जैसे आपने बताया कि अपने मोबाइल को हाथ में थाम के रखे, तो हमें क्या लगा कि 15 अगस्त लड्डू बटने जा रहा है।
0: नहीं भाई साहब, आपको बता दें, आपको लड्डू उसी दिन मिलेगा जिस दिन आप आ जाएंगे स्टूडियो। आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर सारा राष्ट्रीय पर्व मैं उसी दिन मनवा दूंगी। और कुछ
1: तो हमने सोचा कि लड्डू छूटने ना पाए, नहीं तो फिर इंसल्टी हो जाएगी।
0: नहीं नहीं, लड्डू नहीं छूटा आपको, आपका लड्डू प्राप्त हो चुका है आपके गाने के रूप में। लेकिन अब हमें गाना तो बताएं क्या बजाएं।
1: मैम पहली बात तो ये थी कि हम आपकी मर्जी से कोई सुनना चाहते थे, अगर आप अपनी मर्जी से कोई नहीं बता रही है तो बताइए, हम बता दें आपको फिर।
0: अभी देखो, एक तीर से दो निशान ऐसा होता है। हाँ आप बताएं पहले।
1: घूंघट की आड़ से दिलवर का दिलदार अधूरा रहता है।
0: दिलदार नहीं, दीदार अधूरा रहता है जनाब।
1: दीदार, जी हाँ सही बात है, दीदार अधूरा रहता है। जब तक मैं प्रवासी की नजर सिंगार अधूरा रहता है।
0: बिल्कुल बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करिए ट्रैक को। थैंक यू सो मच। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल नैन जी। चलिए भाई, फिर कमल नैन जी की इस प्यारी सी डिमांड को हम कर देते हैं पूरी, और फिर देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन होंगे लकी वाले जिनकी कॉल उठेगी। एंजॉय करते रहिए 3 से 4 के सफर में आपके अपने शो कॉलर ट्यून गोंडा को विद योर आकांक्षा।

ये हुई ना बात, गाने ऐसे होने चाहिए जो कई दिनों बाद आपने सुने हो। आप लोगों की हैबिट हो गई है, आप लोग एक ही गाने को लगातार लगातार लगातार रिपीट पे सुनते हैं। रिपीट टेलीकास्ट थोड़ी है जनाब, गानों की बात है। गाने कितने सारे हैं ढूंढिए, बहुत प्यारे प्यारे हैं। और 90s हिट्स में से एक गाना ये हमारे कमल नयन जी की डिमांड पे।

0: देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ में। गाना बहुत जबरदस्त था। हेलो
1: नमस्कार मैम
0: जी। नमस्ते, अपना शुभ नाम बताएं सर।
1: मनीष शर्मा बोल रहे हैं
0: जी। आप कहाँ से बात करते हैं?
1: हम तो गोंडा खुरासा भटपुरवा से बात
0: जी। तो हमारे बीच में है मनीष शर्मा जी गोंडा खुरासा भटपुरवा से। आप क्या सुनना चाहेंगे सर?
1: उसकी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली।
0: उसकी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, ये किस मूवी से है?
1: मूवी का नाम नहीं, लेकिन इमरान हाशमी और एक नई एक्टर है।
0: ओके, उसकी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। चलिए आपकी डिमांड हम कंप्लीट करते हैं। लुट गए हम तो तेरी। लुट गए। ओके थैंक यू, एंजॉय करिए इस ट्रैक को। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं दोस्तों फिर इस बेहतरीन वाली डिमांड की ओर। भाई ये आपकी आरजी आकांक्षा को बेहद पसंद आने वाला सॉन्ग है। भाई भाई भाई भाई भाई कुछ नहीं बोल सकती मैं, एंजॉय करते हैं।

हाँ जी दोस्तों, तो मानी जी चैट बॉक्स में भी जुड़ गए हैं। उस्मान खान जी ने जबरदस्त सॉन्ग बोला है कमलनाथ जी के सॉन्ग को, और अब्दुल मुजीम साहब भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पिंटू जी है यूपीएससी लवर बालपुर से। पिंटू जी आज कॉल करना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे गाने नहीं प्ले कर पाऊंगी। और मुस्तफा जी सऊदी अरेबिया से फलारी गाना।

0: हाँ जी, और बहुत बहुत आशीर्वाद पिंटू जी आपको। और गाना वाकई बहुत ही खूबसूरत सा था। और अब्दुल मुजीम साहब लिखते हैं, लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है। ओहो, लुटी है एक बेटी, लुटा सम्मान सबका है। बहुत गंभीर बात, बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की। ओह माय गॉड, लड़ो मिलकर दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। ओहो, क्या बात है भाई, बहुत गहराई से निकाल के लाए आप आज के अल्फाजों को, बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा जी हैं, आ गई भाई मैं मंगू जी बहराई से, फिलहाल देखते हैं कॉल पर कौन बना हुआ है, काफी देर से इंतजार हो रहा है। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
1: धर्मेंद्र मोहन
0: जी। धर्मेंद्र मोहन भारती जी हमारे साथ में बने हुए हैं, क्या सुनना चाहेंगे धर्मेंद्र जी आज?
1: आज आपको सिचुएशन पे गाना सुनाना है।
0: OMG, रोज सिचुएशन देने वाली, आज खुद ही फंस गई।
1: जैसे आप अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हैं।
0: ओके,
1: सुना दीजिए, नहीं तो कहिए मैं बता दूं।
0: तो आप बता ही दीजिए भाई, आपकी फरमाइश है तो आपके हिसाब से होनी चाहिए, हमारे हिसाब से तो।
1: मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ।
0: और मैं तो किसी सहेली के साथ जाती ही नहीं।
1: कनकाओ चूड़िया कंगना बजाओ।
0: ओके, वैसे ये आप ही की डिमांड थी, आप ही तक पहुंचा रहे हो, और ये सिचुएशन मेरे पे बिल्कुल लागू नहीं होती है। फिलहाल बजा देते हैं आपकी पसंद का ये गाना कि मेरी सहेलियों मेरे पास आओ।
1: ठीक जी, मेरे मित्र गान के लिए बजा दी। ओके।

क्या बात है भाई, हम क्या ही बोले। धर्मेंद्र जी जब भी गाने ढूंढ के लाते हैं बड़े ही प्यारे होते हैं, काफी पसंद है मुझे, लेकिन ये मुझ पे सूट नहीं करता है, ये बात दुख की है। प्रबल मिश्रा जी आ गए और पंडित जी हमारे बीच में, आपको भी शुभ दोपहरिया प्रबल जी एंड राधे राधे ऑल्सो।

0: क्या बात है भाई, दिल धड़काने के लिए बालमा की जरूरत पड़ती। देखते हैं इस बार कौन आया है कॉल पे। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: राधे राधे मैम।
0: राधे राधे पंडित जी, कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक है मैम, मौसम के साथ।
0: मौसम के साथ आज की डिमांड बड़ी प्यारी प्यारी आ रही, मैं तो सुन के बड़ी खुश हो रही हूँ। पता है आज मतलब शुरुआत से जितनी डिमांड्स हुई हैं बहुत प्यारी आई हैं। आप क्या सुनना चाहेंगे वैसे?
1: आज हम अभी तक तो अपने हिसाब से ही सुन रहे थे, आज आपके हिसाब से कौन सा गाना सुना जाए?
0: हे भगवान, क्यों डराते हैं। ठीक है तो हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाते हैं, क्योंकि हमने अपनी पसंद का प्ले किया था, आप शायद देर से जुड़े हुए हैं तो नहीं याद आ गया, बजा देते हैं आपकी पसंद का आपके लिए खास हम खास, और मुझे लगता है ये आपके उनके लिए खास होगा। ठीक है, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद।
0: ओके चलिए फिर चलते हैं भाई प्रबल जी की डिमांड पे, प्रबल जी की उनके लिए खास करके ये गाना। एंजॉय करते हैं 3 से 4 के सफर में ये सॉन्ग।

पंडित जी हमें फीडबैक चाहिए आपकी तरफ से। फिलहाल ये गाना आप एंजॉय करें आपकी अपनी आकांक्षा की पसंद पे प्रबल जी की डिमांड पे। एंजॉय करिए 3 से 4 के सफर यानी की कॉल ट्यून गुंडा को।

0: जी हाँ, आपने एंजॉय किया इस प्यारी सी डिमांड को और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉलर की ओर। काफी देर से भाई इनकी कॉल आ रही, हमने कॉल ले लेते हैं, देखते कौन है। हेलो,
1: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून।
0: अरे बाप रे बाप, ऐसे कौन बोलता है हेलो एवरीवन।

0: आफ्टरनून
1: आप कैसी हैं? हाल चाल बढ़िया सब?
0: ओ माय गॉड, इतना आज स्पीड में क्यों है देवी प्रसाद जी? क्या छूट रहा है आपका?
1: पता नहीं मुझे मालूम नहीं।
0: ओ माय गॉड, आज लग रहा है आप पूरा मौसम की तरह बदल चुके हैं और काफी खुश हैं। क्यों देवी जी?
1: खुश नहीं है।
0: अच्छा जी,
1: लेकिन समझ लीजिए, जो समझ लीजिए आप।
0: ओहो, हम जो समझ ले बस वही है।
1: तो यही सब हमारा डिमांड है, फरमाइश है।
0: जी जी कहिए।
1: बना के क्यों बिगाड़ रहे ऊपर वाले? और ये डिमांड अगर नहीं होगा तो दूसरा बता रहे हैं।
0: हाँ?
1: तेरी गलियों में मतलब कदम रखेंगे ना दोबारा। और तीसरा डिमांड बता रहे हैं, इन तीनों में से कोई सुनाना?
0: नहीं नहीं, सुनिए हमारी।
1: जैसी करनी वैसी भरनी।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने बता दिया, करनी और भरनी दोनों पड़ेगी, लेकिन हम इन तीनों में से आपको नहीं सुनाएंगे। हम अपनी पसंद का आपके लिए स्पेशल सॉन्ग बजाएंगे, सुनना चाहिए? जी बाय बाय, टेक केयर। चलिए भाई, देवी जी के डिमांड के लिए, देवी जी के लिए स्पेशली ये सॉन्ग भाई बड़े दिनों बाद पहुंचा रहे हैं।

रीना जी, भीगना केवल आप ही को नहीं पसंद है, हमको भी बेहद पसंद है, और मोटो वाला सॉन्ग आप लोगों को काफी पसंद है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबलू जी, यकीन मानिए, अगर आप किसी को प्यार से मोटो बुलाएंगे ना, तो नाराज नहीं होगी, मुस्कुराएगी बल्कि। और हमारे बीच भाई इट्स कुमार साहब भी आ गए एमपी रीवा से, क्या बात है भाई, ये लाइव आए हुए हैं, इनका जो डीपी लगा उसमें लाइव लिखा है इसलिए बोल दिया है, ज्यादा मत समझ लीजिएगा, एंजॉय करते इस ट्रैक को।

0: भाई ये गाना जितना प्यारा है उतनी ही ज्यादा प्यारी ये मूवी है वीर। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर। हेलो हेलो
1: हेलो मैम नमस्ते
0: जी। नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं सर और कहां से सुन रहे हैं ये भी बताएं।
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से अभी मैं सुन रहा हूँ मैम।
0: जी माँ मैहर की बहुत बहुत बड़ी वाली जय। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे रेडियो सुनते हुए मैम।
0: जी क्या सुनना चाहेंगे सर बताइए।
1: जी आज सुनवा दीजिए गाने को बोल रहे ओ सनम ओ सनम।
0: ओ सनम ओ सनम कौन सी, मतलब 90s का है या कोई और?
1: 90s का है मैम।
0: ओके ठीक है, आप एंजॉय करिए, जोर मूवी से है। चलिए चलते हैं भाई इनकी डिमांड की ओर और लगातार आप सभी की कॉल्स आ रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बनी रही है, देखते हैं नेक्स्ट कॉल किसकी उठेगी। और हाँ जी सुरेंद्र जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो लास्ट डिमांड मैं आपकी लेने वाली हूँ, आप परेशान मत होइए।

0: रिया जी का फीडबैक आ गया जो हमें सीतापुर से सुनते हैं। भाई इनको ये गाना काफी पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। रीना शर्मा जी भी बनी हुई हमारे साथ में रुड़की उत्तराखंड से। और एक बात और कुछ कहनी थी, मैं भूल गई। मैं बुलक्कर बहुत बड़ी वाली हूँ, लेकिन याद आ गई। बात ये थी कि आज की प्लेलिस्ट काफी अच्छी है। कारण है, आज सारे नगमे लगभग नए प्ले हुए हैं। ऐसा कोई गाना मैंने नहीं दोहराया है जो दोहराया गया। फिलहाल देखते हैं हमारे साथ में कॉलर कौन है, क्या सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, अपना नाम जल्दी से बताएं, जल्दी से अपनी डिमांड बताएं।
1: बबीता।
0: क्या सुनना चाहेंगी बबीता जी?
1: दीवाना है ये मन।
0: दीवाना है ये मन, थैंक यू।

से अभी आपने एंजॉय किया ये गाना उदित नारायण जी और पमिला जैन जी की आवाज में, जिसकी डिमांड की गई थी सुनील कुशवाहा जी के द्वारा मैहर वाली के पास से, यानी कि एमपी से। अभी चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारी बबीता जी की है। मैं बबीता ओह माय गॉड, परेशान हो गई थी फोन मिला मिला के। चलिए चलते हैं इस डिमांड की ओर और फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में, देखेंगे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन है। जाते जाते सुरेंद्र जी, लास्ट डिमांड आपकी।

0: माजी भाई निखार का तो पता नहीं, लेकिन हमारे पास में नेक्स्ट कॉल आ गई और ये कॉल हम उठा लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ में कौन है। हेलो,
1: नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, आप अपना शुभ नाम बताएं।
1: राम सजीवन बोल रहे हैं
0: जी। राम सजीवन जी, कहाँ से सुनते हैं आप हमें?
1: एफएम कोठी से सुनते हैं मैडम
0: जी। क्या सुनना चाहेंगे राम सजीवन जी?
1: पतझड़ सावन बसंत बहार।
0: पतझड़ सावन बसंत बहार, कोई गाना दूसरा बताएंगे प्लीज? ये गाना कई दफा बज चुका है इसलिए।
1: कोई अपने मन से बताइए, कोई सुना दीजिए।
0: अपने मन से आप ही बताइए कुछ और, कोई और।
1: आदमी एक खिलौना सुना
0: दीजिए। ये सैड सॉन्ग क्यों सुनते हैं आप? नहीं नहीं, कोई प्यारा सा सॉन्ग बताइए प्लीज। रोमांटिक सा मौसम है, मौसम के अकॉर्डिंग बताइए ना। हेलो,
1: सावन आया बादल छाया।
0: क्या?
1: सावन आया बादल छाया।
0: सावन आया बादल छाया, हाँ ये भी अच्छा है, सावन आया बादल छाया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलते हैं फिर हम अपने राम सजीवन जी के डिमांड की ओर और कंप्लीट करते हैं इस डिमांड को, फिर देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे हमारे साथ में कौन है।

मौसम का जादू है, जानवर आ गए चैट बॉक्स में, खाना आ गया चैट बॉक्स में, सब नाचने गाने लगे हैं और यहाँ तक के आगे बता नहीं सकते, छिपकली भी आ गई है। एंजॉय करते इस ट्रैक को।

आज तो आधी क्रॉस हो गई भाई। सुरेंद्र जी का कहना है, मनीष जी का कहना है, आऊंगा सुरेंद्र जी का कहना है, स्वीट सॉन्ग मैं लेके आऊंगा, केक और आइसक्रीम आप सब खाओगे। क्या बात है भाई, कब आओगे? लेकिन तुम कब आओगे? नेहा जी पूछ रही है, ये गाना सुनते बड़ा प्यारा गाना है।

0: हाँ जी, और देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे हमारे साथ में कौन है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते अनुष्का जी, आपके उधर बादल छाए हैं या फिर कुछ और छाया है?
1: जी जी, मेरे यहाँ भी बादल छाया हुआ है।
0: बस बादल ही छाया हुआ है, पेड़ की छाया नहीं है?
1: बादल की छाया के सामने पेड़ का छाया नहीं दिख रहा है।
0: ओके, बादल की छाया के सामने पेड़ का छाया नहीं दिख रहा है, किसी का साया तो नहीं दिख रहा है? भाई धूप है ही नहीं, परछाई दिखेगी नहीं तो साया कहाँ से दिखेगा, जाहिर सी बात है। फिलहाल करते हैं मजाक से पर इतर होते हैं, क्या सुनना चाहेंगी?
1: काला।
0: अच्छा अच्छा, पहले आप खा लीजिए। खा क्या रही है, काला अंगूर तो नहीं खा रही है?
1: खा रहे
0: क्या है भाई, गाना नहीं, गाना गाना सुनना है लेकिन खाना उससे पहले होना चाहिए। अब हमने जान लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करिए इस ट्रैक को।
1: ओके
0: ओके भाई, चलते हैं काले चश्मे की ओर और खाना खाते खाते सुनते हैं ये गाना।

अर्थ वर्षा अर्पण जी, बड़े दिनों बाद हेलो एवरीवन इन्होंने बोला है, और स्पेशली आपके प्यारे नन्हे मुन्हे पार्थ जी के लिए ये गाना, उनको चश्मा जरूर लगाइएगा।

मैंने काला चश्मा, जी हाँ जच चुका है ये गाना। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांडर की ओर। हेलो क्या हुआ भाई? कोई बात नहीं, हमारे सुरेंद्र जी की कॉल थी और लगा देते इनका गाना, बड़ी देर से परेशान है जनाब हमारे, तो सुना देते हैं अपने जी हाँ गौरा चौकी वासियों को ये प्यारा सा गाना। भाई इतना प्यार क्यों हो गया आपको इस गाने से, ये जरा मेंशन करिए सुरेंद्र जी, दोबारा मैं बजा रही हूँ इसलिए। चलिए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर और नेक्स्ट कॉलर की ओर।

तो भाई सुरेंद्र जी ने बता दिया कि अक्षय कुमार का गाना है, अच्छा लगता है इसलिए। ओके कोई बात नहीं, इस गाने को ही हम दोबारा से एंजॉय करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ में कौन है। लेकिन उससे पहले बता दें शेष हमारे पास में बचा हुआ सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट, यानी कि 22 स्टूडियो क्लॉक हो रहा है 3:49। अभी चलते हैं इसी नगमे की ओर, और जाते जाते मुस्तफा जी आपका सॉन्ग लास्ट होने वाला है, परेशान मत होइए, और देखेंगे फिर कॉल पे कौन है। लेकिन उससे पहले ये गाना कंप्लीट होने देते हैं।

0: इस गाने में ना मैं क्या बताऊँ क्या फील लेता है, अगर आप हेडफोन लगा के सुने या वैसे भी सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है आप सब खुद में एक हीरो हैं। भाई मुझे फील ले गया जबकि मैं एक लड़की हूँ, हीरो वाला फील आ रहा था। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे हमारे साथ में कौन है। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं, कहाँ से सुन रहे हैं?
1: हेलो, मोहम्मद शेख खान बोल रहा हूँ
0: जी। कहाँ से बोल रहे हैं सर?
1: स्टेशन रोड घुसियाना से बोल रहा हूँ
0: जी। स्टेशन रोड घुसियाना से क्या सुनना चाहेंगे?
1: हैरान हूँ मैं आपसे, जुल्फों के देख कर,
0: अरे बाप
1: को घटा कहूँ, घटा क्या कहूँ।
0: नहीं नहीं क्या कहना, क्या चाहते हैं? जो कहना चाहते कह दे। कई दफा होता है लोग नागिन भी कह जाते ना, इसलिए मुझे बहुत तेज हंसी आई। बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करिए अपने भेजे गए गाने को। थैंक यू जी, थैंक यू।

0: जी हाँ दोस्तों, और आज की आखिरी कॉल में लेने वाली हूँ। देखते हैं नेक्स्ट लकी कॉलर हमारे कौन है। हेलो हेलो,
1: नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं जल्दी से और अपनी डिमांड भी बता दें।
1: अब्दुल मुजीम बोल रहा हूँ
0: जी। अब्दुल मुजीम साहब, आज आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: आज सुना दीजिए, मैं तो मिट्टी का खिलौना हूँ।
0: मैं तो मिट्टी का खिलौना हूँ, कोई हैप्पी सॉन्ग बताएं प्लीज।
1: हैप्पी सॉन्ग इतना गाने पे उतना मैं इंटरेस्ट रखता नहीं,
0: फिर भी मैं चाहूंगी।
1: कलाम हुआ
0: जी जी, वो मुझे पता है आपका टेस्ट, लेकिन आज चाहूंगी आज अपनी पसंद का कोई हैप्पी सॉन्ग प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करें, ठीक है?
1: आज सुना दीजिए वो नन्हे से फरिश्ते,
0: ठीक है? ये

जी हाँ, आप इस गाने को एंजॉय कर रहे हैं और लगातार करते जा रहे हैं, और कॉल्स अभी भी आ रही है, लेकिन अब मैं कॉल लूंगी नहीं क्योंकि वक्त मेरे पास में है नहीं। इसके बाद मैं लूंगी मुजीम साहब की डिमांड, फिर होगी मुस्तफ़ा जी की डिमांड, और जिनकी कॉल आज नहीं उठ पाई है उन सभी से माफ़ी, क्योंकि आज का दिन ऐसा ही जाता है, आप सभी को अच्छे से पता है। जाते जाते एक प्यारी सी बात है अनाउंस करके जाऊँगी, वो नेक्स्ट गाने के साथ में।

0: देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे कौन है। हेलो
1: हेलो
2: जी मैम।
0: जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं। जी कहाँ से सुनते हैं आप हमें?
2: जी मैम मैं दुखा ना हरी अम्बेकर से सुन रहे हैं।
0: जी क्या सुनेंगे सर, आज पहली दफा आपने कॉल लगाया है?
2: जी मैम हमने पहले कॉल लगाया है।
0: जी क्या सुनेंगे जल्दी बताएं।
2: रोज तुम्हें भेजा है खत में।
0: ओके थैंक यू सर, एंजॉय करिए 2 मिनट में।
2: जी प्लीज
0: कर दीजिए। जी बजा बजा किसी स्पेशल के लिए है?
2: जी मैम स्पेशल के लिए।
0: क्या नाम है उनका, नाम बता सकते हो तो बता दीजिए।
2: जी मैम हमारे बॉस जी सुनना चाहते हैं।
0: ओह माय गॉड, बॉस को आप फूल भेजते हैं खत में वो भी? जी बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करिए थोड़ी देर में। जी तो ये थे हमारे बीच में हमारे आज के नए वाले कॉलर। फिलहाल इनके गाने को ज़रूर ट्यून किया जाएगा, उससे पहले ये जो हमको आप सभी से कहना है वो कहना ये है कि आज है आप सभी के यानी के ज्ञानस्थली के जो कहीं ना कहीं जनदाता कहे जाएंगे डायरेक्टर सर का यानी दीपेंद्र सर का है आज बर्थडे। तो मैं चाहूँ कि आप अपनी दुआओं में कुछ अल्फाज उनके लिए भेजना चाहें तो भेज सकते हो। मेरी ओर से बस इतनी सी दुआ है उनके लिए कि सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सामना ना हो कभी तन्हाइयों से, हर अरमान हर ख्वाब आपका पूरा हो, यही दुआ है दिल की गहराइयों से। और सर के लिए, वैसे वो नन्हे तो नहीं है लेकिन ये गाना मुझे लगता है कि आज अगर नहीं प्ले किया तो फिर कब करेंगे। जी हाँ, हमारे अब्दुल मजीद साहब की डिमांड और सर के जन्मदिन के लिए खास ये गाना।

जी हाँ सर, नन्हे से तो नहीं है लेकिन बच्चों जैसा उनका मन है, बहुत ही प्यारे हैं। और उम्मीद है कि अगर आप अभी तक नहीं मिले तो बस हमारी बातों से समझ जाएं कि वो कैसे हैं। आप बिल्कुल से उनको इमेजिन कर सकते हैं, जितनी बड़ी शख्सियत हैं उतने ही छोटे बच्चे भी हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इट्स कुमार साहब, अब्दुल मुजीम जी, दीपांशी जी, मनी जी, आपने सभी ने बधाई के रूप में अपने जज्बातों को हम तक पहुँचाया। अभी बढ़ते हैं आज की डिमांड जो हमारे नए वाले कॉलर हैं उनके साहब जी के लिए गाना, और फिर लास्ट मान लेंगे हम मुस्तफा जी की, और इसी के साथ यहाँ से टाटा बाय बाय।

जी हाँ, और इसी के साथ अब लेते हैं आप सभी से विदा। मिलेंगे कब ये भी बता के ही जा रहे हैं भाई, मिलेंगे अब मंडे को, तब तक के लिए अलविदा। और आज की लास्ट डिमांड हम लेते हैं अपने प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे मुस्तफ़ा जी की। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
2: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
2: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
2: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब?
8: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
10: आप सुन रहे हैं एक सुपर हिट सॉन्ग्स वाला शो, ज्ञानस्थली बेस।
11: ज्ञानस्थली बेस।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे रेडियो 11.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है गोधूली का, यानी कि आपसे चर्चा करने का, और चर्चा में हर बार गोंडा की कोई ना कोई रिनोन्ड पर्सनैलिटी हमारे साथ में मौजूद होती है। तो आज भी हमने एक ऐसे गेस्ट को इन्वाइट किया है जिनको पूरा गोंडा लगभग जान चुका है, और ऑफकोर्स उनके काम की वजह से। तो आज चर्चा बहुत जरूरी मुद्दे पे होने वाली है, मुद्दा इतना जरूरी है अगर आप और हमको उसके बारे में चीजों की जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं जिंदगी में जो बहुत सारी समस्याएं आती है उसका हम खुद ही निराकरण कर पाएंगे। तो हम बता दें बिना किसी देरी के कि आज हमारे साथ में मौजूद है स्टूडियो में मिस्टर अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, पैनल लॉयर टेली लॉ DLSA गोंडा। सर, सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं अपने इस शो में जिसका नाम है गोधूली।
2: धन्यवाद,
1: थैंक यू सो मच। और मैंने पहले ही बोला है कि आपको लगभग गोंडा जान चुका है, क्योंकि आपका कार्य ऐसा है भाई, कचहरी आना जाना सभी का लगा होता है
2: जी,
1: और न्याय दिलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है
2: जी।
1: मैं सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूंगा कि जो लोग आपको नहीं जानते हैं, जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जन्म स्थान क्या है और आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक कहाँ हुई, अपने माता पिता के बारे में और सिबलिंग्स के बारे में।
2: सर्वप्रथम आपने मुझे आज अपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मूलतः मैं श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। श्रावस्ती जिले में इकौना तहसील में कस्बे में मेरा पैतृक आवास है, और मेरे पिताजी 1952 में रेलवे में ज्वाइन किए थे एज ए लिपिक क्लर्क के रूप में।
1: ओके।
2: और हमारी पैदाइश रेलवे आवास साहबगंज की है, मैं रेलवे आवास में पैदा हुआ हूँ, और मुझसे एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन भी रेलवे आवास में पैदा हुए हैं। शिक्षा दीक्षा मेरी प्राथमिक शिक्षा कस्तूरबा बालिका विद्यालय में हुई थी, हाई स्कूल मैंने गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज से पास किया, इंटरमीडिएट मैंने टॉमसन इंटर कॉलेज से पास किया, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय से मैंने पास किया, और इसके बाद विधि से संबंधित जो भी मेरी शिक्षा दीक्षा हुई वो लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई। मैंने LLB और PGDC लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। 95 में मेरा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन हुआ, और 97 से मैं रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ।
1: वाह, क्या बात है, आपने बेहद सरलता और सहजता से बता दिया पूरा अपना सफरनामा। थोड़ा सा वापस पीछे चलेंगे
2: जी।
1: आपने चूंकि बताया कि भाई आपकी जो पैदाइश हुई थी वो इकौना की है,
2: नहीं रेलवे कॉलोनी की है,
1: रेलवे कॉलोनी साहबगंज की
2: जी,
1: है जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बचपन में सभी के लिए कुछ ना कुछ उसका इंटरेस्ट एरिया होता है, कुछ उसकी हॉबीज होती है
2: जी,
1: तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हॉबीज रही थी आपकी।
2: देखिए सर, ऐसा है बचपन की हॉबीज जो होती हैं वो थोड़ा सा एज बढ़ने के बाद बदल जाती हैं।
1: बेशक
2: बचपन में खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट होता है
1: जी,
2: और हमारे रेलवे आवास के बगल में स्टेडियम था तो हम लोग क्रिकेट बहुत खेलने जाते थे, अक्सर आपस में एक टीम थी, तो हाई स्कूल तक तो हम लोग क्रिकेट के शौकीन थे, शौकीन आज भी हैं, और हम लोगों का एक टीम भी है, लेकिन इस समय हम लोग प्लेग्राउंड पे नहीं उतर पाते हैं, लायर्स क्रिकेट टीम चल रही है
1: जी।
2: कभी कभी हम लोग शौक पूरा करने के लिए इस उम्र में भी अभी प्लेग्राउंड पे जाते हैं।
1: क्या बात है, आपने कहा इस उम्र में भी जाते, मुझे लगता है युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है आप
2: जी जी जी।
1: तो यानी स्टेडियम का पूरा असर रहा आपके बचपन में,
2: पूरा पूरा पूरा एंजॉय किया मैंने और पूरा उसका आनंद लिया, और फिटनेस के लिए भी जो है सुबह 5 बजे हम लोग रेगुलर जाते थे, एक टीम थी
1: जी,
2: खेल कूद में अच्छा इंटरेस्ट था,
1: क्या बात है। तो यानी खेलकूद से आप जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इसका महत्व भी आपकी जिंदगी में बहुत है।
2: फिजिकल फिटनेस के लिए सर बहुत जरूरी है, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस दोनों दोनों के लिए खेलकूद बहुत जरूरी है, और इससे हम रिलैक्स होते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है।
1: मुझे भी लगता है कि जो गेम्स होते हैं, सही आपने कहा, एक तो आपको फिजिकली फिट रखता है, मेंटली भी आप बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं। और इस वक्त जहां हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग बनते जा रहे हैं, रिलैक्स होने की बहुत ज्यादा जरूरत है और एक परफेक्ट कह सकते हैं जरिया बन सकता है खेलकूद। आपने बताया कि पिताजी ने चूंकि रेलवे में जॉब किया हुआ है, और जाहिर सी बात है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो पिता करते हैं वही बेटा करता है, स्पेशली अगर हम भारतीय समाज की बात करें।
2: होता है।
1: लेकिन आप चूंकि एडवोकेट हैं, तो आप लॉयर बनने का आपने बचपन से ही सोचा था या क्या था?
2: नहीं सर, ऐसा नहीं है। आफ्टर इंटरमीडिएट हमने ये सोचा कि हमें एक वकील बनना चाहिए। समाज को देखते हुए जो परिस्थितियां थी, जो सामाजिक स्थिति थी, दशा थी, दिशा थी, हमको लगा कि हमें एक वकील बन करके लोगों के साथ न्याय करना है, लोगों को न्याय दिलाना है, इसलिए हम इस प्रोफेशन में आए।
1: आपने कहा कि सामाजिक दिशा और दशा को देखते हुए आपने इसको ऑप्ट किया।
2: जी।
1: अक्सर ऐसा होता है कि पिता बताते हैं कि तुम्हें करना क्या है।
2: जी।
1: या फैमिली में बाकी लोग बताते हैं, कभी पिताजी ने नहीं कहा कि आपको ये नहीं करना है बल्कि उनको जो लगता है वो करना है, ऐसा कभी कुछ आपके साथ में रहा क्या?
2: देखिए सर, ऐसा है कि पिताजी ने हमको इस स्तर पे छोड़ा कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करे, जिसमें आपकी अभिरुचि हो, उस प्रोफेशन में आप जाएं। उन्होंने कभी हमको बाउंड नहीं किया कि ये सब्जेक्ट लीजिए, इस तरफ जाइए। उन्होंने स्वतंत्रता दी हमको।
1: जी।
2: लेकिन एक चीज था कि उन्होंने संस्कार दिया कि आप इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में नहीं जाएंगे। एक गाइडलाइन थी, एक प्रोटोकॉल था, हमने उसको फॉलो किया।
1: और बेशक होना चाहिए गाइडलाइन
2: प्रोफेशन के लाइन में, जॉब के लाइन में। अगर हमारा इंटरेस्ट ना होता तो आज 27 साल से हम इस प्रोफेशन में ना रह पाते।
1: बिल्कुल सही बात है। इतना वक्त आप इतना वक्फा दे ही नहीं सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही बताया आपने। अब इसके साथ ही चूंकि हम ये भी जानना चाहेंगे, आपका आपने बोला भी, जस्ट कोट किया कि 27 से 28 साल का अनुभव है आपका वकालत में, तो ये आपने बता दिया कितने वर्षों का अनुभव रहा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि अनुभव रहा कैसा, इसके बारे में आप बताएं प्लीज।
2: देखिए सर, ऐसा है, शुरुआती दौर में जब एक नया बच्चा प्रोफेशन में आता है तो उसको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड नहीं हो पाती, आर्थिक समस्या रहती है,
1: बेशक
2: पेरेंट्स की कैपेसिटी होती है, वो एज ए लायर अपने बेटे को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी एक समस्या रहती है। हालांकि मेरे पेरेंट्स ने हमको बहुत कोऑपरेट किया। शुरुआत में 2-3 साल थोड़ी सी समस्या थी, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस जो शुरू हुई लखनऊ से शुरू, मैं पढ़ भी रहा था और वकालत सीख भी रहा था। जो लर्निंग पीरियड कही जाएगी कि किसी अच्छे वकील के साथ जुड़ करके आप पढ़ाई भी करें और सीखते भी रहें, तो उस पीरियड में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन हमारे सीनियर जो थे बहुत अच्छे थे। हाई कोर्ट में माननीय आरपी मिश्रा जी हैं,
1: जी
2: वो हमारे सीनियर थे और हमको हर तरह से वो कोऑपरेट करते थे, फाइलें स्टडी करने के लिए, फाइलें टाइपिंग करने के लिए, फाइलें टाइपिंग कराने के लिए, सारा काम हमसे लेते, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती,
1: क्योंकि वो आपका लर्निंग पीरियड था, कहीं ना कहीं लर्न कर रहे थे।
2: जी जी, हमको सीखने का अच्छा अवसर दिया उन्होंने और उससे हमने बहुत कुछ सीखा भी। शुरुआती दौर में थोड़ी सी दिक्कत आती है, सबके साथ आती है
1: जी।
2: तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं कि हम नर्वस हो जाए या टूट जाए या वकालत से पीछे चले जाए। हमको मोटिवेट किया हमारे सीनियर ने, हमारे पेरेंट्स ने हमको सपोर्ट किया कि आप जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में मन लगाएं, आगे बढ़ें। तो उनसे हमको जो प्रेरणा मिली उससे हम आगे बढ़ते चले।
1: कितना असर डालता है जब शुरुआती फेज में आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे होते हैं, और जाहिर सी बात है आप नए होते हैं तो ये तो तय होता है कि आप सही दिशा में एक बार में जा ही नहीं सकते हैं।
2: जी,
1: उस
2: जी।
1: दौरान आपका चीजों को लेके कंफ्यूजन का होना, एक बार को मोराल डाउन होना कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, उस दौरान जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है, या आपने कहा कि आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिला, आज जहां पे आप स्टैंड करते हैं, उस दौरान की जो उन्होंने आपके लिए हेल्प की या जो आपको सपोर्ट दिया, वो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप?
2: बहुत महत्वपूर्ण था। अगर उस समय एक शुरुआती दौर में उन्होंने हमको सपोर्ट न किया होता या हमको धनात्मक परिणाम के लिए आश्वस्त न किया होता, तो आज हम यहाँ न होते। हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए। नकारात्मक तरंगे आती हैं दिमाग में
1: जी,
2: लेकिन हमें उनको इग्नोर करना, हम हमेशा सकारात्मक सोचें, तभी हम अच्छा कर सकते
1: हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आज आपको 27 से 28 वर्ष का अनुभव हो गया है, लेकिन ये जो स्टेट है कि नकारात्मकता आना, ये शायद ताउम्र चलता रहता है।
2: नहीं, आती रहती है, लेकिन हमें सोचना नहीं है, इसके बारे में हमें ध्यान नहीं देना।
1: कहीं ना कहीं आप ट्रेंड हो जाते हैं
2: जी,
1: डील करते करते।
2: हमें हमेशा हमें अच्छी बातें सोचनी है, आगे की सोचनी है, सकारात्मक सोचना है। हार तो मानना ही नहीं है, वकालत के पेशे में अगर हमने हार मान लिया तो हम हार गए।
1: क्या बात है। तो जैसे अभी आपने बताया कि वकालत के पेशे में अगर आपने हार मान लिया तो हार गए,
2: हार गए।
1: इस तरह से और भी कुछ वैल्यूज होंगी इस काम को करने को लेकर के, यानी एडवोकेट बनने को लेकर के, प्लीज उसके बारे में बताइए।
2: देखिए सर, ऐसा है, ये कुछ चीजें ऐसी है जो प्रकृति की देन होती, बाई बर्थ मिलती है, और वो लेके जो आता है वो निश्चित तौर पे सफल होता। ये अपने आप में एक पैदा होती है। जैसे प्रोफेशन में एक चीज आती है, क्रॉस एग्जामिनेशन, जिरह
1: जी।
2: आप हमारे सामने इंटरव्यू ले रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा है हम उसका उत्तर दे रहे हैं। ऐसे प्रोफेशन में भी जिरह जो है वो एक ऐसी चीज है जो अपने आप में पैदा होती है, दिमाग की उपज है। वो बात आपके दिमाग में आ रही है उस समय कि नहीं आ रही है, जिरह समाप्त होने के बाद अगर वो बात आपके दिमाग में आ रही है तो उसका कोई मतलब,
1: उसका कोई मतलब नहीं रह गया। यानी पूरी तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास उस वक्त होना चाहिए। क्या बात है। अच्छा, मुझे तो लगता है कि जैसे किसी खास प्रोफेशन में आप जाते हैं तो उससे संबंधित पढ़ाई आप करते हैं
2: जी जी,
1: लेकिन एडवोकेट इतना वास्ट फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत सारे केसेस में बहुत तह तक जाना होता है, कितना स्टडी महत्वपूर्ण होती है एक एडवोकेट के लिए?
2: देखिए सर, अलग अलग फाइलों का अलग अलग अध्ययन होता है, और कुल मिला करके हम ये बताना चाहेंगे कि केसेस के हिसाब से स्टडी करनी चाहिए। और वकील का अपनी जिंदगी का आधा समय लाइब्रेरी में पढ़ने में ही निकल जाता, इसलिए इस बारे में यह कहना कि यह सफिशियंट होगा, जितना ही स्टडी हम करेंगे उतना ही कम है।
1: वाह, क्या
2: ज्ञान का क्षेत्र, न्याय का क्षेत्र बहुत विस्तृत
1: है। बहुत विस्तृत है, बिल्कुल सही बात बताया आपने कि जितना आप स्टडी करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नए मामले सामने आ जाते हैं, और कोई भी मामला कितना अंदर जाता है, कितना तह तक जाता है, इसका कुछ नहीं पता होता है। बहुत ही अच्छी बात हो गई। अब चूंकि वक्त हो गया एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, अभी तक हमने आपके बारे में जाना, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपके माता पिता के बारे में, और आपकी शिक्षा दीक्षा के साथ ही वकालत के अनुभव के बारे में। ब्रेक के बाद वापस से आएंगे, और हम आने के बाद बात करेंगे कि क्रिमिनल केस और सिविल केस में क्या अंतर होता है। सो सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: तुझे मेरे बारे में वो सब पता है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। You know you've been my best buddy since forever, right?

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने प्रोग्राम गोधुली में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और आज हमारे बीच गोंडा की रिनोन्ड पर्सनालिटी मिस्टर अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, पैनल लॉयर टेली लॉ DLSA गोंडा मौजूद है। सर, वापस से एक बार आपका वेलकम करते हैं।
5: धन्यवाद।
4: और आने के बाद चूंकि हम, जाहिर सी बात है, आप एडवोकेट हैं, तो आपका काम ही है वाद विवाद पे चर्चा करना, यानी केसेस को सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो हम यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे इस बार कि वाद कितने प्रकार के होते हैं।
5: देखिए, वाद मुकदमे से रिलेटेड होते हैं। वाद का मतलब मुकदमा
4: जी।
5: और वाद मुख्य रूप से आपराधिक और सिविल वाद होते हैं। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सेमी सिविल सेमी क्रिमिनल में आते हैं, जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम, ये सेमी सिविल सेमी क्रिमिनल में आते हैं। गुजारे का मुकदमा, मेंटेनेंस 125 CRPC, ये भी सेमी सिविल सेमी क्रिमिनल में आते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कुछ मामले सिविल वाद होते हैं और कुछ मामले आपराधिक वाद होते हैं, और कुछ मामले दोनों से मिले जुले, जिसमें आधा सिविल प्रोसीडिंग चलती है आधा क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है, वो समरी ट्रायल में आते
4: हैं। ओके, तो ये तो आपने बता दिया कि वाद कितने प्रकार के होते हैं। अब चूंकि हमने जैसे ही आपको इंट्रोड्यूस कराया, बताया कि आप पैनल लॉयर हैं टेली लॉ DLSA गोंडा में, तो सबसे पहले तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये टेली लॉ है क्या, इसके बारे में बताएं।
5: देखिए सर, टेली लॉ में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है
4: जी।
5: टेली लॉ, टेलीफोन के जरिए कानून की जानकारी। उत्तर प्रदेश में जून 2017 में माननीय योगी जी ने टेली लॉ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, शुभारंभ किया था। भारत के कई प्रांतों में टेली लॉ प्रोजेक्ट संचालित है। न्याय विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त दिशा निर्देश में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। टेली लॉ पोर्टल, टेली लॉ प्रोजेक्ट के माध्यम से हम ऐसे लोगों तक न्याय पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, समस्याएं सबके सामने होती
4: हैं।
5: जो साधन संपन्न है वो अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, जो साधन विहीन है, हाशिए पर बैठे हैं, जिनके पास कोई नहीं पहुंच पाता, ऐसे लोगों को घर बैठे मोबाइल फोन के जरिए हम न्याय दिलाने का काम करते हैं, जो टेली लॉ पोर्टल के माध्यम से संभव है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का एक माध्यम है जनसेवा केंद्र। किसी भी जनसेवा केंद्र पे आप जाएंगे और यदि आप वहां ये बात बताते हैं कि भाई हमको इस प्रकार की सहायता चाहिए, तो आपका मोबाइल नंबर इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड करेंगे और उसमें फिर सिस्टम में जाने पर आपको एक निश्चित टाइम मिलेगा। उस टाइम पर आपके पास सर्वर के माध्यम से एक कॉल आएगी। जिस एडवोकेट को आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको कॉल करेगा, आपसे बात करेगा, आपकी समस्याओं को नोट करेगा और उस पे अगर आवश्यकता हुई तो उस मामले में आपकी सहायता भी करेगा और सलाह तो देता ही देता है। कुल मिलाकर के इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ऐसे लोगों को कानूनी सहायता और सलाह दी जाती है जो न्याय से वंचित हैं या जिन्हें न्याय की जरूरत। हम घर बैठे कानूनी सलाह मुफ्त में देते हैं और जनसेवा केंद्र पे मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं लगता। ये है टेली लॉ प्रोजेक्ट।
4: ओके, तो आपने टेली लॉ प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि जो भी वंचित लोग हैं या कह सकते हैं जिनको जागरूकता नहीं है, उनके लिए कहीं ना कहीं
5: किसी भी प्रकार की वो हमसे जानकारी
4: आपसे चाहते हैं तो उनको घर बैठे मुहैया हो जाती है
5: जी।
4: ये तो बात आपने टेली लॉ प्रोजेक्ट के बारे में बताई। अब चूंकि आप भी एक लॉयर हैं इसमें, तो आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अगर मान लीजिए कोई मुकदमा आप तक आता है, कोई शिकायत आती है, उस पे आप कैसे कार्रवाई करते हैं?
5: देखिए सर, ऐसा है, इसमें किसी की समस्या हमारे नॉलेज में आती है, हम उसको नोट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समस्या ऐसी आती है जिसमें हमारे सहायता की जरूरत
4: जी,
5: तो हम उसके सारे फैक्ट को नोट करने के बाद हम अपने नालसा को, सालसा को ईमेल कर उसकी पूरी स्टोरी, उसकी पूरी प्रॉब्लम मेल, और वहां से संबंधित जिले को ट्रांसफर हो, SP को, DLSA को, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को, और वहां के माध्यम से उसे न्याय दिलाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम अपने जिले में तो खैर व्यक्तिगत रूप से भी मदद कर सकते हैं
4: जी,
5: लेकिन जो दूसरे जिले, हमारे पास ज्यादातर दूसरे जिले के केसेस आते हैं, पूरे यूपी के केसेस रजिस्टर्ड होते, तो ऐसे में हमको सालसा की हेल्प लेनी पड़ती है और सालसा के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हम उनकी सहायता कराते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक उनके प्रकरण को पहुंचा करके। जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कोई मामला पहुंचता है तो वहां जो सचिव महोदय बैठते हैं वो संबंधित जिलाधिकारी को या संबंधित विभाग को या संबंधित पुलिस अधीक्षक को इस बात की जानकारी देते हैं और वो उसका निराकरण करते हैं।
4: ओके, तो ये तो आपने बताया कि आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। चूंकि आपने नालसा का नाम लिया है तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि नालसा जो है वो जनता के हित में क्या भूमिका निभा रहा है।
5: देखिए सर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर की इकाई है
4: जी,
5: और इसी प्रकार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य स्तर की इकाई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो तहसील स्तर पे संचालित, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ये जिला स्तर पे संचालित। जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है ये दीवानी न्यायालय परिसर में सभी जिले में, सभी प्रांतों में, सभी प्रांतों के सभी जिले में संचालित है, और इसमें एक सचिव महोदय बैठते हैं जो न्यायाधीश रैंक के होते हैं, एचजीएस रैंक के होते हैं
4: जी,
5: और इसके अध्यक्ष स्वयं जनपद न्यायाधीश होते। कोई भी मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निस्तारित किया जाए। नालसा की जो भी प्लानिंग है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए तहसील विधिक सेवा समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पहुंचाई जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य क्या है? विधिक सहायता, विधिक सलाह और जागरूकता। हम जागरूकता के माध्यम से लोगों को तैयार करते हैं कि आपको ये चीज जानकारी में होनी चाहिए, जब हम कोई चीज जानते हैं तो हम अपने को बचा सकते। तो जो न्याय की मंशा है वो ये है कि जन जागरूकता से हम बहुत सारी चीजें रोक सकते हैं, बहुत सारा सुधार कर सकते हैं। तो जो नालसा की प्लानिंग है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से के माध्यम से लोगों को सहायता देना, सहायता, सलाह और जागरूकता।
4: सहायता, सलाह और जागरूकता। लेकिन आपने बताया कि अगर जागरूक होंगे लोग तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा।
5: जी जी,
4: बेशक, ये बात तो बिल्कुल सही आपने कहा। अब नालसा का आपने नाम लिया, उसके बारे में बताया, तो इसका कोई ना कोई हेल्पलाइन नंबर होगा, इसका हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया।
5: नालसा का हेल्पलाइन नंबर सर अभी रिसेंटली नवंबर में लॉन्च किया गया है 15100, 15100 ये नालसा का हेल्पलाइन नंबर है, और इस पे आप वर्किंग डेज में सोमवार से लेके शनिवार तक
4: जी,
5: फ्राइडे तक तो आप 10 से 5
4: ओके
5: कॉल कर सकते हैं,
4: सुबह 10 से शाम 5 जी,
5: और शनिवार को 10 से 2 बजे तक कॉल कर सकते
4: हैं, हाफ टाइम यानी,
5: हाँ 2 बजे तक। आप किसी भी जिले से हैं, किसी भी प्रांत से हैं, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो एक सिस्टम से आप जुड़ जाएंगे, फिर सिस्टम के ऑपरेटिंग प्वाइंट में आप जाते रहेंगे, 3 से 4 मिनट में आपको

0: 5 बजे तक और शनिवार 10 से 2 बजे तक जी। इस तरह से आप कॉल कर सकते हैं, आपको जो सलाह रिक्वायर्ड होगी वो आपको दी जाएगी और जहां आवश्यकता हुई वहां पे आप सहायता भी आपको मुहैया कराई जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है और नालसा का ये प्रोजेक्ट जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जनहित में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसी के साथ चूंकि एक बहुत बड़ी चीज है, लोगों को अक्सर होता है कि FIR, कई सारे सीरियल्स बनते हैं इस पे, लोग मजाक में बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारे पे FIR करा देंगे। तो हमारे लेमैन जो लोग हैं या हमारे जो श्रोतागण हैं जिनको नहीं पता इसके बारे में, तो प्लीज एक बेसिक आइडिया बता दी कि FIR है क्या।
1: देखिए सर, FIR जो है वो किसी भी आपराधिक मामले में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को कहते हैं। कोई घटना होती है तो जो हम सूचना देते हैं हायर अथॉरिटी ऑफ पुलिस को या थाने में, जो सूचना हम लिखित या मौखिक देते हैं उसको हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में जानते हैं। अब आपने चूंकि टॉपिक ऐसा रखा है इसलिए कुछ बात हमको बतानी पड़ेगी।
0: जी जी।
1: अक्सर यह होता है कि हम अपनी बात नहीं कह पाते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात नहीं कह पाते
0: हैं। बिल्कुल,
1: वो दूसरे की मदद लेते। मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ
0: जी।
1: लोग FIR लिखने के लिए दूसरे की सहायता ले, तो ऐसी स्थिति में यदि हमारी बात को कोई दूसरा लिख रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज आएगा,
0: बेशक आएगा।
1: तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो हमारे कंप्लेंट में, हमारी तहरीर में लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है। ये आपराधिक मामले में FIR बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, यहीं से सारी शुरुआत होती है। तो FIR लिखने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो तहरीर हम देते हैं उसी को FIR कहते हैं, पुलिस दर्ज करती है, फिर एक क्राइम नंबर पड़ता है। तो मेरा सबमिशन ये है कि FIR लिखते समय हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो घटना है उसी बात का समावेश किया जाए और उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल प्लांट न की।
0: अच्छा।
1: अगर न्याय मिलना है, न्याय पाना है, तो हम एक्स्ट्रा मटेरियल न, क्योंकि जब कभी भी FIR में हम एक्स्ट्रा मटेरियल प्लांट कर देते हैं इन्हीं कारणों से तो हम उसको कोर्ट में साबित नहीं,
0: बल्कि
1: हम न्याय से वंचित रहे।
0: बेशक, अक्सर ऐसा देखा गया कि लोग वजन देने के लिए कुछ और चीजों को ऐड कर देते हैं लेकिन उसको साबित नहीं कर पाते,
1: इसलिए न्याय से वंचित रह जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो आपके कहने का आशय यह है कि पॉइंट टू पॉइंट उसमें लिखा हो,
1: FIR में पॉइंट टू पॉइंट बातें, जो घटना हुई है उसका घटना का समय, स्थान और किस व्यक्ति ने घटना कारित की है, ये सफिशियंट है।
0: ओके, इतनी चीजें होनी चाहिए।
1: घटना का समय, स्थान और डेट और किसने घटना कारित
0: की,
1: किन कारणों से घटना हुई है, ये एक इन्फॉर्मेशन है।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इन्फॉर्मेशन सफिशियंट देना है कि जिससे पुलिस को तहकीकात करने में कोई
0: असुविधा ना हो। बिल्कुल, बेशक। अच्छा, ये FIR की बात हुई। अब FIR की बात से एक और बात सामने आ रही है कि भाई अदालत में कई तरह के मुकदमे चलते रहते हैं, लेकिन चूंकि आप कोर्ट में मौजूद रहते हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अमूमन किस तरह के मुकदमे ज्यादातर देखने को मिलते हैं।
1: देखिए सर, न्यायालय है, हम जिस प्रांगण में बैठते हैं वहाँ की बात करें तो लगभग सारे प्रकार के मामले आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में एक चीज ये देखने को मिला हमें कि पारिवारिक मामलों की संख्या कुछ अधिक है अन्य मामलों की तुलना में।
0: जी,
1: पारिवारिक मामलों की संख्या कुछ अधिक है और उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण बहुत अगर एनालिसिस किया जाए तो मैं समझता हूँ कि अशिक्षा और बेरोजगारी।
0: अशिक्षा और बेरोजगारी बताते हैं, मतलब जो ज्यादातर रीजन सामने आते
1: जो ज्यादातर रीजन सामने आ रहा है अशिक्षा और।
0: तो फिर उपाय क्या है इसका?
1: उपाय जागरूक। देखिए, हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज का दिमाग रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कंप्रोमाइज से सॉल्व हो, खास करके मैट्रिमोनियल केसेस में तो लास्ट ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन कंप्रोमाइज
0: होता है।
1: हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो कितने दिन तक लड़ते रहे, लड़ने में ही हमारी सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो जो क्रीम टाइम हमारा लाइफ का है, जो हमारे बच्चे हैं वो सफर करेंगे। तो मेरा सबमिशन यही है कि मैट्रिमोनियल केसेस में कंप्रोमाइज का माइंड हमको लेके चलना चाहिए और अवसर मिलते ही कंप्रोमाइज कर ले।
0: ओके, यानी एक कॉम्प्रोमाइज का एक अप्रोच आपका होना चाहिए।
1: मुकदमा लड़ने का अप्रोच नहीं होना चाहिए कि हम केस लड़ने आए हैं, सजा कराएंगे। मैट्रिमोनियल केसेस में आपस में कंप्रोमाइज का मूड लेके तब FIR या स्टेज पे आना चाहिए।
0: एक वकील हो के आप ऐसा कह रहे हैं कि मुकदमा लड़ने का मूड नहीं होना चाहिए।
1: देखिए, मैट्रिमोनियल केसेस में हमें मुकदमा लड़ने का मूड नहीं बनाना चाहिए।
0: बेशक।
1: और कोशिश ये होनी चाहिए कि हम FIR ना लॉन्च कराएं। बहुत ऑप्शन है। देखिए सर, ऐसा है मैट्रिमोनियल केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि हम आवेश में आके, दूसरे के बहकावे में आके अपने ही परिवार के खिलाफ FIR दर्ज
0: कर दे।

0: देते हैं
1: और FIR दर्ज कराने में बहुत सारी बातें हम उसमें जोड़ देते, तो एक बदले की भावना पैदा होती है कि जो जुर्म हमने किया नहीं उसमें आपने हमारे ऊपर एलिगेशन लगा, तो वो रिश्ते जुड़ने के बजाय टूट जाते हैं। इसके लिए हमारे DLSA में एक व्यवस्था और भी है, प्री लिटिगेशन।
0: जी,
1: हम एक साधारण सी एप्लीकेशन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महोदय को संबोधित करते हुए दे सकते हैं और उस पे दोनों पक्षों को बुला करके परिवार न्यायालय के न्यायाधीश महोदय के द्वारा समझाया जाता है, आपस में सुलह समझौता और अधिकांश मामले सफल। तो हम कंप्रोमाइज का माइंड बना के चले, क्योंकि झगड़ा हमारा किससे है इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरे के बहकावे में आके अपनों से न लड़े।
0: बिल्कुल पॉइंट की बात कही आपने कि झगड़ा हमारा किससे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल मुझे बस यही जानना था, इसलिए मैंने उस सवाल को उठाया था आपसे। बड़ा ही दिलचस्प है और थोड़ा सा एक बात थोड़ा सा हो सकता अलग हो लेकिन मुझे लगता है जुड़ी हुई है। जो आपने कहा कि मैट्रिमोनियल केसेस बहुत ज्यादा आते हैं,
1: तुलनात्मक दृष्टिकोण से कुछ ज्यादा
0: आते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये बात भी प्रभाव डालती है कि जो फैमिली लोगों की, जैसे होता है ना कि भाई किसी की माँ बाप होते हैं तो अपने अकॉर्डिंग शादी करा देते हैं किसी फैमिली में और शायद बच्चों की रजामंदी को पता नहीं करते हैं, क्या इसका भी कुछ इम्पैक्ट होता है कि बाद में लोगों के कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना नहीं डेवलप हो पाता है, क्या ये भी कोई एक रीजन बनता है?
1: देखिए सर, इसमें बहुत सारे रीजन आते, अगर आप गहराई में जाएंगे तो बहुत सारे रीजन है, हर केस का अलग अलग रीजन होता है। और जो हमारा तजुर्बा है, मैं दो चीज कहना चाहूंगा
0: जी।
1: हम 1500 रुपए गुजारे के लिए पूरे दिन बैठे रहते हैं परिसर और पूरा दिन मेरा लॉस होता, शाम को हम लेके वहां से क्या आते हैं? इस पर विचार करना चाहिए। हम आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, हम गुजारे का मुकदमा लड़ने के लिए कचहरी करते हैं, क्योंकि जिसको गुजारा देना है उसकी हैसियत क्या है
0: ये देखना बहुत जरूरी
1: है। ये देखना बहुत,
0: बेशक बिल्कुल।
1: अगर उसका परमानेंट जॉब नहीं है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, उसके पास अस्थाई कुछ नहीं है, तो हम उससे गुजारे का मुकदमा अगर लड़ते हैं तो हमको मिलेगा क्या? इसलिए उसकी कैपेसिटी, उसकी हैसियत को देख करके तब हम केस, और लड़ने की जरूरत काहे पड़े, हम तो कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं।
0: पहले ही आपने कॉम्प्रोमाइज की बात कर दी, तो आपने कॉम्प्रोमाइज की बात की है तो मैं यही चाहूंगा कि मेडिएशन सेंटर के बारे में आप बताएं कि इसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है।
1: देखिए सर, मीडिएशन सेंटर जो है मध्यस्थता केंद्र के रूप में जाना जाता है
0: जी।
1: और वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में ही संचालित है
0: जी।
1: और हमारे गोंडा जिले में 5 मीडिएटर वर्क कर रहे हैं और कुछ जज मीडिएटर भी वर्क कर रहे हैं। मध्यस्थता केंद्र में परिवार न्यायालय से पत्रावली अंतरित की जाती है सुलह समझौते के लिए। 498 से रिलेटेड जो FIR आते हैं जिसमें चार्जशीट आती है, तो जमानत के समय भी उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए एक अवसर दिया जाता है, पत्रावली अंतरित की जाती है सुलह समझौते के लिए। आपस में सुलह समझौता हो जाता है तो बेहतर रहता है। मध्यस्थता केंद्र की भूमिका दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौते कराने की है पारिवारिक वाद के मामले में, और ये बेहतर परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, क्योंकि जो मामले सुलह समझौते से निस्तारित हो जाते हैं उसमें दोनों पक्षों की जीत होती, ना कोई पक्ष हारता है और ना कोई पक्ष जीतता।
0: क्या बात है, मतलब एक कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं कि अगर इस तरह से मामले सुलझ जाते हैं तो दोनों पक्षों की जीत होती है, जबकि वाद विवाद में तो एक पक्ष जीतता है एक पक्ष हारता है।
1: सुलह समझौते के आधार पर जब कोई मामला निस्तारित होता है
0: तो दोनों जीत,
1: तो इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है।
0: बहुत ही खूबसूरत सी बात आपने कही और सच सच यही है, परिवार को बचा ले जाना, अपनों को बचा ले जाना, ये बहुत खूबसूरती की बात आपने कह दी। बिल्कुल, और इसी के साथ चूंकि हमारी आपकी बातचीत चलती जा रही है और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है जो हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहद काम आती है और आने वाली है, लेकिन इसी के साथ चूंकि एक म्यूजिकल ब्रेक का भी वक्त हो गया है तो ब्रेक के उस पार आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आंकड़े बताते हैं कोर्ट में बहुत सारे मामले हैं जो लंबित हैं, उसको लेकर के किस तरह से फास्ट ट्रैक और लोक अदालत का क्या रवैया है, कितना ये हेल्पफुल है लोगों के लिए, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के उस पार। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा, शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: डिलीशियस
1: है ना, लेट्स डाइन।

0: लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
0: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, और आपका पसंदीदा शो यानी टॉक शो चल रहा है गोधली, जिसमें आज हमारे साथ में पर्सनालिटी के रूप में मौजूद है मिस्टर अविनाश चंद्र श्रीवास्तव सर, जो कि पैनल लॉयर हैं टेली लॉ DLSA गुंडा के। सर, जाने से पहले अभी हमने कहा था कि आपसे हम पूछेंगे कि भाई ये जो मामले इतने सारे लंबित होते हैं कोर्ट में, उसको लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट का और लोक अदालत का क्या काम है?
3: देखिए सर, लोक अदालत अभी रिसेंटली था और लोक अदालत में बहुत सारे मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराए गए हैं
2: जी।
3: लोक अदालत का अपना एक जो है सिस्टम है, बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं न्यायालय में जो लंबित हैं, उन्हें लोक अदालत के स्तर से नहीं निपटाया जा सकता। जहाँ तक संभव है लोगों की इच्छा पर निर्भर करता, फोर्स नहीं किसी को किया जा सकता। अधिकतर मामले निपटाए गए हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट की ड्यूटी ये है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी मामले निपटाए जाएं, और उसके लिए हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्टें गठित हैं। तारीखें जल्दी लगती हैं, कार्रवाई जल्दी होती है, न्याय देने का पूरा प्रयास रहता है फास्ट ट्रैक कोर्ट का
2: जी। तो आपने लोक अदालत और फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में बताया, इसके बारे में अब हम चूंकि ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि भाई एक आम इंसान को कुछ लॉ की जानकारी होनी ही चाहिए ताकि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सके, क्या मानना है इसके बारे में आपका?
3: देखिए सर, ऐसा है, हम भारत के नागरिक हैं तो हम आदर्श नागरिक बने, ये हमारी ड्यूटी है कि हम संविधान को और अपने भारत के कानून को बहुत अधिक गहराई से न जाने तो थोड़ा बहुत जाने, जिससे हम ऐसी कोई गलती स्वयं न करें कि जिसके कारण हमें कचहरी या अस्पताल जाना पड़े। छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि अगर हम बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे
2: जी,
3: बाइक चला रहे, तो हमें दोनों जगह जाना पड़ सकता है, इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए।
2: एक्सीडेंट हुआ तो फिर सीधे
3: दोनों जगह जाना
2: और मुकदमा उसमें तो हो गई।
3: इसलिए हम कोशिश ये करें कि हम स्वयं ऐसी कोई गलती न करें, तो जब हम जानकार हैं, होशियार हैं, तो हम गलती नहीं करेंगे।
2: बेशक, और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो जानकारी का अभाव होता है, क्राइम रेट भी इसीलिए बढ़ा है क्योंकि करने वाले को ये पता भी नहीं होता है कि ये भी कोई क्राइम है ना, बहुत छोटी छोटी सी बात है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने फास्ट ट्रैक की बात की थी, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में देखा गया था कि महिलाओं से संबंधित जो मुकदमे होते हैं उसको लिया जाता है और तेजी से उसका निस्तारण किया जाता है, तो महिलाओं के लिए कुछ विशेष कानून भी हैं, उनके बारे में आप बताएं।
3: देखिए सर, महिलाओं के लिए कानून जो बनाए गए हैं उसमें बहुत सारे कानून हैं
2: जी।
3: रिसेंटली पॉश एक्ट की बात करते हैं,
2: पॉश,
3: कार्य स्थल पर यदि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ किया जाता है या अभद्रता की जाती है तो उसमें पॉश एक्ट लागू होता है। बाकी घर में घरेलू हिंसा का प्राविधान है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको आप कह सकते हैं, 498 क्रुएल्टी पति के खिलाफ, ससुराल वालों के खिलाफ, इस प्रकार के मामले हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट में लंबित हैं। कुछ गंभीर प्रकार के मामले जो हैं वो सीनियर कोर्टों पे हैं, और जो ये जैसे घरेलू हिंसा से संबंधित है या DP एक्ट से संबंधित है, 498 से रिलेटेड है, ये जूनियर कोर्टों पे लंबित हैं और त्वरित न्याय की कोशिश की जाती है
2: जी। तो ये आपने बताया कि पॉश जो एक कानून है वो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे बनाया गया है। अब चूंकि जुलाई आने वाला है और हम सभी को ये पता है कि नई न्याय प्रणाली यानी भारतीय न्याय संहिता IPC की जगह लागू हो रही है, तो इस पे मैं आपसे आपका विचार जानना चाहता हूँ कि आपका क्या विचार है इस पे?
3: देखिए सर, सर्वप्रथम तो नए कानून का हम स्वागत करते हैं और ये आवश्यक था क्योंकि पिछला कानून जो था काफी पुराना था, अंग्रेजों के पीरियड का था, और ये जो नया कानून लाया जा रहा है ये न्याय पर आधारित है, सजा पर आधारित नहीं है, और इससे हमें काफी सुविधा होगी, न्याय प्रणाली में काफी सुविधा आएगी, काफी अच्छा परफॉर्मेंस इसका आएगा, तो इसका हम स्वागत करते हैं। और भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें संशोधन किया गया है।

0: भारतीय दंड संहिता की जगह पर भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही है और दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम संचालित किया गया है। और कुल मिलाकर के ये परिवर्तन आवश्यक था, काफी पुराना था, परिवर्तन होना चाहिए और आगे चल करके इसका बेनिफिट।
1: बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है।
0: जी जी,
1: और सच भी है कि जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है हमको बहुत सारे चेंजेस करने की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आपने बताया कि अंग्रेजों के जमाने से ये कानून चलते चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज के बदलते समय में
0: परिवर्तन
1: की आवश्यकता थी, जो कि हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। इसी कड़ी में हम आपसे आगे भी कुछ बातों को जानना चाहेंगे और जानना स्पेशली हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आपने बताया कि 27 से 28 वर्षों का अनुभव भी है, बहुत सारी बातों को भी हमने आपसे किया, तो जाहिर सी बात है इतने अनुभव के दौरान आपने कुछ लूप होल्स भी देखे होंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आपके मुताबिक न्यायपालिका में किस तरह के सुधार होने चाहिए।
0: देखिए सर, ऐसा है, न्याय सरल और सुलभ हो।
1: जी,
0: कुछ चीजें ऐसी हैं संसाधन के अभाव के कारण संभव नहीं हो पाता,
1: रिसोर्सेज नहीं होते,
0: रिसोर्सेज जैसे स्टाफ की किल्लत, कर्मचारियों की समस्या, न्यायालयों की समस्या है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से कर्मचारियों की समस्या प्रभावित करती है। जिस मामले में, जिस प्रकार जितने मामले न्यायालय में आते हैं उस आधार पर उतनी फाइलों के रख रखाव के लिए हमारे पास कर्मचारियों, तो स्टाफ की बढ़ोतरी की जानी चाहिए और न्यायालयों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। एक अधिवक्ता होने के नाते जो समस्या मैं फेस करता हूँ, मेरी राय में न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाए और कर्मचारियों की संख्या में विस्तार किया जाए, तो हमें त्वरित न्याय, सरल न्याय, सुलभ न्याय में।
1: क्या बात है, चूंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि किस तरह के सुधार की आवश्यकता है। चूंकि आप एक एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, तो आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज की दिक्कत है अगर उस पे काम किया जाए तो सरल और सुलभ न्याय आपको मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त आपको ऑन एयर सुन रहे हैं और वो भी लॉयर बनना चाहते हैं, यानी आज जहां पे आप हैं वो वहां आना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए सर, विद्यार्थी जीवन जो है वो एक प्रकार का संन्यास होता है, तपस्या का समय होता है। और विद्यार्थी जीवन में अध्ययन के दौरान जिसने तपस्या किया तो तपस्या का प्रतिफल जरूर मिले, लगन हो, निष्ठा हो और लक्ष्य का निर्धारण हो कि हमें ये कुर्सी हासिल करनी, तो वो कुर्सी आपको मिले, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, सिलेबस पे आपका कमांड हो, टाइम टेबल बना के आप पढ़िए। मैं इस रेडियो ज्ञानस्थली के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी कंपटीशन में, किसी भी प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे की कुर्सी हमेशा खाली रहती है। आपके अंदर लगन है, जज्बा है, तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं, प्रयास आपका सार्थक होना चाहिए।
1: बेशक, आपने कुछ ऐसे पिलर्स का नाम लिया जिनको अगर अपनाया जाए तो मुझे लगता है यही नहीं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कॉमन तौर पे सभी को समेटने की कोशिश की है कि किसी भी लक्ष्य की बात हो, सिर्फ लॉयर ही बनना नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं और ये सब चीजें अगर आपके पास हैं, यानी आपने कहा लगन होनी चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए और लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए, तो फिर आपसे कोई भी लक्ष्य दूर नहीं, और स्पेशली जो आपने कहा कि सबसे आगे की कुर्सी आपके लिए ही खाली है। बेशक, अब चूंकि हम अंतिम दौर पर हैं इस टॉक शो के, जाने से पहले एक और जो सवाल है वो ये है आपसे कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे या आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे एक एडवोकेट होने के नाते?
0: देखिए सर, अधिवक्ता होने के नाते आम जनमानस से यही कहना चाहूंगा कि हम कानून का पालन करें, कानून से बड़ा कोई नहीं है, और कानून की जानकारी रखें। हर घर में कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो होनी चाहिए, भाई हम रामचरितमानस रखते हैं, गीता रखते हैं, कुरान रखते हैं, बाइबिल रखते हैं, तो हमें भारतीय संविधान भी रखना चाहिए, वो भी हमारी एक पूज्य पुस्तक।
1: क्या बात है,
0: और उसकी जानकारी, यही हम कहना चाहते हैं।
1: वाह, इतना शॉर्ट एंड क्रिस्प आपने कहा कि भाई जिस तरह से धार्मिक किताबें होती हैं, कहानियों की होती हैं, बच्चों के स्कूल की सिलेबस की किताबें होती हैं, उसी तरह हमारे भारतीय संविधान की भी किताबें होनी चाहिए। और मुझे भी लगता है कि बड़ाई करने से ज्यादा अच्छा है कि चीजों को जाना जाए, यानी खुद को सिर्फ महान बताया ना जाए बल्कि महान बनने की तरफ एक कदम भी बढ़ाया जाए। और आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि एक भारतीय संविधान की किताब हर घर में होनी चाहिए और एक बेसिक जानकारी तो हर शख्स को होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है और हम आप किस बात से बड़े ही इत्तेफाक रखते हैं। अब चूंकि इसी टॉक शो में

0: एकदम अंतिम प्रश्न है जो कि मैं आपसे पूछने वाला हूँ। आप बैठे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के स्टूडियो में, जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला एफएम है। आप देखते हैं कि बहुत सारा के प्रोग्राम्स यहाँ से जाते हैं, ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, टॉक शो होते ही रहते हैं, जिसमें अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं। तो आपको क्या लगता है, इन प्रोग्राम्स के जरिए जो सुनने वाले हैं यानी जो श्रोतागण हैं, स्पेशली अगर हम गोंडा की बात करें, तो आने वाले समय में क्या बदलाव लेकर आ रहा होगा रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम?
1: देखिए सर, सर्वप्रथम फिर मैं एक बार आपसे इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने मुझे अपने रेडियो स्टेशन में बुलाया। रेडियो स्टेशन ज्ञानस्थली ये मंडल का पहला रेडियो स्टेशन है, और जिस समय इसका उद्घाटन समारोह था, बहुत खुशी हुई यह जानकर कि अपने गोंडा जिले की शान और गोंडा जिले की धड़कन, जिसको आप कहते हैं, मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। तो हम भी बहुत खुशी हुई थी कि हमारे जिले में ये पहला रेडियो स्टेशन जो है संचालित हो रहा है, और कोशिश करता हूँ कि मैं इसके कुछ कार्यक्रम जरूर सुनूं। और शाम को 5 से 6 का समय मैंने निर्धारित किया है, चाहे रास्ते में रहे चाहे कहीं भी रहे, मैं 15-20 मिनट आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। और आपके सारे प्रोग्राम बहुत ज्ञानवर्धक होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और ऐसे ही आप वर्क करते रहें, सफलता आपको मिलेगी।
0: थैंक यू सो मच। और हम हमेशा से कहते आए हैं कि आप सभी की हमको बस ब्लेसिंग्स चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, जो कि बखूबी मिलता रहता है। जितना प्यार हमने सोचा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आप लोगों के जरिए हमको मिलता रहता है। और आज चूंकि हम बातचीत कर रहे थे हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, जो कि पैनल लॉयर हैं एली लॉ DLSA गोंडा के, बहुत सारी चर्चा हुई। हमने सबसे पहले आपके बारे में जाना, FIR के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, महिलाओं से जुड़े हुए कुछ विशेष कानूनों पर भी हमने बात की, और जुलाई से नए जो न्याय प्रणाली आ रही है उसको लेकर भी आपसे हमने जानने की कोशिश की। इसके अलावा DLSA के बारे में आपने बताया और कितने तरह के वाद होते हैं, इन जैसे अहम मुद्दों पे हमने आपसे चर्चा की। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो ये टॉक शो है ये बड़ा ही मीनिंगफुल रहा। जो भी इस वक्त हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, उनको बहुत सारी एक बेसिक नॉलेज जरूर मिल गई होगी, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वो खुद भी अब कोशिश करने वाले हैं भारतीय संविधान को जानने के बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि इतने ज्यादा बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला और हमको समय दिया, कहीं ना कहीं जनहित के लिए समय था, तो आपका आना मुझे लगता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका अपने श्रोताओं की तरफ से भी अदा करना चाहूंगा।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। कल वापस से मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे, उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे और बहुत सारी जानकारी उनसे भी लेंगे। आप सुनते रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, जो कि है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी।

देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए

0: आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटी

0: कॉपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहले।

बचपन तो चंद दिनों का ठाट, और पढ़ लिख कर सब चल दोगे तुम अपनी अपनी बाट। फिर कोई तुम में होगा अफसर, कोई गवर्नर लाट, तब मैं आऊंगा।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
2: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास?
1: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास?
1: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
1: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।

0: जी हाँ, आपके पास वो है जो किसी के पास नहीं है। तो भाई जी एकदम कैसे हैं आप सब? हमने कहा आज हमारे और हमारे मरीजों के बीच कोई नहीं होगा, आज सिर्फ हमारे मरीज होंगे और हम होंगे। नो नीड ऑफ कंपाउंडर। हमने कहा सभी कंपाउंडरों को तुम सभी छुट्टी पर जाओ, आज हम और हमारे मरीज। ये कंपाउंडर लोग बीच में कमीशन खाने लगते हैं भाई, बहुत दिक्कत है। किसी का कह दिया कि भाई हमारा 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, नंबर पहले लगा दो। कई सारी इन लोग की कंप्लेंट आ रही है, तो हमने इस सैटरडे के लिए इन सभी को कर दिया बर्खास्त। हमने कहा ऐसा कीजिए कि हमारे सुनने में बड़ी दिक्कत आई है कि आप लोग जो है वो घूस लेकर के नंबर मरीजों का पहले या बाद में लगा रहे हैं, और हम सीधे निपटेंगे। तो आज हम सीधे निपटने के लिए आ चुके हैं। आपके पास कोई दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी, कष्ट, मुसीबत, गिला, शिकवा, शिकायत, तमन्ना, इच्छा, ख्वाहिश, झटका, कुछ भी हो तो तत्काल आप फोन कीजिए। आपका दूरभाष क्रमांक वही है 6393-31-64-29। हिंदी में यही होता है, अंग्रेजी में 6393-31-64-29। तो भाई अब हम उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के साथ, और धर्मेंद्र मोहन जी हमको दिखाई पड़ रहे हैं। सुशील यादव जी भैया बहुत सुशील हैं तो कहिए अगर सुशील जी के नाम के बाद ए लगा दिया जाए तो जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हम क्यों लगाएं ए, हम नहीं लगाएंगे, हम कैसे लगा सकते हैं? तो भाई इंसान का जिंदा रहना उतना ज़रूरी नहीं है जितना इंसान के अंदर इंसानियत का जिंदा होना ज़रूरी है। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही आपने सुशील जी। धर्मेंद्र मोहन जी हैं और भाई हेलो दिल से। जी हाँ, और ये कोई वो कौन है, ये कौन है भाई, ये मनु सर जी को नहीं जानते धर्मेंद्र मोहन जी, वो तो रात में सुना है कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं, बहुत शायरी वायरी बहुत मारते हैं, सुना है ऐसा। दीपांशी तिवारी जी हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? जी हाँ जी, बहुत बढ़िया है। तो हमें हंसने की आदत है, ये आदत बहुत ख़राब है। आप दीपांशी जी, आप हंसी मत, बिल्कुल मत हंसी। कमल नयन जी हैं, डॉक्टर नमस्कार जी। हाँ दीपांशी जी, हंसने की आदत आपको बड़ी किसी दिन बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। अब आप पूछिए कैसे। हम अपने क्लास में पढ़ रहे थे, हमारे अध्यापक महोदय कुछ पढ़ा रहे थे और हम मुस्कुरा रहे थे। अब उन्होंने हमको मुस्कुराते हुए देखा तो जैसे जाए पड़ा कि हमने कौन सा गुनाह कर डाला एकदम से। अच्छा, वो मैथ के टीचर थे, कनौजिया मास्टर साहब थे, और उनकी भी मुस्कुराहट बहुत कातिल थी। तब से हम मुस्कुराने में थोड़ा कम किया तो मुस्कुराहट उनकी बड़ी कातिल थी। अगर वो किसी बच्चे की ओर देखकर मुस्कुराएं तो ये समझ जाइए कि उस बच्चे का उस दिन कल्याण हो गया। अच्छा, हमारे जो विद्यालय में हम पढ़ते थे उसमें कॉन्वेंट स्कूल नहीं था। हाँ बता रहे थे बंसी जी, क्यों हंसने वाला, वही वाली आपकी ही समस्या सॉल्व कर रहे हैं। तुम्हारे विद्यालय का जो स्ट्रक्चर था, जो भूगोल था, वो इस प्रकार से था कि चारों ओर जो है वो कमरे बने हुए थे और बीच में एक नीम का पेड़ था। और कन्हौजिया मास्टर साहब को जिसको मारना होता था उसको क्लास से निकालते थे और नीम के पेड़ के नीचे ले जा करके मारते थे, दे धनाधन। और उसमें बेत वो चलती थी। आजकल की तरह चीज़ें थी नहीं कि सर जी ने कैसे मार दिया, उस समय तो डंडे से। अगर घर पे बताओ तो घर वाले भी कहते थे बहुत बढ़िया हुआ मार खाए। तो हम वो पढ़ा रहे थे मैं तो हम मुस्कुरा दिए। अच्छा, वो हमको जो हम उनकी निगाह मेरे ऊपर पड़ गई तो उन्होंने फैसला कर लिया होगा कि बताएंगे। अगले दिन वो पहुंचे, हम नहीं मुस्कुराए, वो हमको देखे और मुस्कुराए। उन्होंने हमको कहा क्या खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो गए। कहीं पहाड़े आते हैं। अच्छा, हम फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट, तो हमको लगा भाई दस्तक पहाड़ियों का चलन था तो कॉन्फिडेंस हमारा बड़ा मजबूत था। हमने कहा कन्हैया मास्टर साहब आप मार नहीं पाएंगे। हम मुस्कुराए, हमने कहा जी आते हैं। अब जैसे हमने कहा पहाड़े आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल देखकर उन्होंने गियर चेंज किया, कहा 12 का सुनाओ। हमने कहा 12 का तो नहीं आता है, तो कहे चलो नीम के नीचे। अब वो ले गए नीम के नीचे और उन्होंने विधवत जो है जितना आदर सत्कार वो कर पाए, हाथ से फिर बेंत से फिर एकाध लात भी पड़ गई होगी, किया उन्होंने। जब हमारा क्रियाकर्म हो गया सारी कार्यक्रम, तो हम वापस चले आए। हमने कहा ठीक है, हो सकता है सिलेबस चेंज हो गया हो। रट्टा मारा हमने वो पहाड़ा याद कर लिया 15 तक। अगले दिन फिर पहुंचे हम पहाड़ा याद करने के पश्चात, कन्हैया मास्टर साहब क्लास में आए, क्लास में आकर हमको देखे और मुस्कुराए। हमने कहा मुस्कुराओ चाहे जितना बेटा, मार तो नहीं पाओगे आज, पहाड़े याद हैं। कल बालक पूछा था, आज पूछोगे तो खट से सुनाएंगे। उन्होंने हमको देखा और फिर कहा कि खड़े हो जाओ। हम खड़े हो गए। कहा पहाड़े याद आते हैं? हमने कहा जी आते हैं। उन्होंने कहा 17 का सुनाओ। अब कॉन्फिडेंस देवल लेवल देख कर उन्होंने फिर गियर चेंज कर दिया। हमने कहा जी 17 का तो नहीं आता है। उन्होंने कहा चलो नीम के नीचे। अब हम गए नीम के नीचे, वही हुआ जो होना था। विधवत उन्होंने हमको जो है वो निपटाया बहुत कायदे से। हमने कहा कोई बात नहीं, अब नहीं मार पाओगे। अगले दिन हमने क्या किया, 20 तक पहाड़ा याद कर लिया। और 20 तक पहाड़ा याद करने के पश्चात हम विद्यालय में पहुंचे। कन्हैया मास्टर साहब हमको देखे, देखकर मुस्कुराए। हम मुस्कुराए हम भी। उन्होंने कहा पहाड़े आते हैं? हमने कहा जी आते हैं। उन्होंने कहा 22 का सुनाओ। कहा 22 का नहीं आता है। कहे चलो नीम के नीचे। 3 दिन की बात यह हो गई। क्लास का 4th दिन मैं पहुंचा, कन्हैया मास्टर साहब पहुंचे क्लास में, हमको देखकर मुस्कुराए और वो मुस्कुराए और हम नीम के नीचे चल दिए। अगर हमने उनकी क्लास में मुस्कुराया न होता दीपांशी जी, तो हमारे साथ ऐसा न होता। तो कुछ लोगों की मुस्कान बड़ी कातिल होती है, बड़ी घातक होती है। तो हमने अपनी मुस्कान की वजह से जितना मार खाया है, हम नहीं चाहते कि हमारे और कोई श्रोता प्यारे प्यारे भाई, भगवान न करे किसी को ऐसी स्थिति आए। तो बिल्कुल मुस्कुराइए जरूर, लेकिन देख लीजिए सामने वाला खतरनाक ना हो, और पार्टिकुलरली टीचर तो बिल्कुल ना हो। हाँ, टीचर जो होते हैं बड़े, टीचर लोग बड़े अजीब होते हैं यार। टीचर लोग करते क्या हैं? एक दिन हमारे क्लास में एक टीचर आए, तो हम कहे कि जो जिसको लगता हो कि वो मूर्ख है वो खड़ा हो जाए। तो हम खड़े हो गए। तो अध्यापक ने कहा कि क्या तुमको लगता है कि तुम मूर्ख हो? हमने कहा नहीं, आप अकेले खड़े थे, अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने भी हमको कूट दिया। मतलब जो आए उसका शिकार, एकदम से हम शिकार ही हो जाते थे एकदम से। मतलब हमने कहा कि अच्छा, जब हम अध्यापक बने, हमने ये सोचा कि जितनी मार हमको पड़ी है उतना ही मैं बच्चों को मारूंगा, तब मेरा बदला पूरा होगा। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए। हम डॉक्टरी पेशा में आ गए, इधर परमारथ के कारण साधन धरा शरीर। तो हम नहीं भैया उतना मारे वाले बच्चों को, लेकिन यह है कि हमें विधवत जो है वो कूटा गया। हाँ, तो पुराने जमाने में लोग कूट देते थे। पुराने जमाने में कॉन्वेंट स्कूल नहीं होता था, भाई कान पकड़ के बेंट कर देते थे, बस वो कॉन्वेंट हो जाता था जी। क्या बताएं आपको, बड़ी दुखद कहानी है। सविता शास्त्री जी उपस्थित है। गुड इवनिंग डॉक्टर जी, बहुत बहुत शुभ संध्या आपको भी। गुड इवनिंग सविता जी, उम्मीद है आप अच्छी होंगी। और दीपांशी तिवारी जी ने भाई ये बताया, क्या बात है जी। अब यही बात है, बताइए अपना दुखड़ा रो रहे हैं। तो अगर आपको भी बचना हो, अब हमारे दिमाग में तरकीब आ चुकी है कि बचा कैसे जाता है। अगर आप भी बचना चाहते हैं और किसी दिक्कत में हैं, तो मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, वही अपना 63-93-31-64-29। आपको नोट करना है, मिला देना है। दुनिया की कोई ताकत मेरे होते हुए आपको छू नहीं सकती है। आप चाहे सड़क पर हंसते हुए चलें, कैसे ये हम आपको बताएंगे। लेकिन भाई गाना वाना सुन लिया जाए। जी हाँ बिल्कुल, गाना सुन लेते हैं। और गाना सुनने के बाद आते हैं और फिर अब आपके प्रश्नों का जो उत्तर है वो उस उत्तर को भी दिया जाता है। तो चलिए काहे ना एक तो बहुत बढ़िया बेहतरीन गाना सुन लिया जाए। और गाना जो है वो अच्छा, हमको धर्मेंद्र जी बहुत पसंद है। अच्छा, और धर्मेंद्र के साथ अगर रेखा जी हो तो मज़ा आ जाता है। तो चलिए कुछ धर्मेंद्र और रेखा जी वाला स्पेशल सुनते हैं, आपको सुनाते हो सकता है आपको ही पसंद आ जाए। जी हाँ, सुनिए और इसके बाद आइए, नंबर लगाइए और बताइए कहाँ तकलीफ है, तुरंत दूर करते हैं।
1: गाने सुने अनसुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

0: जी हाँ, इसी बीच किसी का फोन आ चुका है भाई, जरा देख लेते हैं कौन हमारे साथ जिनका फोन आ चुका है मेरे पास। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग,
1: कैसे हो
0: जी? मैं बढ़िया हूँ। आपका शुभ नाम?
1: दीपांशी
0: तिवारी जी। आपको हंसने की आदत है? मैंने देखिए अभी भी आप हंसी रही हैं। अभी जान लीजिए कि हाँ, अभी आपको इतना समझाया है कि हंसने में मामला गड़बड़ हो सकता है।
1: न जाने कितनी बार मार कर चुकी,
0: लेकिन उसके बाद भी ये हंसी नहीं गई।
1: जब तक दर्द होता तब तक रोते उसके बाद।
0: इसका मतलब वो जो सेंटेंस बना है कि हम नहीं सुधरेंगे, वो आप ही के लिए बना है। होता नहीं है कि हम नहीं सुधरेंगे। हाँ, तो मतलब हमको लगता है कि ये वाक्य जो बना था ये आपके लिए ही बना है। पता नहीं, ये जान, ये जिस दिन आप इस धरा पर अवतरित हुई थी उसी दिन इस वाक्य का निर्माण हुआ था। आपके साथ ही ऊपर वाले ने ये वाक्य धरती पर भेजा था कि हम नहीं सुधरेंगे।
1: बागेश्वर धाम वाला कहते नहीं है हम नहीं सुधरेंगे, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, चाहे चिल्लाओ चाहे सर पटको चाहे जान दे।
0: तो ठीक है, बागेश्वर बाबा कहते हैं उनके पास इतनी संपत्ति है, इतना रुपया पैसा है, बताइए आपको जैसे उनको कौन मारेगा, बताइए, उनके ऊपर साक्षात कृपा है।
1: हमको भी कोई नहीं मारने वाला।
0: नहीं, जैसे आपके साथ तो हम डॉक्टर लव की कृपा है, हम यहीं से जो है वो फूंक देंगे आपको, मार पड़ेगी लेकिन चोट नहीं लगेगी आपको।
1: कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला।
0: बिल्कुल नहीं फर्क पड़ने वाला। ये देखिए आपकी हंसी बता रही है कि मतलब हम नहीं छुप जाएंगे, हम हंसते रहेंगे। आपके ऊपर ही जो है वो अमिताभ बच्चन का गाना बना है, रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर नहीं, आप तो सिकंदर ही हो जाएंगे। सिकंदर का फैमिली जेंडर। हाँ, तो मुकद्दर का सिकंदर ही है आप, ये एकदम कंफर्म हो गया जी। नहीं नहीं, उसमें ऐसी कोई बात थोड़े है, तो स्वाभाविक है दुनिया। हाँ, खूब हंसना चाहिए। अच्छा ये बताइए, एक प्रश्न कर रहे हैं आपसे। जैसे हमारा नाम हम,
1: हाँ,
0: तुम्हारा नाम तुम,
1: हुँ?
0: अब बताओ हम पागल की तुम
1: जी?
0: हम पागल की तुम,
1: हम पागल।
0: स्वीकार कर लिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को स्वीकार करने के लिए कि हाँ, नहीं सही है। हमें उस व्यक्ति से बहुत सहानुभूति है जिसके आप जीवन संगिनी बनेंगे। बेचारा अगर वो दुख के मारे घर में रोता हुआ भी आएगा तो आप उसके हुए पूछेंगे ये चोट कैसे लग गई आपको, ये तो खून निकल रहा है। अच्छा डॉक्टर को बुला दे। क्या अंदाज है, मतलब क्या अंदाज में आप स्वागत करेंगे अपने पति का? ऐसे कुछ ऐसे ही होगा, मतलब कहीं चोट वोट लग गई बेचारे को तो ऐसे कहेंगे आप, अरे ये तो खून निकला है, खून निकला है, डॉक्टर को बुलाए, दवाई नहीं ली आपने? ना दवाई ले लीजिए, डॉक्टर को बुलाए। इस अंदाज में आप कहेंगे उनका तो एकदम गुस्सा खत्म ही हो जाएगा आपको लगता है। नहीं मतलब उसमें हंसाने वाली क्या बात है, ये हमको दिखाई पड़ रहा है, ये भविष्य हमको वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है।
1: फिलहाल मैं सबको बता दूं कि जीवन संगिनी जिसके बनने वाली हूँ मैं, वो तो बहुत खतरनाक इंसान, कभी हंसना नहीं पसंद करता।
0: अच्छा मतलब आपने निर्णय कर लिया है कि आपको किसकी जीवन संगिनी बनना है?
1: अभी से घर वाले नहीं भी कर चुके तो मैं कौन होती हूँ। देखिए सर, जिंदगी का हर फैसला जो माँ बाप ने लिया अपने लिए एकदम अच्छा और लाइफ अच्छे से चलने लगी, हर तरीके की खुशी मिली, तो मैं अपने जिंदगी के लिए आखिरी फैसला भी उन्हीं पर देती हूँ।
0: बिल्कुल, मतलब हमको उस लड़के के साथ पूरी हमदर्दी है।
1: देखिए सर, माँ बाप रहे साथ में या ना रहे, लेकिन वो उनका दिया हुआ आशीर्वाद अपने साथ जिंदगी भर रहता है। कोई ये ना सोचे कि वो मेरे पति, वो पति नहीं, अपने माँ बाप का दिया हुआ आशीर्वाद है।
0: हाँ, पति परमेश्वर है।
1: तो
0: समझ नहीं पाएगा, पति परमेश्वर होता है तो पत्नी क्या होती है, आप जरा बताइए। हम
1: सर अभी तो मैं
0: बनी चलिए, वो तो बात ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए।
1: आप क्या बता रहे हैं?
0: भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए आप।
1: माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
0: नरेंद्र मोदी जी, अब आप प्रधानमंत्री नहीं बनी तो भी आपको प्रधानमंत्री का नाम पता है। उसी प्रकार से हम पूछ रहे हैं, अगर पति परमेश्वर होता है तो पत्नी क्या होती है?
1: प्रधानमंत्री का नाम सबने बताया, लेकिन पत्नी का क्या दर्जा होता है ये नहीं बताया।
0: ये विचारणीय प्रश्न है, इस पर PhD करनी चाहिए, ये शोध करना। आप शोध करके हमको बताइएगा कि पति परमेश्वर है तो पत्नी क्या है।
1: अगली बार जरूर पूछूंगी।
0: पूछूंगी मतलब किससे पूछेंगी?
1: अरे जो है।
0: अच्छा, जो है उनसे पूछेंगी आप।
1: हाँ।
0: सही है, तो उनसे पूछ करके आप दीपांशी जी हमको अगले शनिवार को जरूर बता दीजिएगा कि अगर पति परमेश्वर होता है तो पत्नी को हम क्या कहेंगे।
1: पत्नियों से पूछूंगी कि आपका दर्जा क्या होता है।
0: हाँ, हाँ, पूछ करके और कंफर्म करके बताइए।
1: नहीं मिलेगा जवाब तो आप है ही।
0: हम तो है ही है, जिसका कोई नहीं है उसका तो हम, उसके तो हम आई हैं। हम तो 30 के हैं, हम क्या बताएं।
1: सही बात है, मैं बताएं, आप बहुत परेशान नहीं है? बहुत खुश है
0: जी, हम बहुत
1: खुश है, मतलब
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं परेशान है। जिसके पास 30 पत्नियां हो परेशान हो सकता है?
1: तो वही तो कह रहे हैं, दिन रात हाजिर रहती हो मैं।
0: हाजिर रहती हो क्या, हम थोड़ा थोड़ा काम सबको बांट दिए हैं। एक ही पत्नी होती है तो काम उसको ज्यादा करना पड़ता है, 30 है तो थोड़ा थोड़ा काम सबको बांट दिया कि पैंट तुम साफ कर दो, शर्ट तुम साफ कर दो, मोजा तुम साफ कर दो, जूता तुम साफ कर दो। इसीलिए
1: आपको कोई साफ नहीं करता।
0: हमको क्या कर, हम उन्हीं के लिए तो हम कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं?
1: नहीं, कभी वक्त पड़ा हो और मैं हम लोग
0: जी,
1: मतलब मेरा कहने का मतलब, कभी आपने कुछ ऐसी हरकतें की हो, मैम ने कहा कि नहीं छोड़ेंगे।
0: मैम ने क्या कहेगा, मैम क्या कहेंगे?
1: अरे मेरे कहने का मतलब, कभी आपने कुछ ऐसा बोला हो फिर वो लोग 300 लोग मिलके बोलेंगे आज डॉक्टर साहब को छोड़ना नहीं है हर हाल में।
0: नहीं, वो उन्होंने कहा है कि छोड़ना नहीं है, छोड़ना क्या चाहती है वो?
1: एक छोड़ना अलग होता है, एक छोड़ना अलग होता
0: है। नहीं तो वो अलग छोड़ना है ही नहीं हमारे साथ, तो कहती है छोड़ेंगे नहीं, हम कहते हैं हम कहाँ कहते हैं छोड़ो, हम तो चाहते ही है साथ में रहो, छोड़ेंगे नहीं हम तेरा साथ और साथी जीवन भर तक। तो ये मतलब 2026 का सबसे खतरनाक प्रश्न, पति परमेश्वर होता है तो पत्नी को क्या कहेंगे?
1: सर खतरनाक लग तो रहा है, लेकिन
0: इसका जवाब
1: 2028 में आपको शायद जवाब मिल जाए।
0: ठीक है, 2028 में जवाब बनिएगा, तुमको बता दीजिएगा।
1: जी,
0: जी बहुत अच्छा लगा दीपांशी जी, नमस्ते आपको। जी आप अखंड सौभाग्यवती हैं, अभी से एडवांस में आशीर्वाद। बहुत जरूरत है, हमारा आशीर्वाद लगता है। हमारा आशीर्वाद डिटॉल से ज्यादा लगता है, उतना तो डिटॉल नहीं लगता होगा।
1: लेकिन मैं तो लाइफ बॉय यूज करती हूँ
0: जी। नहीं कोई बात नहीं, आप बिटाल से ज्यादा हमारा आशीर्वाद लगता है, एकदम निश्चिंत रहिए।
1: थैंक यू सर,
0: बहुत बहुत जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, धन्यवाद। जी हाँ, तो ये भाई ये जो है दीपांशु जी को हंसने की बीमारी है, और जो है वो अब देखते हैं कौन हमारे साथ फिर कोई जुड़ चुका है भाई, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो
2: सर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी। जी आपका शुभ नाम?
2: मणि शर्मा बोल रहे हैं सर जी।
0: अरे मणि जी बताइए, इस दुनिया में आप ही की जरूरत सबको है और आप गायब हैं।
2: सर आपने याद किया, हम आ गए।
0: अरे बिल्कुल, हम तो याद होते हैं हम तो हमेशा आपको याद करते हैं, मतलब दिन रात आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं।
2: अरे सर जी तभी तो नंबर नहीं दे रहे, बाकी सबका नंबर है, आपका नंबर नहीं हमारे पास।
0: अच्छा ठीक है, नंबर नहीं तो नंबर मिलेगा उसमें क्या है, नंबर ऐसी कौन सी चीज है, नंबर ऐसी कौन सी चीज है।
2: सही है, जब दिल मिल रहा है तो नंबर की
0: क्या? और क्या, दिल मिल रहा है नंबर तुरंत देंगे आपको, आप निश्चिंत रहिए। भाई कमल लाइन ने लिखा है भाई, पत्नी देवी होती है, बताइए देव देव तो पति देवता होता है तो पत्नी देवी होती है, पति परमेश्वर होता है तो पत्नी क्या होती है भाई, वो तो हमको पता ही है। आप पति देव तो पत्नी देवी, लेकिन पति परमेश्वर तो पत्नी क्या, मामला फंसा हुआ है, सवाल वही अटका हुआ है। और मनी शर्मा जी, जी मनी शर्मा जी आप बताइए आपका क्या प्रश्न है।
2: प्रश्न हमारा ये है सर
0: जी
2: कि जैसे तो मैं लखनऊ गया था पेपर देने, तो मैं वहाँ से आया हूँ सर, एक बात मुझे समझ नहीं आती। हेलो
0: जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी हाँ।
2: अच्छा सर जी, जैसे कोई चीज कोई छू ले, जैसे खाने वाली चीजें, और अगर मैं उसको मतलब खा लेता हूँ, हल्का सा टच हो जाता है जूठा, तो सर मेरे मतलब पूरे मुंह में क्यों छाला निकल आता है।
0: ये बात है, अब देखिए आप एक काम कीजिए, अपने नाम में जहाँ आपने M लगा रखा है वहाँ H लगा दीजिए।
2: क्यों सर?
0: तो मनी की जगह अगर आप हनी हो जाएंगे तो ये जान लीजिए कि सारे समस्या की जड़ यही है, आप खुद में शहद रहेंगे और शहद खाने वाले को छाला नहीं निकलता, आप अपना नाम ही मनी की जगह हनी कर लीजिए।
2: और सर्दी रहता है तो 15-15 दिन तक जाता ही नहीं, बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है।
0: बहुत दिक्कत होती है, एक काम कर सकते हैं आप जो है पहले तो नाम चेंज करके देखिए, और दूसरा जो है वो शनिवार का दिन आज होता है, शनिवार के दिन करीब 2 जो है कुनैन की गोली जो अपने रखी जाती है, गर्म कपड़े वगैरह में आपने रखा होगा जब, तो वो कुनैन की गोली 2 इस बगल एक इस बगल रख लीजिए रात में सोते समय, और चूसते रहिए उसको, भगवान ने चाहा तो छाला एकदम एक बार के लिए जाएगा, फिर कभी आएगा नहीं। छाले उसके मुंह में ज्यादा आते हैं जिसकी जबान बहुत प्यारी होती है, मधुर होती है, मीठी होती है, छाले आकर्षित।
2: मतलब उल्टा उल्टा समझे?
0: नहीं सीधा समझिए। हाँ मतलब एकदम कुनैन की गोली बहुत असर करती है, एकदम एक नंबर दवाई है। थोड़ा सा आजमा करके बताइएगा हमको कि इसने असर किया कि नहीं, क्योंकि अभी तक जितने मरीजों को हमने दिया वो सब उनके बाद छाला नहीं निकला। तो आप मनी जी हैं, आप कभी मुलाकात कीजिए, स्टूडियो आइए आप।
2: अरे सर जी बता तो रहा हूँ, वो सबका नंबर है, आप नंबर ही नहीं दे रहे हैं।
0: अच्छा ठीक है, तो हम
2: आज परवल भैया से मांगेंगे, अगर नहीं देंगे तो आज से दोस्ती खत्म हमारी उनकी।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, दोस्ती खत्म कर दीजिएगा।
2: आज मांगेंगे जरूर, बहुत मतलब बहुत बार कह चुके।
0: नहीं अब बहुत हो गया।
2: जी जी जी,
0: वैसे आप
2: सबका नंबर है जी।
0: नहीं नहीं सही बात है भाई, लेकिन आप अपना नंबर तुमको बता दीजिए भाई पहले।
2: जी
0: आपका स्वयं का नंबर क्या है?
2: हमारा
0: जी
2: आनियर बता दो सर।
0: हाँ आनियर बता दीजिए, उसमें कोई मोहब्बत करते हैं, कोई मतलब प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की है।
2: जी ठीक है सर, लिखिए बताऊं।
0: जी जी
2: 84 67
0: अच्छा, ये जब हम इंग्लैंड में थे तो 667 को कहा जाएगा ना?
2: हाँ सर,
0: हाँ हाँ हाँ वही है, वही वही वही
2: जी सर। 84।
0: अच्छा अच्छा, 8467 है
2: जी सर।
0: जी
2: डबल जीरो।
0: अच्छा, दो बार डबल मतलब दो।
2: जी जी, जीरो जीरो।
0: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वही।
2: 45।
0: अच्छा, ये रोहित शर्मा की जर्सी का नंबर है, बहुत बढ़िया है। हाँ
2: शर्मा जी का
0: जी।
2: 17।
0: ये क्या बात है भाई, ये 45 आपके नंबर में बहुत बढ़िया लगा हमको। रोहित शर्मा बहुत बढ़िया खिलाड़ी है और हम चाहते हैं
2: आप भी सर उनके फैन है ना?
0: बिल्कुल 100%, कोई दिक्कत नहीं एकदम।
2: अभी उनके जैसा कोई प्लेयर हुआ ही नहीं,
0: हुआ ही नहीं, ना कोई होगा।
2: 264 याद है ना?
0: ये याद है, बिल्कुल याद है। लेकिन आप जो है वो छाला अपना ठीक कीजिए और शनिवार को फिर हमसे मिलिए और बताइए कि कैसा लगा आपको।
2: चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। चलो भाई, तो हाँ रेखा जी और अमिताभ बच्चन का एक ही गाना सुन पाए, अभी पूरा नहीं सुन पाए। चलिए पूरा सुन लेते हैं जरा, कोई दूसरा वाला बढ़िया वाला गाना। हाँ ये आ गया जी। हाँ, मिलते हैं आपसे संगीत में अंतराल के तत्काल बाद। फिलहाल ये गीत।

0: जी हाँ, ये सलाम है, इसको कबूल कर लेते, लेकिन क्या बताएं, बीच में फिर कोई आ गया, और देखते हैं भाई अब की बार हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है।
1: हेलो।
0: हेलो
1: हाँ सर जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार
1: जी, एक गाना भेजे हैं, आप चला दीजिएगा
0: जी।
1: गाना एक भेजे हैं, आप चला दीजिएगा।
0: अच्छा, गाना भेजा है आपने, हमको लगा आपने नाना भेजा है। अलियर में हम गाना और नाना में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं।
1: गाना
0: अलियर में हमारे नाना जी को गाना बहुत पसंद था। अच्छा, नाना जी को गाना पसंद था, वो गाना तब सुनते थे जब वो खाना खाते थे।
1: हाँ, तो गाना खाना ही खाते सुनते ही मजा आता। हाँ,
0: अच्छा, और तब हमको जाना पड़ता था, तो वो गाना खाना जाना आना ये सब मिक्स हो गया। हाँ, धर्मेंद्र, आपका शुभ नाम शायद, हाँ आपका शुभ नाम जो है क्या है, मतलब
1: धर्मेंद्र मोहन।
0: धर्मेंद्र मोहन, अरे वाह क्या बात है, धर्मेंद्र है और फिर मोहन भी है, मतलब आपसे बढ़िया नाम पूरे विश्व में किसी का नहीं है।
1: आधा नाम अलग है, आधा नाम अलग है सर।
0: अरे आधा नाम, आधा नाम, आधा आधा मिलके पूरा हो गया, क्या बात की आपने।
1: बहुत तो इधर भगवान उधर हीरो।
0: हाँ, इधर भगवान उधर हीरो, बीच में पता नहीं कितनी देवियाँ। हाँ, ये क्यों नहीं बता रहे हैं?
1: अरे वो तो कुछ राज की बात है।
0: राज की बात है, हमसे क्या
1: तो कुदरती मिला है।
0: हम तो आपके घर वाले हैं, मतलब घर वाले ही हम हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप घर वाली हैं, मतलब हम घर वाले मतलब घर के सदस्य हैं, ये हमारे कहने का मतलब है।
1: यहाँ देवता कौन है
0: जी,
1: ये गाना बजा दीजिएगा, यहाँ देवता कौन है।
0: यहाँ देवता कौन है, यहाँ देवता तो हम ही हैं, आप
1: है। तो गाना बजा नहीं,
0: यहाँ देवता धर्मेंद्र मोहन जी हैं।
1: धर्मेंद्र मोहन लाल पिक्चर का है,
0: धर्मेंद्र मोहन के अलावा कोई देवता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप देवता है जी। जी, बहुत आशीर्वाद आपका।
1: दोनों का मिलके आशीर्वाद होता है,
0: दोनों का, हम अपनी 300 पत्नियों के साथ आपको आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर करे आपकी कोख जल्दी भरे, मतलब घर में खुशियां बहुत आए आपके। बहुत बढ़िया इंसान है।
1: एक एक पेटी सब सामान लाना पड़ता होगा
0: जी,
1: एक एक पेटी सब सामान लाना पड़ता है, जैसे सिंदूर एक पेटी,
0: ये सब नौकर रखे हुए भैया, बंगला है।
1: तो एक एक पेटी सबके लिए मंगाना होता होगा।
0: मंगाना क्या पड़ता है, दुकान अपनी है, बहुत बड़ा माल भी तो है हमारा। हाँ, तो महीने भर का इकट्ठा आ जाता है, एक बार सबको एक एक बार बांट देते हैं। तो यहाँ देवता कौन है, यहाँ देवता धर्मेंद्र मोहन जी।
1: गाना बजाना है मेरा,
0: ये गाना तो बजाएंगे, लेकिन हम बताएंगे भी कि आप देवता हैं।
1: जो दर्जा दे दीजिए, आप बड़े तो हैं।
0: हाँ, हम बड़े हैं।
1: आप मेरे पूज्य हैं।
0: आप हमारे पूज्य हैं, आप धर्मेंद्र भी हैं, मोहन भी हैं।
1: हाँ, तो आप हमारे पूज्य हैं, बड़े हैं ना।
0: आप हमारे पूज्य हैं, हम दोनों एक दूसरे की पूजा करेंगे। भगवान ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, नहीं तो हम क्या बताए,
1: साथ ही साथ होते ना।
0: हाँ, वही तो हाँ। अगले जन्म में भगवान ने चाहा तो मिलेंगे।
1: हाँ, देखा जाएगा
0: जी,
1: पता नहीं किस के रूप में आए।
0: हाँ, किस रूप, जिस रूप में भी आएंगे, मान लीजिए आप नाग हो गए तो हम नागिन हो जाएंगे।
1: नहीं, हम बकरा हो गए, कटेंगे तो हम लोग खाएंगे, कुर्बी नहीं बचेगा, कुत्ते खा लेंगे।
0: ठीक बाबा, ठीक, हम बकरी होने के लिए तैयार है, लेकिन छोड़ेंगे हम ना, हम तेरा साथ हो साथी,
1: साथ मरते दम तक।
0: हाँ, हम मरते दम तक नहीं, जन्म जन्म तक।
1: नहीं, साथियां बिन तेरे दिल माने ना,
0: बिन माने ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: क्या करूं, दिल के पहचाने ना,
0: पहचाने बिल्कुल। हाँ, एकदम सारे गीत आपको समर्पित। धर्मेंद्र मोहन जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
1: आप
0: बहुत बहुत प्यारी आवाज है आपकी, बहुत अच्छे इंसान है आप।
1: व्यक्ति कमाल के हैं,
0: कमाल
1: की बात करते हैं आप, कमाल की बातें करते हैं,
0: कमाल
1: जिसमें रस छ ध्यान करूंगा, जो जितना रस है वो सब रहता है।
0: गन्ने का रस, संतरे का रस,
1: सब रस आपके बातों में रहता है। आदमी समझे तो लायक हो जाए, नहीं तो नालायक तो सब लोग रहते हैं।
0: सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा है।
1: ठीक सर, धन्यवाद
0: जी, नमस्कार।
1: चला दीजिएगा ये गाना
0: जी।
1: ठीक, धन्यवाद।

0: यूँ तो हम सुन रहे थे गाना सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, लेकिन बीच में फोन आ गया भाई धर्मेंद्र मोहन जी का, उन्होंने कह दिया यहाँ देवता कौन है। अच्छा हमको हमारे अलावा धर्मेंद्र जी के अलावा अब ये फिर कोई आ गया भाई, देखते हैं ये कौन है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग
1: जिस व्यक्ति से हेलो
0: जी हाँ गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग सर।
0: जी जी बहुत बहुत गुड इवनिंग
1: सर। कमल नैन बोल रहे हैं।
0: कमल नैन बोल रहे हैं, बताइए आजकल नैन भी बोलने लगे, क्या बात है। वाह कमल नैन जी नमस्कार करते हैं आपको।
1: सर नमस्कार सर। नैन तो ऐसे बोलते हैं कि समझ लीजिए कि पूरी दुनिया तबाह होती है।
0: तबाह। अरे अब ये आपका व्यक्तिगत अनुभव है लगता है, यूँ चलाओ ना नैनों से बांध ले जान ले लो ना जान रहे।
1: अब सर आपको पता हो गया होगा कि नैनों के ऊपर कितने गाने बने हैं।
0: कितने गाने बने हैं और आपके नाम में ही नैन है, बताइए। हाँ
1: इसका मतलब कि नैनों में दम ना होता सर तो गाना क्यों बनता है।
0: हाँ वही तो, नैन में बहुत दम होता है, आंखें बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोलती हैं।
1: जैसे हमारे मनी भाई थे उन्होंने आपसे अभी अपने दिल की बात नहीं बताया था, दिल उनके दिल में कुछ और चल रहा था लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं।
0: हाँ तो अब जो चल रहा था वो आप बता दीजिए।
1: क्वेश्चन कुछ और करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए।
0: कर नहीं पाए वो तो आप उसको पुदिया दीजिए।
1: सर वो इसलिए कह रहे थे कि उनकी जो है शादी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हो जाए, तो हमारे डॉक्टर लग जो है कोई ऐसा उपाय बताए या कोई मंत्र बताए कि जल्दी हो जाए।
0: अरे हमारे पास 30 तो है, कह दीजिए कोई ले जाए भाई जो पसंद हो।
1: नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे नहीं। हाँ। उनके मतलब जो है मन पसंद वाला खोज रहे हैं।
0: अच्छा तो पहले उनको पसंद तो आने दीजिए फिर तो हम करा ही देंगे।
1: नहीं सर पसंद है लवेरिया वाला सिस्टम है लेकिन तो वो जो है उनके घर वाले नहीं माने ना तो इधर से ना तो उधर से।
0: अच्छा ये बात है, तो इधर मतलब डायरिया तो नहीं हुआ किसी को।
1: जी सर डायरिया को पलट दीजिए लवेरिया में।
0: अच्छा लवेरिया हो गया है
1: जी,
0: तो उनको अगर लवेरिया हो गया है तो उनसे आप बताइए कि वो हमसे जो है अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर हमको दे, हम पूरी कोशिश।
1: इसीलिए तो अभी सर इसीलिए तो अभी आपका नंबर उन्होंने लिया है।
0: हाँ हाँ
1: तो आपने नंबर ही नहीं दिया उनको।
0: अच्छा अच्छा तो हम दे देंगे उनको, उनकी गर्लफ्रेंड को हम अपना अपनी नहीं सॉरी उनकी गर्लफ्रेंड को उनकी पत्नी बना देंगे।
1: उनका मनी भाई का नाम पता और मनी भाई के मम्मी पापा का और लड़की का और लड़की के मम्मी पापा का नाम लेकर के आपके पास भेज दे रहे हैं, आप जो दुआ बहुत कराना है वो करवा दीजिए।
0: करवा दे रहे हैं लेकिन उसके साथ 500 QR भेजेंगे, उसमें पैसा लगता है उसमें कुछ सामान।
1: हम 5551 देने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमें बारात जाने को मिल जाएगा सर।
0: आप खाली 551 उसकी फीस ही 551 है
1: सर। 551 मैं पे कर दूंगा।
0: बिल्कुल कर दीजिए आप अपन इसी नंबर पर भी हम QR भेज दे रहे हैं।
1: तुरंत भेज दीजिए, तुरंत भेज दे रहे लेकिन काम होना
0: काम
1: चाहिए।
0: काम हो जाएगा, काम होने की जिम्मेदारी हमारी है। मनी शर्मा जी की गर्लफ्रेंड हमारी पत्नी, मनी शर्मा जी की गर्लफ्रेंड मनी शर्मा जी की पत्नी बन जाएगी।
1: हमारे मित्र हैं तो उनका इतना तो हमारा बनता है, मित्र के जरिए मतलब उनका सपोर्ट कर लेंगे।
0: बहुत बनता है, हम बनाएंगे।
1: बाकी सर आपको तो पता है कि हम लोग गुरु उनको सब कुछ बताया लेकिन वो नाकाम हो गए, तो हमने कहा अब हम आपको अपने गुरु से बात कराते हैं।
0: बस दुनिया भर का एकदम पता नहीं कितनी ब्याह हमने करा दिया।
1: तो वही सर सबके गुरु हम थे लेकिन अब हमारे गुरु तो आप है ना, तो भैया हमसे नहीं हो पाए तो अब हमारे गुरु देखेंगे क्या दिक्कत है।
0: जी जी बिल्कुल हमने देख लिया, आप जो है कुंडली भेजिए हम देखते हैं कौन है।
1: जी सर ओके भेज रहे सर।
0: जी जी नमस्कार। जी हाँ तो ये भाई हमारे साथ फिर मनी शर्मा जुड़े, मुस्तफ़ा सऊदी जी कहते हैं आज आपकी कंपाउंडर नहीं आई, हमने कहा नहीं। और यादवनंद तिवारी जी हैं सर, प्लीज़ सेंड स्टूडियो नंबर। जी हाँ देखिए तुरंत मुस्तफ़ा जी ने भेज दिया है 6393-31-64-29 भाई, ये यादवनंद तिवारी जी। और अनिल शास्त्री जी हैं भाई, गुड इवनिंग जी डॉक्टर लव जी। जी हाँ गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको भी। और इम्तियाज अहमद जी हमको दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ भाई आपको बताएं कि आज हम जिस FM में काम कर रहे हैं, जो हमारा ज्ञानस्थली परिवार है, उस ज्ञानस्थली परिवार के जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं और जो हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा, आज ही के दिन वो इस धरती पर आए थे और आज उनका जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन पर कोई खास गीत भी हम बजाएंगे भाई, क्योंकि ये तो हम सभी लोगों के लिए वो सोचते हैं, और ज्ञान और विनम्रता की तो सीधे प्रतिमूर्ति हैं, और उन्होंने ही हमको ऑक्सफोर्ड भेज करके डॉक्टर लव वाली डिग्री दिलवाई थी। उनकी वजह से हम आज जो है क्लिनिक पर हमारी 4-10-20 पेशेंट आते हैं, खाली लौट जाते हैं। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं भाई कोई श्रोता हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, कौन है हमारे साथ। हेलो,
2: प्रणाम सर। प्रणाम सर जी।
0: जी प्रणाम भैया।
2: प्रणाम, बोलिए सर, आशीर्वाद दीजिए। यादवरण तिवारी।
0: जी जी जी जी, नमस्कार।
2: सर आशीर्वाद दीजिए, हम कह रहे हैं। प्रणाम, हम बोले।
0: अच्छा प्रणाम, आपने बोला आशीर्वाद, चलिए ईश्वर आपको सदा प्रसन्न रखे।
2: धन्यवाद सर जी।
0: जी
2: सर जी, वैसे तो हम पिछले 2 सालों से आपको सुन रहे हैं
0: जी,
2: लेकिन कॉल हम आज किए।
0: ये आपने बहुत बढ़िया किया कि मतलब बहुत अच्छे दिन कॉल किया आपने।
2: 6 बजे से लेकर और 9:15 बजे तक, मतलब न्यूज तक।

0: लोगों का जी। तो वहाँ एलवीएस के पास जो हम देखे बोर्ड मतलब होर्डिंग लगा तो बहुत खुशी हुई
1: जी जी जी खुशी।
0: चलिए गोंडा में भी अपने कुछ हुआ,
1: बहुत अच्छा हुआ,
0: और बहुत अच्छा
1: हुआ। पहला एफएम है।
0: और हम कई बार हिम्मत भी किए दुखरलाल मंदिर तक गए लेकिन फिर भी आपके वहाँ तक नहीं आ पाए हैं। और एक महीने में 26 दिन तो हम वही रहते हैं फिर भी
1: नहीं। चलिए तो संडे को ओपन माइक होता है 1 से 2 और आप आइए और सामने से
0: सैटरडे को बताइए सर, सेम आज सर सेम डे में बताइए, सैटरडे में क्या है संभव?
1: नहीं संडे में ओपन माइक होता है 1 से 2, आप आइए और स्टूडियो में यहाँ से लाइव बोलिए, लोग आपको सुनेंगे
0: जी।
1: कल संडे है, कल बढ़िया दिन है, कल आप चले आइए।
0: सर सुनिए सुनिए सर, हम वैसे हम यहाँ जो अपने हो सकता है आप जानते हैं जो आर के वी के स्मार्ट व्हील है मारुति सुजुकी का
1: जी,
0: जानते होंगे आप बर्मा टीवीएस के सामने
1: जी,
0: जी गोंडा में ही, तो वही हम टेक्नीशियन है, मैकेनिक समझिए मारुति सुजुकी में।
1: वाह क्या बात है,
0: तो हमें सर हफ्ते में एक ही दिन शनिवार को ही हम घर पे रहते हैं, आज घर पे ही थे तो दिन में तो हम बहुत सुने, आज पृथ्वीनाथ महादेव भी गए उसके बाद आए तो घर पे ही थे तो पूरा दिन लगभग सुने ही आज प्रोग्राम ही सबका
1: प्रोग्राम
0: घर पे लेकर और अब तक, तो हमें शनिवार को ही मौका रहता है, अगर औपचारिक भेंट हो जाए तो शनिवार को आप कहिए तो हम गोंडा आ सकते हैं, 1 महीने में 27 दिन हो जाएगा हमारा।
1: ठीक है आप आ जाइए, आपका आपका स्टूडियो है, आपका घर है, आप आ जाइए।
0: आप रहे
1: क्योंकि
0: फिलहाल बातें तो हमें सबकी अच्छी लगती है लेकिन सबसे ज्यादा हसाने का काम आप ही करते हैं।
1: नहीं तो हम खाली शनिवार को ही रहते हैं, वही तो बात है, शनिवार को रहते हैं
0: जी बिल्कुल। फिर दिन में हम अगले शनिवार को आपसे जरूर मिलेंगे
1: जी बिल्कुल, हम प्रतीक्षा करेंगे आपकी, मतलब पलके हमने अभी से बिछा दी है।
0: मोहम्मद कहिए आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, पत्थर दिल भी पिघल जाए, और हम तो मैकेनिक है, हम लोग तो पिघले ही रहते हैं।
1: नहीं नहीं वो बात नहीं, हमने क्या हमने कुदरत से भी कह दिया है, क्या तुम्हें पता है गुलशन में दिल भर आने वाले हैं, कलिया न बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं, तो एकदम हम आज से ही दिल बिछाए दे रहे हैं, अगले शनिवार दिल बिछा रहेगा,
0: अगले शनिवार को हम आपसे परमात्मा ने चाहा तो मुलाकात होगी
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रतीक्षा करेंगे आपके आगमन
0: की सर। और फिर दूसरे कॉलर से भी जुड़िए
1: जी,
0: तो होता बहुत कॉल आती रहती है, हम सुनते रहते हैं।
1: बहुत प्रणाम आपको,
0: प्रणाम सर
1: जी। देखते हैं भाई अब कौन ये हमारे साथ फिर कोई जुड़ चुका है। हेलो
2: हेलो गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग
2: सर, आप कैसे हैं? सर आप कैसे हैं?
1: हम बहुत खूबसूरत हैं और करोड़पति हैं, और मेरे पास कई बिल्डिंग है, घर है, 2-4 कारखाना है।
2: हम बहुत थोड़ा सा मुझको भी दे दीजिए और खूबसूरती का राज बता दीजिए, जो ने बहुत सारे लोग सुन रहे हैं वो भी खूबसूरत हो जाए और थोड़ा मैं भी खूबसूरत हो जाऊं।
1: नहीं तो सबको नहीं बताते हैं, फिल्म थोड़े होता है, अब सब लोग खूबसूरत हो जाएंगे तब क्या होगा, पता चले हमारी पत्नियां सब बेचारी कहें कि वो भी खूबसूरत है।
2: तो
1: जमाना खराब है, हम अपनी खूबसूरती का नहीं बताएंगे।
2: तो डॉक्टर लग डरते हैं, आप तो डॉक्टर हो, फिर आपकी पता नहीं आपको छोड़ के कहीं थोड़ी बचा सकती है।
1: तो वो तो बात सही, लेकिन आपने कहा खूबसूरती का राज बता दीजिए, काहे बता दे भाई, अपना हमारी पत्नी कोई और खूबसूरत लगे वो लेकर चला जाए तो हम क्या करेंगे।
2: सर कोई लेकर नहीं जाएगा, आप देरिए नहीं, और जब भी आप डॉक्टर लव हैं तो हाँ। आपकी पत्नियों को और कोई कैसे रजिस्टर जा सकता है हाँ। क्योंकि लव की जानकारी भी सारी आपको है, भगवान ने आपको दी है
1: हाँ। बिल्कुल दी है, दे रखी
2: है। हम लोग तो अनाड़ी हैं हाँ। और एक बात थोड़ा खूबसूरती का राज बता दीजिए, एक लड़की की शादी होने वाली है, मेरी फ्रेंड है
1: जी,
2: तो उसको शायद खूबसूरत पति मिल जाए, और वो खुद खूबसूरत रहेगी तो खूबसूरत पति भी मिलेगा, और अगर मान लो पति नहीं खूबसूरत रहेगा, जैसे ये राज उसको नहीं पता होगा, वो नहीं सुन रहा होगा, तो उसको भी वो खूबसूरत कर देगी।
1: ठीक है तो हम आपको एक राज बता रहे हैं
2: हाँ?
1: लाल मिर्चा और नमक हाँ? को बराबर मात्रा में लगाकर पूरे चेहरे पर और शरीर पर मलकर 2 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दीजिए हाँ। कुछ दिन में अच्छा, आपकी त्वचा में निखार आ जाएगा।
2: अच्छा इसमें अगर काली मिर्च की मात्रा बढ़ा कर दे तो क्या नुकसान होगा कि फायदा होगा?
1: तो और बढ़िया है, लेकिन सब थोड़े बताना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए।
2: अच्छा आप आधा पूरा बता रहे हो,
1: पूरा कैसे बताए, मतलब हमारे व्यवहार खूब

0: कोई और हो जाए, तो इसलिए अभी उसमें चार आइटम पड़ते हैं, हमने आपको दो ही बताया है, तीसरा आप गेस कर लेंगे।
1: चौथा नहीं बोलेंगे,
0: चौथा नहीं बताएंगे, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है।
1: सारे लोग आपके बराबर हो जाएंगे।
0: हाँ, वही तो, हमसे हसीन कोई है नहीं।
1: हमसे खूबसूरत हो भी तो भी आपके नीचे ही रहे तो अच्छा रहेगा।
0: हमसे हार्ट कोई नहीं है इस समय, हमको 102 डिग्री बुखार है, हमको इस समय हमसे हार्ट क्वेश्चन नहीं है।
1: सर बुखार नहीं है ये तो?
0: हाँ, इसीलिए हम हार्ट एकदम 102 डिग्री आपको हमेशा रहता है।
1: तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास बुखार है।
0: हाँ।
1: गांव वालों को ना बुखार की बहुत जोर आवश्यकता पड़ती है, खासकर इस समय पे।
0: हाँ। तो
1: पूछे क्यों?
0: क्यों?
1: क्योंकि उसमें ना जानवरों के खाने के लिए जो सारे होते हैं वो बुखार में रख देते हैं।
0: हाँ। ये बात तो
1: है। इसमें जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग जानवरों मतलब जानवर रखते हैं ना, पशुपालन करते हैं।
0: हाँ।
1: उन लोगों को बुखार की बहुत आवश्यकता होती है।
0: आपका ध्यान कुल मिलाकर पशुओं पर ही जाता है। आप मतलब किला पशु आहार खरीदिए, हम जाते हैं उसका व्यापार कीजिए, मतलब आप दुकान खोलिए।
1: सर अभी आप बुखार की बात के तो हमने कह दिया, आप इसमें क्या हार्जे आपके पास है तो जिसको बुखार की
0: बुखार, इसके बाद फिर कपिला पशु आहार क्या जोड़ी है? वाह, ये है बुखार, खाइए कपिला पशु आहार। आहा, क्या क्या
1: मतलब आपके यहाँ, मतलब कि आपके यहाँ बुखार भी मिलेगा और साथ कपिला पशु आहार भी मिलेगा?
0: कपिला पशु आहार ही मिलेगा हमको, जब बुखार होता है तो हम कपिला पशु आहार ही खाते हैं।
1: बुखार होता है
0: तो कपिला पशु आहार खाते हैं, ठीक हो जाता है।
1: अच्छा, एक बुखार आपके पास हुआ है जिसमें गांव में लोग चारा रखते हैं।
0: हाँ?
1: और एक बुखार ये जो बुखार है उसके मतलब जब वो होता है तो आप कपिला पशु आहार खाते हैं?
0: कपिला पशु आहार बहुत जबरदस्त काम करता है, और कपिला पशु आहार में थोड़ा सा काला नमक मिला लीजिए तब देखिए मजा, सर्दी भी दूर हो जाएगी।
1: ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग सुन रहे होंगे उनको कभी बुखार होगा तो फिर खा लेंगे कपिला पशु आहार, तो उनका बुखार भी दूर हो जाएगा,
0: बस फिर बुखार होगा भी नहीं।
1: हाँ, तो आप तो सर आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, दो जानकारियाँ तो बहुत अच्छी, दो क्या तीन, एक आपके पास से बुखार मिल सकता है और एक बुखार, वो जो बुखार होता है उसको आप मतलब होगा तो कपिला पशु आहार खा ले जो लोग तो अच्छे हो जाएंगे, और एक खूबसूरती का राज। अगर लगे हाथ एक राज और बता दीजिए कि अगर मतलब जो मेरी फ्रेंड है उसकी शादी हो रही तो उसके मतलब जो हस्बैंड होंगे होने वाले होंगे तो कैसे हम लोग पता करें कि वो एक अच्छे पति हैं?
0: आप उनको वो आज से पति हमेशा अच्छे ही होते हैं,
1: अच्छे ही होते हैं।
0: दुनिया में कोई पति खराब आज तक हुआ ही नहीं।
1: अभी आप बोल रहे हो कि मैं इकलौता अच्छा हूँ, मैं खूबसूरत हूँ।
0: हाँ, तो वही तो कहा पति हूँ ना, इसलिए
1: तो अभी सारे लोगों को कैसे बोल सकते हो कि
0: नहीं, सारे लोगों में आपकी सहेली जिसको चुनेगी पहले उससे मेरी मुलाकात करा दीजिएगा। अगर हमारे समझ में आया वो लड़का तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम गारंटी देते हैं कि उसकी शादी एक अच्छे व्यक्ति से होगी, उसको अच्छा पति मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा तब तो परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, हम तो मानव मात्र की भलाई के लिए हमने जन्म ही लिया है।
1: सर तो इत्तेफाक से जो मेरी फ्रेंड है ना वो आपके शो में भी आती है, कभी कभी आपके कंपाउंडर भी बन जाती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो बिल्कुल आप ढूंढती रहिए, तलाश करती रहिए।
1: जी, तो आप अगर उपकार कर देंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी।
0: बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। अब ये भाई कोई हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं, अब देखते हैं कौन हमारे साथ। ये भाई साहब का फोन आ रहा था और ये आ गया। हेलो
2: हेलो
0: हेलो,
2: हाँ जी, कौन गोंडा में?
0: ये एफएम फोन लगा है गोंडा में। हाँ बिल्कुल।
2: अच्छा, ये कॉमेडी सेक्शन का
0: सैमसंग
2: क्या
0: दरअसल नेटवर्क में थोड़ा सा दिक्कत है आपको। हेलो हेलो

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हेलो
1: हाँ ये सही है।
0: जी, अब बताया।
1: अच्छा ये अभी अभी तो कॉमेडी चल रहा है ना।
0: कॉमेडी नहीं, शो चल रहा है, डॉक्टर लव शो चल रहा है।
1: अच्छा।
0: हाँ, आपको भी कोई तकलीफ हो तो बताइए।
1: हाँ तो कुछ यहाँ पर बहुत सारे बंदी घरों से नक्शा बता रहे, तो अच्छा लग रहा है सुन के।
0: जी
1: आप घरेलू नुस्खे बता रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है सुन।
0: जी जी हाँ, एकदम बहुत शानदार नुस्खा, एकदम।
1: जी, बढ़िया काम कर रहा है। सभी इसे बहुत ही आकर्षित होंगे, अगर एक बार आपके नुस्खे सुन ले तो उनका तो दिन ही बन जाएगा।
0: जी, दिन नहीं जिंदगी बन जाएगी। हम दिन नहीं बनाते,
1: जी,
0: हम जीवन बनाते हैं।
1: अच्छा जिंदगी। जी जिंदगी बनाते हैं, सही बात है।
0: जी, आपका शुभ नाम वैसे हम नहीं जान पाए, आपका प्यारा सा नाम क्या है?
1: जी हम नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहे हैं, अविनाश तेली।
0: नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहे हैं आपको, यहाँ से? और हम वीरभूमि गोंडा से बोल रहे हैं।
1: जी, बिल्कुल। तो अभी मैं सुन रहा था कार्यक्रम, तो
0: जी
1: ये कार्यक्रम सुन के बहुत ही आनंदित और बहुत ही अच्छा लगा सुन के।
0: ये आपका बड़प्पन है और ये आपकी कृपा है, और ये कृपा हमेशा बनाए रखिएगा।
1: जी आपके ही उधर से एक कॉलर थी, वो उनके द्वारा ही मुझे नंबर हुआ, तो मैंने भी अभी कैसे सुना तो अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलिए कॉल लगा लेते हैं।
0: ये बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया जी। तो आप प्रसन्न रहें और ईश्वर आपको खुश रखे।
1: जी आज तो पहली बार कॉल लगाए, तो अगले कार्यक्रम में जब आएंगे तो फिर मैं भी आपसे कुछ घरेलू नुस्खे लेके जाऊंगा तो फायदा होगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, निसंदेह फायदा होगा, वो अजमाया हुआ है।
1: जी धन्यवाद।
0: जी नमस्कार। जी भाई, तो ये नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से कॉल लगा था, अब देखते हैं अब कौन है हमारे साथ। हेलो
2: हेलो
0: हेलो।
2: हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते।
0: जी नमस्ते।
2: और कहिए क्या हाल है डॉक्टर साहब?
0: हाल बड़ा बेहाल है।
2: अरे ये कैसे बता दिया
0: अब
2: आपने?
0: कैसे बता दें, आप मोहब्बत नहीं करते हमसे और क्या?
2: अरे ऐसा नहीं,
0: ऐसा नहीं है।
2: जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से हो आखिरी दिन मेरी जिंदगी का
0: अरे क्या
2: हो।
0: बात है, यही सुनना था,
2: हाँ
0: यही सुनना था,
2: यही
0: मतलब
2: सुनना था।
0: कि मोहब्बत आप करते हैं।
2: हाँ बहुत करते हैं, दिल से करते हैं। और अगर भाई हाल बेहाल हो तो आप हमारे यहाँ चले, हम आपका हाल हाल में बना देंगे।
0: नहीं, हाल इसलिए बार बार आपको देखना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं कि जिनकी इतनी प्यारी सी आवाज है वो दिखने में कैसे
2: अरे
0: होंगे।
2: नहीं भैया डॉक्टर साहब, आप क्यों झूठी तारीफें कर रहे हैं भाई?
0: झूठी तारीफ भगवान न करे, हमको झूठी तारीफ क्यों करिए। देखिए वाह, क्या मुस्कुराए आप, जूही चावला के बाद आप ही की मुस्कान हमको अच्छी लगी।
2: अरे
0: वाह,
2: भाई
0: प्यार
2: डॉक्टर साहब, ये तो आपका जो प्यार है, बड़प्पन है।
0: बहुत है।
2: और
0: जी और सब आपका आशीर्वाद है।
2: आज हमें देर बड़ी देर से फोन लगा रहे हैं डॉक्टर साहब,
0: जी,
2: लेकिन इतनी लाइन व्यस्त थी, पता नहीं कैसे आखिरी समय लग गया फोन, पता
0: लग गया, वो
2: नहीं।
0: आखिरी समय लग जाता है, कभी कभी आखिरी टाइम ही लग जाता है।
2: आखिरी टाइम?
0: हाँ लग जाता है, मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: नहीं हार हो जाती है कभी कभी, बहुत बहुत
0: नहीं,
2: कोशिश करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है।
0: मतलब कहाँ नहीं मिल रही बताइए, हम तुरंत दिलवाएं।
2: नहीं अब तो मिल गए सफलता, बड़ी देर से ट्राई कर रहे हैं, अब तो नंबर लग गया भैया, अब आप लोगों से बात हो गई।
0: नहीं तो
2: और हमारी बहन जी चुपचाप बैठी हैं, बहन जी नहीं बोल रही हैं।
0: हमने कंपाउंडर को छुट्टी कर दी, ये लोग घूसखोरी करते हैं, आज हमने सस्पेंड कर दिया है।
2: अरे नहीं भाई घूसखोरी नहीं करते,
0: नहीं, ये लोग रुपया लेकर के नंबर जो है वो पेशेंट का ऊपर नीचे करती हैं। हमने आज कहा कि आज सब सस्पेंड, आज सिर्फ हम बोलेंगे।
2: नहीं ऐसा न करो भाई, ऐसा न करो।
0: नहीं सिर्फ आज के लिए भाई।
2: अच्छा सिर्फ आज के लिए?
0: आज के लिए दंडित किया गया है, हमने कहा आज सिर्फ हम बिल करेंगे। अगले शनिवार से मिलेंगे।
2: अच्छा अगले से मिलेंगी।

0: आप दिल ना छोटा कीजिए, अगले शनिवार से आपको कंपाउंडर मिलेंगे।
1: अच्छा चलो भाई, इंतजार करेंगे अगले शनिवार का भी।
0: जी जी जी जी बिल्कुल।
1: और ठीक है डॉक्टर साहब, कोई समस्या तो आज है नहीं हमारी?
0: बहुत बढ़िया, ये तो हम हैं तो समस्या कहाँ रहेगी।
1: हाँ जब आप हैं तो समस्या कहेगी, बस केवल आपसे बात करनी थी तो हमने मिला दिया।
0: बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छा लगा।
1: अच्छा
0: जी जी जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते जी। अब देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो।
2: हाँ जी सर, नमस्ते।
0: जी नमस्ते।
2: और सब बढ़िया सर?
0: हाँ बढ़िया तो है, बढ़िया ने, भूख लगी है सर। चाय पीने का मन कर रहा था, शाम हो गई है, पिलाएंगे क्या?
2: अच्छा सर, हाँ सर आइए हमारे घर, हम आपको चाय पिला दे।
0: हाँ बिल्कुल,
2: अभी हम चाय ही पी रहे थे सर।
0: अच्छा तो पहले आप अपना शुभ नाम बताइए।
2: सर मोहिनी तिवारी बोल रहे हैं गोंडा से।
0: जी मोहिनी तिवारी जी, आप गोंडा से बोल रही हैं और आपने गुनाह किया है कि आप अकेले चाय पी रही हैं।
2: हाँ सर, इस वजह तो आपके पास कॉल किया कि आप भी आइए साथ में चाय पीते हैं।
0: अच्छा ये बात है, चाय लेकर के स्टूडियो चली आइए भाई, हम आपके यहाँ चले जाएंगे तो हमारे बाकी सारे पेशेंट।
2: हाँ सर तो आ रहे हैं, अभी पहुँच रहे हैं।
0: जी जी आइए, आपका इंतजार है। तो कोई समस्या है आपको?
2: हाँ सर, समस्या एक थी लेकिन छोटी सी थी।
0: हाँ तो हम छोटी हो चाहे बड़ी हो बताइए, छोटी होगी तो बड़ी कर देंगे समस्या।
2: हाँ सर दो तो करेंगे, आप इसी वजह से आपके पास कॉल किया है।
0: जी जी तो बताइए क्या कहाँ कहाँ तकलीफ है आपको?
2: सर तकलीफ ये है कि सब छोड़ के क्यों चले जाते हैं?
0: क्योंकि आप ठीक ढंग से पकड़ नहीं पाते हैं।
2: सर हम कितनी भी कोशिश कर ले पकड़ने को, सर में सब चले जाते हैं।
0: नहीं हमारे जितने प्यारे श्रोता है देखिए, हम सबको पकड़े हुए हैं, कायदे से कोई छोड़ के जा नहीं सकता है।
2: हाँ सर ये तो है, आपके जैसे हम पकड़ नहीं सकते ना।
0: हाँ जैसे फेविकोल हम लगा देते हैं, फेविक्विक का इस्तेमाल कर देते हैं।
2: हाँ सर लेकिन फिर भी चले जाते हैं, फेविक्विक छुड़ा।
0: नहीं चिंता मत कीजिए, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे।
2: अच्छा अच्छी बात है सर। हाँ। काफी दिन से सोच रहे थे आपके पास कॉल करने को, बट कर नहीं पाए, किए बहुत बार कॉल लेकिन लगा नहीं कभी।
0: चलिए आज लग गया, मतलब आज तो
2: जी।
0: तो मोहिनी जी मतलब चाय हमें भी मिलेगी इसका मतलब?
2: यस सर।
0: हाँ तो मतलब आप चाय लेकर स्टूडियो आ रहे हैं, हम आपका इंतजार करें।
2: नहीं सर स्टूडियो नहीं यार।
0: हाँ
2: क्योंकि हमारे घर से काफी दूर है।
0: अच्छा काफी दूर है, मतलब सात समंदर पार है क्या?
2: नहीं सर सात समंदर पार नहीं है लेकिन दूर है।
0: तब कितना दूर है भाई?
2: आपको आएंगे कभी स्टूडियो तो आपको चाय जरूर पिलाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, और हम चाय पियेंगे जरूर, उनको चाय बहुत पसंद है।
2: चलिए सर फिर सेम सेम है हमारा और आपका फिर।
0: जी बिल्कुल मोहिनी जी बिल्कुल सेम सेम।
2: यस सर, तो सर क्या करें कि सब हमें छोड़ के ना जाए?
0: बस फेविक्विक और फेविकोल को इकट्ठा मिला करके लिए रहे। हाँ। और yes, जिससे भी मिली है उसको थोड़ा चिपका दीजिए, बस देखिए फिर वो छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ
2: नहीं सर वो ऐसे हमें छोड़ के जाता है कि दोबारा ना कभी दिखेगा ना कभी मिलेगा।
0: अच्छा कौन है वो?
2: मेरी फ्रेंड।
0: अच्छा आपकी जो दोस्त है सहेलियाँ?
2: यस सर। हाँ वही सर।
0: हाँ नहीं एक बार आप हमारा उनसे परिचय करा दीजिए तो हम बढ़िया से उनको जो है वो,
2: आप जब वो जा चुकी हैं तो आपका परिचय हम कैसे करवाएं?
0: ये लीजिए ये, बस सात समंदर पार गई हैं वो भी। अरे कितनी दूर है?
2: हाँ सर सात समंदर से ज्यादा दूर।
0: अरे वाह तब तो खैर समस्या गंभीर है।
2: हाँ सर इसी वजह से आपके पास कॉल किया कि समस्या गंभीर है, आप हल निकालेंगे कोई ना कोई?
0: हम हल, हाँ हम हल निकालेंगे लेकिन अब जो है उसके लिए हमको गांव जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रैक्टर जब से आए तब से हमने हल रख दिया है। हाँ तो अब हम हल निकाल लेंगे, हल निकाल के फिर आपको दे देंगे।
2: हाँ हाँ सर ठीक है
0: ठीक है। मोहिनी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: अनिल वर्मा जी ने बढ़िया क्वेश्चन किया है कि सर जी यदि पत्नी दाल में नमक डालना भूल जाए तो उसे कैसे कहकर मनाएं, बताएं कि उसे अच्छा लगे। अनिल वर्मा जी आप अपनी पत्नी से कहिए कि तुम्हारे हाथों में इतनी मिठास है, तुमने अपने हाथों से आज दाल को छू दिया, दाल मीठी हो गई है, थोड़ा सा नमक दे दो और अपने हाथ से दाल ना स्पर्श किया करो। बस पत्नी को बुरा भी नहीं लगेगा कि मेरे सजना इतने अच्छे हैं, और इसीलिए पति को सजना कहा जाता है क्योंकि उसका काम है कि वो पत्नी को सजाए। हाँ तो आप जो है वो ये कहिए तुम्हारे हाथों में जादू है। और ये देखिए कोई मैसेज आता है। हेलो,
3: अरे नमस्कार डॉक्टर लाल साहब
0: जी। नमस्कार नमस्कार।
3: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में मैं ये देख रहा हूँ
0: जी,
3: मतलब आप तो सोशल मीडिया डॉक्टर हो, आप सोशल मीडिया वाले डॉक्टर बन गए, फिर भी आपका क्वेश्चन जायज है लोगों का
0: जी,
3: कि लोग अब लड़का नहीं पति ढूंढ रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो फर्स्ट स्टेज नहीं सेकंड स्टेज ढूंढ रही है पता पति मतलब कैसा होगा। अरे लड़का आप ढूंढो पहले, पति कैसे बन जाएगा वो।
0: हमको लगता है आप अपने जुगाड़ में तो नहीं है।
3: अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रहे हैं मतलब आप, एकदम पहचाना आपने,
0: एकदम पति है आप। और आप सोच रहे हैं कि लोग पति ढूंढ रहे हैं और हम पति आई हैं।
3: तो मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं नहीं आप देखिए बातें हो रही हैं क्या पतियों की, तो जो एक्सपीरियंस नहीं है वो पति कैसा होगा, खराब होगा, तो कौन जानता है।
0: नहीं कोई नहीं जानता।
3: मैं तो वो कह रहा हूँ ना कि लड़का ढूंढो आप, लड़का से बाद में बनेगा पति।
0: हाँ लड़का से बाद में बनेगा पति, और क्या।
3: तो पति ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए मैं अपना भाई ज्वाइनिंग तो दूंगा ना।
0: हाँ बिल्कुल, आप जो है वो अपना रिज्यूम दे दीजिए।
3: तो भाई वही तो मैं वही तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मिल गया बहुत बढ़िया है, कम से कम मैं रिज्यूम डॉक्टर साहब को दे दूं।
0: रिज्यूम भेज दीजिए हमको और हम जैसे ही कोई लड़की पति ढूंढेगी मैं खट से आपका रिज्यूम उसको ट्रांसफर।
3: नहीं नहीं अभी तक आपके पास बहुत फोन आया था तो उसी में से कोई देख लीजिए हमारे लिए।
0: अच्छा ठीक है, तो उसी में से देख कर,
3: और नहीं तो आपके पास जो 30 है उसी में से ढूंढ लीजिए।
0: आप आइए 30 में से छाट मिल लीजिए जो आपको नीक लगे वो लीजिए।
3: अरे नहीं बाबा, अरे जो पसंद करे छाटना भी ना क्या।
0: नहीं छाटना भी ना मतलब आप ले जा सकते।
3: नहीं नहीं कुछ छाटना बिनने वाला नहीं। अरे जो मुझे पसंद करे आप में से जो 30 हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं उसमें भी राजी हूँ।
0: ठीक है ठीक है, तो आज आपकी फोटो हम सबको दिखाई देते हैं। जिसने ये कह दिया कि ये मोहिनी सूरत है, बस हम कहेंगे जाओ।
3: बस यही कहिएगा मोहिनी सूरत है लेकिन मुझ में फंस मत जाना।
0: बहुत बढ़िया है, हम एकदम बता देंगे। आज आपकी फोटो हम दिखाई देते हैं।
3: अरे बाप रे बाप, चलिए ठीक है डॉक्टर
0: जी। अच्छा अच्छा जी, नमस्कार।
3: आज आपके पास आपकी नर्स वगैरह नहीं है।
0: हम कंपाउंडर लोग जो है वो घूसखोरी करती हैं, जान लीजिए। अच्छा, कि हाँ हमने पकड़ा परसों की कोई पेशेंट आया, उसने रुपया ज्यादा दे दिया, कहा हमारा नंबर पहले लगा दो, तो हमने आज के दिन सबको सस्पेंड कर दिया। हमने कहा आज हम, आज
3: मतलब ये वन डे के लिए ना, आज के लिए
0: बस, खाली आज के लिए।
3: आज
0: मैं खुद जो है वो करूंगा और आइंदा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।
3: नहीं डॉक्टर डॉक्टर होता है, नर्स तो सपोर्टर होती है, वो अलग मैटर है।
0: नहीं सपोर्टर होती है लेकिन वो लोग जो है घुसखोरी कर रही थी।
3: अरे बाप रे बाप, तो फिर आपने अच्छा डिसीजन लिया।
0: डिसीजन बहुत शानदार लिया।
3: नहीं शानदार लिया है, अब आएंगे हम आपसे पर्सनली अपना इलाज कराने।
0: बिल्कुल आप आइए, आपका इलाज हम करेंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बसरते जो मैंने कहा है मेरा एप्लीकेशन लगा दीजिएगा।
0: बिल्कुल लगा देंगे आपको भी, मतलब दो-चार एडवांस,
3: क्योंकि जो लोगों को पति चाहिए तो पति ऑलरेडी मैं हूँ
0: जी। आप हैं?
3: हाँ, लड़का चाहिए तो कोई बात नहीं।
0: तो कोई बात नहीं
3: जी जी। तो ओके सर,
0: ओके। अच्छा जी, नमस्कार।
3: थैंक यू डॉक्टर साहब
0: जी। जी हाँ भाई, जुगल कुमार वर्मा जी भी है भाई। अब क्या बात है भाई, असिस्टेंट सविता जी मौजूद हैं। और जी अब भाई डॉक्टर लव, अब देखिए हमारे क्लिनिक का समय हो चुका है, अब हम चल रहे हैं। और अब इसके बाद कोई जो करके आती है, कोई मैडम है एक, तो गाना वाना सबका बजाती हैं, पता नहीं उनका क्या नाम है, हम तो नंबर भूल जाते हैं। कोई है कहती हैं कि हम वो नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। अब उनका टाइम हो चुका है भैया, जिसका टाइम हो जाता है वो

आता है। तो भैया हमारा टाइम हो गया, हम चल रहे हैं अपने क्लिनिक पे। अब आगे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब जो आपकी अगली वाली आरजे है वो आपको संभालेंगी। और आपने इतनी देर तक साथ दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे भगवान ने चाहा तो अगले शनिवार को। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और काली मिर्च नमक ये सब देह पर लगाए दीजिएगा ताकि गर्मी आपको न लगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।

0: वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो फरमाइशी विद योर आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल स्टे ट्यून्ड
1: सो देयर इज एन इमरजेंसी केस ऑफ मेहर गरेवाल एक्सीडेंट है
2: क्या नाम था
1: मेहर गरेवाल
2: मुझे ले चलो
1: कम

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को अभी तक नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और ओ माय गॉड लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, गीत आपके नाम से भी और आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो डेफिनेटली हमेशा के लिए है ना आपकी। सो कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आपकी शाम में, बहुत खास खास बहुत प्यारी प्यारी बात जरूर बताना। लेकिन वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, अनुष्का श्रावस्ती से, मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से, कमल लैन एंड प्रबल मिश्रा गोंडा से, मुस्तफा जी सऊदी से, हरीश चंद्र, सविता जी आपका भी स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल इज नॉट सो सिंपल। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मालवे नगर से राजेश सिंह जी, सुरेश कुमार जी चौक से, निबल जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, राजू सलमानी जी आवाज विकास गोंडा से, नागेश्वर धाकर द ग्रेट सिंह साहब और चांदनी निशा सबीहा, ये तीनों गोंडा से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल इज नॉट सो सिंपल। शशि सिंह जी गोंडा से आपका भी स्वागत है और एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। टन टन टन टन। सो हमारे पास में पहली फरमाइश है जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से, और जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना एक डाल पर तोता बोले दूजे पर मैना, है ना शायद। तो एंजॉय करते हैं लता और मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड स्कूल वाला नगमा हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा ओल्ड इज गोल्ड सुरीला नगमा हमारे सुरीले से जग्गू दादा की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है, जानते हैं किसकी? क्यों बताऊं किसकी, पहले वेलकम करने दो ना। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल एंड नीना। वेलकम इन योर शो नीना, और इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अब अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से, उनको सुनना है गाना दिल में हो तुम। सो इंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला सुपर डुपर हिट नगमा दिल में हो तुम अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

गए हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा सत्ती मेव जयते का नगमा अनिल वर्मा जी की फरमाइश पे जो की है सैदापुर से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है हमारी चुलबुली सी अनुष्का जी की श्रावस्ती से, और चुलबुली सी अनुष्का जी को श्रावस्ती से सुनना है गाना खिलाड़ी 786 का तेरा प्यार प्यार प्यार हुक्का बार। अरे इस गाने से मुझे लोकी याद आ गया, आजकल तो दिखता ही नहीं है। ओहो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा एनर्जी से भरपूर नगमा। स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय किया है ये सुपर डुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा खिलाड़ी 786 मूवी का हमारी चुलबुली से अनुष्का जी की फरमाइश पे जो कि है श्रावस्ती से। नाउ नाउ नाउ लेट्स गो टू अगले वाले फरमाइश की तरफ। सो क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश की तरफ चलने के लिए? अगली फरमाइश हमारे पास में है कमल नयन जी की, और कमल नयन जी को सुनना है गाना तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। आहा, अच्छा जी, अभी देखिए तेरी मोहब्बत में दिल में क्या क्या कर दिया। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये 90s का सदाबहार नगमा रंग मूवी का हमारे कमल नयन जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मनी शर्मा फ्रॉम खुरासा गोंडा, और आप सभी के लिए एक बहुत प्यारी सी न्यूज है आपकी आज सिंपल नॉट से सिंपल के पास में। मिलते हैं इस परमाइश

और हम सबने भी अपना दिल किसी के नाम कर दिया है, क्यों सही खाना। मैं तो हमेशा सही ही कहती हूँ, लेकिन आज मैं एकदम सही सही बात करूंगी और वो आप सबको एकदम सही सही लगेगी। सो अभी मैंने आप सभी से कहा था कि मैं अभी आप सबको एक न्यूज देना चाहती हूँ और इस फरमाइशी गीत के बाद वो न्यूज दूंगी। सो फिलहाल हमने इंजॉय किया है ये गाना कमल नयन जी की फरमाइश पर, इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि आज का दिन बहुत बहुत बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है, बेहद खास है हमारे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के परिवार के लिए। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या है, सो थोड़ा सा गेस करिएगा और थोड़ा सा अपनी फरमाइशी गीतों के लिए प्रतीक्षा करिएगा, क्योंकि साल में ऐसा दिन सिर्फ एक ही बार आता है। सो एक दो मिनट तो अपने को लेने का है। सो फटाफट से आप लोग गेस करिए कि आखिर आज ऐसा क्या है जो बहुत स्पेशल है हमारे 89.6 FM ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर के धड़कन के परिवार के लिए, हम सभी के लिए। क्या आप लोगों ने गेस किया? फटाफट से बताना। अगर नहीं गेस किया तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे है हमारे 89.6 FM के कैप्टन का। जी हाँ दोस्तों, हमारे कैप्टन, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा सर का है आज हैप्पी हैप्पी हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। जी हाँ दोस्तों, सो आप लोग ढेर सारी विशेष दीजिएगा और विशेष का सिलसिला आज के दिन तो ऐसे ही चलते रहना चाहिए। और मेरी तरफ से, इस पूरे ज्ञानस्थली की टीम की तरफ से और मेरे गोंडा के और मेरे पूरे इंडिया लेवल के, इनफैक्ट हमारे सभी लिसनर्स की तरफ से, हमारे सर के लिए, हमारे डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा सर के लिए जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मींस बहुत ही हैप्पी वाला, बहुत ही प्यारा वाला, बहुत ही स्वीट वाला, एकदम हमारे डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा की तरह स्वीट वाला हैप्पी बर्थडे टू यू सर। और एंजॉय करते हैं आज हमारे दीपेंद्र सर के लिए बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। लेकिन एक बार और, सर आपका विजन और आपका सपोर्ट ही है जो आज ये स्टेशन गोंडा शहर के दिलों का धड़कन ही नहीं बना हुआ है बल्कि पूरे इंडिया लेवल पे छाया हुआ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। भगवान आपको हमेशा हेल्दी रखे, हमेशा हैप्पी रखे और हमेशा हमेशा हमेशा आप ऐसे ही कूल कूल रहो। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा। हैप्पी बर्थडे सर।

और बार बार दिल ये गाए, ये है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सो हमने एंजॉय किया ये बर्थडे वाला बहुत ही बेहतरीन सा गाना, और एक बार फिर से बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सर को। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़। स्टे ट्यून्ड एंड प्रमुख कुमार जी श्रावस्ती से आपका भी स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपनी आरज़ू सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। सो दोस्तों, मैं कुछ कहना चाहूंगी कि डॉक्टर दीपेंद्र सर के लिए, हमारे डायरेक्टर सर के लिए, कि दुआओं की शक्ल में जो सर पर हाथ होता है, दुआओं की शक्ल में जो सर पर हाथ होता है, तो हर मुश्किल सफर फिर बेहद आसान होता है। मुबारक हो आपको जन्मदिन का ये हंसी लम्हा, मुबारक हो आपको जन्मदिन का ये हंसी लम्हा, आप जैसा रहबर पाकर हर दिल को नाज होता है। सो आप ऐसे ही हंसते रहिए, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। सो मच लव टू यू सर, वंस अगेन हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से भी और मेरे पूरे ज्ञानस्थली के परिवार की तरफ से भी। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से, और मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना जिंदगी एक सफर है सुहाना, और यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सा गाना। स्टे ट्यून। ये जो पंडित लोग करते हैं ना स्वाहा हर एक मंत्र बोलने के बाद में, वैसे मेरी दो तीन दिन से आदत पड़ गई है हर फरमाइशी गीत के बाद में आहा बोलने की, और इस आहा वाले आदत को मुझे छोड़ना पड़ेगा। आहा

0: अरे
1: उल्ली उल्ली ओ, उल्ली उल्ली ओ, जिंदगी एक सफर है सुहाना है और यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हमने एंजॉय किया है ये गाना मोहम्मद मुशीर जी की फरमाइश पर जो कि है बाराबंकी से। और इसी के साथ में हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने मींस नागेश्वर धाकर ने, इट्स कुमार ने, नीना ने, मोहम्मद मुशीर जी ने बाराबंकी से, जुगल किशोर वर्मा जी ने, सभी ने हमारे डायरेक्टर सर को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंड इट मीन्स रियली अ लॉट। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रबल मिश्रा की, और प्रबल मिश्रा को सुनना है बुलंद आवाज में गाना मीन्स दलेर मेहंदी का गाना। एंजॉय करेंगे हमारे प्रबल मिश्रा की फरमाइश पर। हाँ, स्टे ट्यून्ड एवरीवन। कभी कभी शक्ति कपूर आ जाते हैं मेरे अंदर, कभी कभी शत्रुघ्न सिन्हा आ जाते हैं मेरे अंदर, कभी कभी अमिताभ बच्चन जी आ जाते हैं मेरे अंदर, कुछ कुछ पता ही नहीं चलता ना दोस्तों। सिंपल कब रहती हूँ वो मुझे नहीं पता। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये गाना। अब तो आएंगे दलेर मेहंदी जी।

हमारे प्रबल मिश्रा की फरमाइश पे जो की है गोंडा से और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मुस्तफा जी की, उनको सुनना है गाना अफसाना बना के भूल ना जाना। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कतई नहीं भूलेंगे, है ना, जो अफसाना बनाता है वो भूलता थोड़ी है।

एंजॉय किया है ये गाना हमारे मुस्तफा जी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यही बने रहिएगा अपने रेडियो 11.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। एंजॉय करते हैं हरीश चंद्र सगिता जी की ये फरमाइश, मिलते हैं सीधे 9 बजे। Stay tuned.

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
4: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

Once again, welcome in your show with your RJ Simple, who is not so simple. आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन का ये बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट फरमाइशी, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से आपके अपनी RJ सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कैसे हैं आप सब और री वेलकम एवरी वन। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड।

भी किसी युग में अपना साथ रहा हो, जैसे हमने एंजॉय किया है ये वाला नगमा मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। नवीन राजपूत जी एमपी से आपका स्वागत है आपके अपने शो फरमाइशी में। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मनीष शर्मा की खुरासा गोंडा से। और मनीष शर्मा को खुरासा गोंडा से सुनना है बहुत ही अतरंगी सा गाना। सो एंजॉय करते हैं मस्ती ज्यादा मूवी का ये नगमा मनीष शर्मा की फरमाइश पर। स्टेज

कल की पिक्चर दिखा दूं, हमने एंजॉय किया है ये गाना मस्ती ज्यादा मूवी का, हमारे मनीष शर्मा की फरमाइश पर, जो कि है कोरासा गोंडा से। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है शशि सिंह जी की और उनको सुनना है ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। सो एंजॉय करते हैं शशि सिंह जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड।

साथ तेरे है ना मेरा जल की धारा, इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आ और कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा शशि सिंह जी की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश है तड़कते भड़कते से नगमे की। जी हाँ दोस्तों, एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है इट्स कुमार की MP रीवा से, और फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका बेसब्री से इंतजार था इट्स कुमार को MP रीवा से। एंजॉय करते हैं कॉकटेल मूवी का ये सुपर डुपर हिट नगमा, मेरा फेवरेट वाला गाना इट्स कुमार की फरमाइश पर।

दुआ से एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है राकेश वर्मा के बेटे कृष्णा वर्मा की, और उनको सुनना है गाना अग्निपथ मूवी का। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर हिट नगमा देवा श्री गणेश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ये फरमाइश है कृष्णा वर्मा की दुखरन नाथ गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

0: सॉन्ग हमने एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सा डिवोशनल सॉन्ग देवाश्री गणेशा गणपति बप्पा मौर्य, सिर्फ और सिर्फ कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर जो की है दुकरानाथ गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश होगी हमारी आज की आखिरी फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश है हमारे पास में नागेश्वर धाकड़ की, इंजॉय करेंगे नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश, और इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना दोस्तों, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना, और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करना, बहुत सारा मिस करना, ढेर सारा मिस करना। क्यों? क्योंकि है कल संडे, संडे मींस फंडे, फंडे मींस हॉलीडे, तो मिलते हैं परसो। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं परसो। Enjoy करते हैं ये वाला गाना, आई मीन नागेश्वर धाकड़ मीन्स नागू बाबा की फरमाइश। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इम्तियाज अहमद फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून्ड।
1: What is it?

0: हाले दिल उनसे मेरा मुझको ही कहने दीजिए, हाले दिल उनसे मेरा मुझको ही कहने दीजिए, आप जाने क्या कहेंगे आप रहने दीजिए, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आँखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवत

0: गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
3: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
2: और जेंट्स के लिए?
3: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
2: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
3: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
9: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
10: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं राग यमन कल्याण से। और जी हाँ, हमने राग यमन कल्याण कहा और राग यमन कल्याण के जो बेताज बादशाह हैं वो आ चुके हैं। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ प्रभु चरण स्पर्श।
1: हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद।
0: आपको बताऊं कि हमारे जो यहाँ 89.6 FM के फाउंडर सर हैं, आज उनका जन्मदिवस भी है। और इस
1: जन्मदिन की उनको बहुत बहुत बधाइयाँ।
0: हाँ, और इस मौके पर आपका जाना ये सोने पर सुहागा लगा देने वाली बात हो गई।
1: ये हमारा भी सौभाग्य है कि ऐसे अवसर पर हमें भी आपके साथ जुड़ने का मौका मिल गया।
0: जी जी जी, वही मैं सोच रहा था कि इस अवसर पर आप आ गए और आपने शुरुआत कर दी कार्यक्रम की, आधारशिला कार्यक्रम की नींव रख रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी हाँ, हमें भी लगता है कि मैं शायद पहला कॉलर हूँ और पहले कॉलर में एक थोड़ा सा जरूर ही मन में एक संकोच रहता है कि मैं कहाँ तक सफल हो पाऊंगा।
0: नहीं, वो तो खैर वो लोग जाने जिन्होंने जिंदगी में पहला कदम कहीं रखा हो। आप तो जिंदगी के इतने पड़ाव पर आ चुके हैं कि अब आपको कदमों से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा।
1: हर स्टेप पर आदमी को हर स्टेप पर कोई ना कोई नया अनुभव ही होता है और ऐसे सीखते ही रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
0: नहीं, वो तो हमने आपसे सीखा, मतलब कि उतना तो मतलब इतनी जिज्ञासा कहाँ से आती है वो हम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आप में ढूंढते हैं कि आपके जैसा जिज्ञासु होना चाहिए।
1: जी हाँ, जिज्ञासु व्यक्ति को मेरे विचार से होना चाहिए। अगर जिज्ञासा ही व्यक्ति की मर गई तो फिर वो जाएगा कहाँ।
0: हाँ, अमिताभ बच्चन जी अपने शो में कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो प्रभु आज हम राग यमन कल्याण पर आएंगे।
1: जी हाँ बिल्कुल, हम यमन कल्याण का जैसे कि पुरानी फिल्मों में जब राग यमन कल्याण को लोग दे रहे थे तो उसको अपने अलग अलग ताल में उठाते थे। जैसे एक ताल कहरवा होता है
0: जी।
1: कहरवा हमारी यूपी में बहुत ही फेमस है और उससे कहरवा के ताल पर आधारित तमाम सारे गाने हमें चौपालों में सुनने के को मिलते हैं। तो आज एक इसी पुरानी फिल्म का जो राग यमन कल्याण पर है और वो कहरवा ताल में है, उसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: हो सकता है कि आपको अच्छा लगे।
0: अरे नहीं,
1: और शायद मैं अपने प्रयास में सफल हो पाऊँ।
0: जी जी,
1: आप तो मैं उसी की शुरुआत करता हूँ। और पूरा तो नहीं लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो खिलाने आएंगे सामने को मैं सुनाता हूँ आपको।
0: जी,
1: ये फिल्म पाकीजा का गीत है, बहुत पुरानी फिल्म है।
0: अरे मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी।
1: हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसी का राग राग यमन कल्याण पर आधारित एक गीत है, मैं उसको आपके सामने ला रहा हूँ।
0: जी

0: नागों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। हमरी न मानो बजवा से पूछो, हमरी न मानो सैया हमरी न मानो बजवा से पूछो, जिसने असर की जड़ दीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने रंग ले लीना दुपट्टा मेरा। हमरी न मानो सैया रंग रजवा से पूछो, जिसने गुलाबी रंग दीना दुपट्टा मेरा, जिसने गुलाबी रंग दीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। थैंक यू।
1: क्या बात है, मतलब ये गीत सबने सुना था, लेकिन ये कहलवा से है इसकी जानकारी हम मुझे स्वयं भी नहीं थी।
2: और कहलवा तो नॉर्मली हमारी यूपी में ज्यादातर लोग उसको सुनते भी हैं और लाइक करते हैं।
1: और ये कहलवा के तर्ज पर ही है।
2: हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आज यही गीत रखा जाए आपके सामने, जो कहलवा पर ताल पर है और राग यमन कल्याण का है।
1: अरे वाह, क्या बात, मतलब संगीत पर आपने काफी शोध किया है।
2: शोध क्या है, करता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहता हूँ कि एक एक मात्रा है संगीत तो इसे भगवान भोलेनाथ की दी हुई विद्या है, उन्हीं के डमरू से सारा कुछ निश्चित हुआ है। बट यह है कि एक एक जितना भी आप उसमें खोज करेंगे उतना कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, इतने ज्यादा राग विराग है उसके कि आप खत्म नहीं कर सकते।
1: भगवत कृपा है आपके ऊपर, हमको लगता है चारों धाम करने के बाद और हो गया।
2: भगवत कृपा से ही तो ये सब चीजें संभव हो पाती हैं, अन्यथा की स्थिति में वह ऐसी यात्राएं भी न लोगों के मन में बसेंगी, और मन में बसेंगी तो प्रयास करने के बाद कई बार नहीं जा पाते हैं। तो भगवत कृपा ही थी यात्रा का छुआ संपन्न कराया।
1: बहुत अच्छा भाई, मतलब हम लोग तो धन्य है आपको पाकर रेडियो गणेश 9.6 FM धन्य है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। और हमारा प्रसाद, हमने कहा कि
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा आपके पास, जल्दी आ जाएगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लखनऊ में इस समय?
2: नहीं अभी नहीं, कल पहुंचे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। प्रभु चरण स्पर्श जी। हाँ भाई, हमारे साथ मनी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। क्या बात है भाई, मनी सब शर्मा जी आज ये वेलकम। जी हाँ, आपका स्वागत हम स्वीकार करते हैं। अनिल शास्त्री जी हैं, गुड इवनिंग मनु जी। जी हाँ, शुभ संध्या आपको भी शास्त्री जी, चरण स्पर्श आपको सविता जी। दीपांशु तिवारी जी हैं, गुड इवनिंग सर जी। जी बहुत ही शुभ संध्या आपको भी। और इसके पश्चात हमको चलेगा, माय फेवरेट सॉन्ग है, थैंक यू सो मच, और हो सके तो ये प्ले कर देना सर प्लीज़। अच्छा, और सी आप लोगों को खास बताएं तो शुरुआत ही नहीं हो पाई थी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप। और आज खास दिन इसलिए है क्योंकि हमारे रेडियो गणेश 9.6 FM के संस्थापक महोदय का आज जन्मदिन है भाई। और इस जन्मदिन के मौके पर, इस अवसर पर मैं आपको हर शनिवार को चॉइस देता हूँ कि आपको ये सुनाना है, लेकिन बर्थडे है तो चलिए बर्थडे में हम लोग कुछ खास करते हैं, और खास ये कर सकते हैं कि जो आपको अच्छा लगे आप वो सुनाएं। और आपकी शुभकामनाएं भी हमारे जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं उन सर तक पहुँचे, और आपकी आवाज़ के माध्यम से भी हम उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। चलिए, फिलहाल बर्थडे है और हमारे लिए तो जब किसी का बर्थडे होता है, जन्मदिवस होता है, तो हमारे जो सर हैं वो ज्ञान और विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, और ऐसे लोग सामान्यतया इंसानों से नहीं बल्कि फरिश्तों के जैसे हो जाते हैं। तो आइए पहले एक गीत उनको डेडिकेट कर देते हैं, समर्पित करते हैं। रेडियो गणेशलेट 9.6 FM परिवार की तरफ से मैं मनु अपने डॉक्टर दीपेंद्र सर को उनकी शुभ जन्मदिवस की शुभकामना के साथ ये गीत भेंट करता हूँ, और इसके बाद हम चलेंगे कालीन प्रोग्राम की तरफ। सुनते रहिए और रेडियो गणेशलेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल बर्थडे स्पेशल ये पैसा गीत हमारे

0: जी हाँ, वो नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, तुझसे ये कैसे रिश्ते। जी हाँ भैया, ये गीत हम प्ले करेंगे बिल्कुल दीपांशी जी, और सचिन शुक्ला जी हैं सर जी, प्रणाम आपको भी, और हैप्पी बर्थडे भाई। हाँ हमारे सर को, मनीष शर्मा जी हैं, हेलो जी हाँ, जितिन सिंह आप, मनु जी खिलाएंगे सबको 1000 पॉइंट के केक, बिल्कुल बिल्कुल। अरे साहब आप आइए तो हम आपको केक में डुबो देंगे, और वाओ नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। मैम ने प्ले किया था ये, जी हाँ, उसके पश्चात भाई जितिन सिंह जी, और देखते हैं हमारे साथ कोई श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो,
0: अरे दादा प्रणाम।
1: अरे कुछ नहीं है, कैसे हैं सर?
0: आशीर्वाद है आपका, आशीर्वाद है।
1: कैसे आप बताएं सर, कैसे हैं
0: आप, बताइए आप कैसे हैं, मतलब सब कुछ गोरखपुर
1: के लिए आप लोगों की दुआओं का असर है कि मैं ये ठीक ठाक हूँ
0: जी,
1: आप लोगों की दुआओं का असर है कि मैं भी बढ़िया हूँ।
0: जी जी जी, वो हमेशा रहेंगे आपके साथ।
1: जी जी जी,
0: तो आज आपके मधुर कंठ से क्या निकलने वाला है?
1: मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता।
0: क्या बात है, मतलब ये फोन स्वतः कैसे डिस्कनेक्ट हो गया भाई? अगर आपकी आपको आवाज़ आ रही हो तो आप प्लीज़ फ़ोन दोबारा कर लें, क्योंकि फ़ोन स्वतः डिस्कनेक्ट हो गया, लगता है कुछ नेटवर्क का इश्यू है। और पुनः फ़ोन आएगा, जी हाँ हमारे साथ।
1: हेलो,
0: लगता है फ़ोन आपसे कट गया क्या?
1: वही मैं देख रहा था, क्यों कट गया?
0: हाँ वही लगता है, आपका कहीं हाथ लग गया होगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको लग रहा है कोई नेटवर्क इशू होगा।
0: हाँ, तो आज आपके मधुर कंठ से निकलने वाला है, क्या बात है? आपकी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती सविता, और आप मुड़ रहे हैं कविता की ओर,
1: तो वही गड़बड़ हो रहा है,
0: तो वहीं पर आप कविता की जगह सविता बोल दीजिएगा।
1: नहीं तो मैं एक बार बोलूंगा, एक बार मैं देखता हूँ कि नोटिस कितना करते हैं।
0: जी हाँ,
1: अरे कम से कम जो फ्यूचर है उसको भी तो कम से कम खराब ना कर दें।
0: हाँ नहीं नहीं, खराब कर ही नहीं सकते,
1: प्रेजेंट को तो मैं चलूंगा लेके, लेकिन फ्यूचर को भी तो कम से कम ध्यान रखना है।
0: हाँ हाँ, ध्यान में रखना है।
1: तो मैं क्या शुरू करूँ?
0: जी जी, निसंदेह।
1: मैं कहीं कभी न बन जा तेरे प्यार, मैं कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार, मैं कविता, मैं कहीं कभी न बन जा तुझे दिल के आईने में, मैंने बार बार देखा तेरी अखियों में, देखा तो झलक का प्यार, देखा तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार, देखा मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। तेरे अंग में लचक है, तेरा रंग तेरे अंग में लचक है, तेरी बात मैं जादू तेरे बोल में खनक है, तेरी हर अदा मोहब्बत तू जमीन की धनक है। मैं कहीं

0: मैं कहीं कभी न बन जाऊं।
1: ये फिर फोन स्वतः ही डिस्कनेक्ट हो गया भाई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मामला क्या है। और भाई मनीष शर्मा जी ने लिखा है हैप्पी दीपेंद्र सिन्हा सर हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ बिल्कुल। काश। हेलो हेलो
2: हेलो।
1: जी हाँ नमस्कार।
2: हाँ भैया नमस्कार
1: जी।
2: अरे मैं चंद्रभान दत्त पांडे बोल रहा हूँ।
1: चंद्रभान दत्त पांडे जी प्रणाम।
2: हाँ भैया तो क्या हाल।
1: आशीर्वाद आशीर्वाद।
2: पहचान लिया।
1: जी जी बिल्कुल पहचान लिया बिल्कुल पहचान लिया। बहुत दिन के बाद आप आए लेकिन।
2: हाँ बहुत दिन। अच्छा दरअसल में क्या है कि रईस भाई जो आजकल गाना ही नहीं सुनते थे।
1: हाँ
2: जब वही खोलते बोलते हैं तो
1: जी।
2: और आप ठीक हैं?
1: जी आपका आशीर्वाद। तो क्या सुन
2: रहे हैं? ये गीत हम भी आपसे प्रस्तुत कर दें।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: क्या मिले से लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए से लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। खुद से ही जो खुद को छुपाए क्या उनसे पहचान करे क्या उनके दामन से लिपटे क्या उनका अरमान करे। खुद से ही जो खुद को छुपाए क्या उनसे पहचान करे क्या उनके दामन से लिपटे क्या उनका अरमान करें। जिनकी आधी नीयत उभरे आधी नीयत छुपी रहे नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। जिनके जुल्म से दुखी है जनता हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करें पेट के भरी सभा। जिनकी आधी नीयत उभरे आधी नीयत छुपी रहे नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। जिनके जुल्म से दुखी है जनता हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करे वो बैठ के भरी सभा में। जिनके जुल्म से दुखी है जनता हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करे बैठ के भरी सभा। दान का चर्चा घर घर पहुँचे लूट की फितरत छुपी रहे नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे असली सूरत छुपी रहे। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं नहीं कभी नहीं। तेरी खातिर मैं तरसा हूँ सर से घर की सानी को राधा एक रतन है साथिया आने जाने को, पत्थर पिघले दिल तेरा न होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। इतनी सदियां बीत गई है आए तुझे समझाने में, मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में, पत्थर पिघले दिल तेरा न होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। धन्यवाद।
1: क्या बात है, बिल्कुल संगम हो जाएगा। और चंद्रभान दत्त पांडे जी, आपसे निवेदन है, कलबद्ध निवेदन है कि बुधवार को चले आया कीजिए। बहुत ही प्यारी आवाज भाई, धर्मेंद्र के ऊपर फिल्माया गया वो गीत, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी असलियत छुपी है।
2: हमसे अच्छे अच्छे लोग आपको प्रस्तुति करके सुनाए, हम किस
1: अरे
2: हम
1: नहीं,
2: नहीं है।
1: देखिए सब अपने आप में, सबका अपने आप में महत्व है, और आपकी आवाज नहीं सुनते,
2: प्यारा प्यारा गीत सुनाया है आपने।
1: अरे नहीं नहीं, मतलब आप सुनिए भी, और हम चाहते हैं कि सुनाइए भी, बहुत दो गीत आपने सुनाए और दोनों बहुत शानदार सुनाए।
2: थैंक यू, धन्यवाद।
1: बहुत सारी तारीफ भी आपकी बटोरी है भाई, दीपांश ने सुपर कहा है, और पूछ रहे कौन
2: है सुना ले आपको
1: जी। और
2: मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। किस्मत तेरे निराली मोचने को चलने वाली, उन खिला तो टूटी डाली, जिसे उल्फत समझ बैठा मेरी नजरों का धोखा था। किसी की क्या खता है, किसी की क्या खता है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज है पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मांगी मोहब्बत तो पाई जुदाई, दुनिया मुझको रास्ता पहले कदम पर हो कर सदा आजाद रहते अनुमान क्या था। मोहब्बत क्या बला है, मोहब्बत क्या बता है। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और क्या बात है, आपने हमको भी गाने पर मजबूर कर दिया, बहुत सुंदर बहुत शानदार। मुकेश जी को भी आपने टच किया भाई, भाई भाई वाह। रफी जी के बाद आपने मुकेश जी को टच किया, बहुत अच्छा लगा। और इनका नाम है श्री चंद्रभान दत्त पांडे जी, लोग आपका नाम पूछ रहे हैं, बताइए। जी हेलो,
3: हाँ नमस्कार जी।
1: अरे दर्द कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: हाँ ठीक है भैया, समय कम है तो शुरू करने आए।
1: समय आपके लिए पर्याप्त है, हम सारी रात बैठे रहेंगे। क्या बात है?
3: अरे अरे ऐसी बात नहीं, और को मौका दिया गया है
1: जी।
3: तो वो छूट गया जो हमको वो बर्थडे वाला जो आपने कहा था कि कोई बर्थडे पर सुनाए
1: जी,
3: तो कुछ ने नहीं सुनाया, तो आपने रिकॉर्ड प्ले कर दिया रफी साहब जी, बहुत अच्छा लगा
1: जी
3: आपने बहुत अच्छा चुना, उनके लिए बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: और आप भी गा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो।
3: अरे नहीं, अब रिकॉर्ड बच गया तो बच गया है, दूसरा जीत फिर कहाँ मिले,
1: वो रिकॉर्ड बच गया
3: तो रह गया। मैं कहीं कभी ना बन जाऊँ, कभी हमने भी गाया था खैर। तो और अभी आपने याद के बारे में बहुत सारे गीत सुनाए थे, मगर एक गीत नहीं बजा था, आज मैं वही सुना रहे जा रहा हूँ
1: जी।
3: तो शुरू करना है
1: जी।
3: वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, आते जागुठी रास्ते हंस दिए, आते जागुठी रास्ते हंस दिए, कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरे झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, लता वो जब याद आए, बहुत याद आए।

0: जलाए बुझाए वो जब याद आए, बहुत याद आए, दिल सुलगने लगा, आँख सुबहने लगे, जाने क्या हमें लोग कहने लगे, मगर रोते रोते हंसी आ गई है, ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए, वो जब याद आए, बहुत याद आए।
1: हेलो,
2: हाँ सुना रहे वो।
0: हम जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई, समझलती रही रोशनी खो गई, कई साज छेड़ा कई गीत गाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। एक बार फिर से, वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई, समझ जलती रही रोशनी खो गई, कई साज छेड़े कई गीत गाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए।
1: क्या बात है भाई, बहुत कोशिश की मगर दिल न भैला, कई राग छेड़े कई गीत गाए, वो जब याद आए। यहाँ बहुत सारे लोगों ने लिखा है भाई, क्या बात है, इतनी खूबसूरत आवाज़ है भाई आपकी। और जी हाँ, राजेश सिंह ने लिखा है भाई, शानदार सिंगिंग। और श्री तेजनारायण शुक्ल ने लिखा है, बहुत ही प्यारा गाया आपने। और क्या बात है भाई, नागेश्वर धाकर जी भी हमारे साथ उपस्थित है। पवन मिश्रा जी ने भाई स्टार्स दे दिए आपको। राजेश सिंह ने कहा भाई गुड सुरेश जी। और दीपांशी जी ने भाई बहुत दिया। मनीष शर्मा जी ने भी बहुत सारे गिफ्ट आपको दे दिए हैं। और इतनी खूबसूरत आवाज़ है भाई, क्या बात है, बहुत प्यारी आवाज़, बहुत प्यारी आवाज़। मनीष शर्मा जी ने दिल दे दिया आपको।
2: थैंक यू

0: सिन्हा जी हैं डायरेक्टर जी,
1: जी
0: उनका जन्मदिन है आज,
1: जी जी
0: तो उनको भी हमारी ओर से, मेरे हस्बैंड की ओर से भूल गए थे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आपके माध्यम से पहुँचे।
1: जी बिल्कुल पहुँचा देंगे भाई।
0: और उन्हीं की देन है कि आप लोग इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं,
1: बिल्कुल
0: खासकर आपका प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा रहता है।
1: अरे नहीं, सबका अच्छा
0: उसके लिए हम लोग अपना समय निकाल के सुनते हैं आपका प्रोग्राम।
1: नहीं नहीं सबका प्रोग्राम अच्छा रहता है, हम आप ही लोगों से सीख कर बोलते हैं।
0: नहीं, आपका जो कार्यक्रम है वो उसी समय हम लोग थोड़ा फ्री रहते हैं उसी समय में,
1: जी।
0: तो ज्यादा मौका मिलता है सुनने का।
1: ये हमारी
0: वैसे तो सभी गीत संगीत सब पसंद आते हैं, कहानी वगैरह।
1: जी
0: तो आज मैं एक मतलब गीत सुनाना चाहूंगी, वो सरस्वती चंद का छोड़ दे सारी दुनिया।
1: हाँ क्या बात है,
0: ठीक है फिर शुरू करें।
1: जी निसंदेह।
0: छोड़ दे

नहीं खुशबू आती रहे, दूर से ही सही सामने हो चमन कोई कम तो।

को संसार में है दे ही बहुत रोशनी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए प्यार से

छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, कितनी हसरत से खिलती है कलियां जहां, उन बहारों को फिर क्यों बुलाते नहीं, उन बहारों को फिर क्यों बुलाते नहीं, एक

0: सबकी खुशी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया, किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, वास्तव में। और ये गीत मेरे पिताजी का सबसे पसंदीदा गीत है।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो इस गीत को बहुत गुनगुनाते हैं, छोड़ दे

0: सारी दुनिया किसी के लिए। ऐसे ज़माने में जिस समय लोग जो है वो आशिकी में आत्महत्या कर रहे थे, तो लता जी का ये गीत आया था और लोगों का नज़रिया बदल गया था मोहब्बत को लेकर। हाँ, मतलब ये लता जी का कहा जाता है कि माइलस्टोन गीत है।
1: बहुत अच्छा प्यारा गीत,
0: बहुत ही प्यारा गीत है और बहुत फिलोसफिकल है और रियलिटी को टच करता हुआ है। बहुत प्यारा गीत सुनाया आपने भाई। मनीष शर्मा जी आपको बहुत सारे स्टार्स दे दिए हैं का बहुत सारा अच्छा है। जितिन सिंह जी हमारे साथ हैं, जी हाँ, प्रबल मिश्रा जी ने भी बहुत अच्छा संदेश दिया है भाई, राजेश सिंह जी और सभी ने तारीफ की है भाई, बहुत प्यारा गीत आपने गाया।
1: सभी को बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, वास्तव में बहुत प्यारा गीत।
1: ठीक है,
0: अच्छा क्षण स्पर्श। हेलो,
2: अरे शुभ संध्या मनु जी।
0: अरे क्षण स्पर्श,
2: अरे बहुत बहुत आशीर्वाद।
0: अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं श्री तेज नारायण शुक्ला जी से बात कर रहा हूँ।
2: जी जी जी, और आप कैसे हैं आप?
0: आशीर्वाद, आशीर्वाद आपका।
2: असल में मैं लगातार सुनता हूँ तो मैंने कहा कि अपनी उपस्थिति मैं दर्ज करा दूँ दो चार लाइनों में। आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है।
0: जी जी, आप लोग का आशीर्वाद।
2: और बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिले हैं और अभी मैं तो मैं सुन रहा था। मैंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जो आपका रजिस्टर है उसमें मेरा नाम कहीं गुम हो जाए, तो इससे बेहतर है कि
0: आपका नाम हमारे हृदय के रजिस्टर पर लिखा हुआ है जो नहीं गुम होगा।
2: जी, तो बहुत छोटा सा चार छह पंक्तियां सुना करके थोड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ मैं।
0: जी जी
2: जी जी, तो शुरू करूं मैं?
0: जी निसंदेह।
2: यहाँ यहाँ अकीदत से पैर रखो, यहाँ यहाँ अकीदत से पैर रखो, ये मलंगो आस्थानों का शहर है। यहाँ अकीदत से पैर रखो, ये मलंगो आस्थानों का शहर है। किसे परवाह यहाँ किसकी, ये दीवानों का शहर है। किसे परवाह यहाँ किसकी, ये दीवानों का शहर है। यहाँ यहाँ गुफ्तगू भी सरगोशियों में करो, यहाँ गुफ्तगू भी सरगोशियों में करो, ये अफसानों का शहर है। यहाँ गुफ्तगू भी सरगोशियों में करो, ये अफसानों का शहर है। रिंद मिलते हैं यहाँ हर गलियों में, रिंद मिलते हैं यहाँ हर गलियों में, ये पैमानों का शहर है। और अपनों में और आस्तीनों में मिलते हैं सांप यहाँ, आस्तीनों में भी मिलते हैं सांप यहाँ, ये इंसानों का शहर है। अपनों में भी अपनों में मिलते हैं बेगाने ही यहाँ, ये इंसानों का शहर है, ये इंसानों का शहर है। जी जी जी जी मनु जी, धन्यवाद।
0: अरे वाह, क्या मतलब, क्या शानदार प्रस्तुति भाई, क्या मतलब, छोटी पंक्तियों में आज आप हमको देख कर हमको बिहारी याद आ गए। देखन में छोटन लगे घाव कदे गंभीर।
2: अरे इतना बड़ा मत बनाइए आप, बस ऐसे ही आप लोगों के बीच में।
0: नहीं नहीं, लेकिन आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है, ये वास्तविकता है।
2: जी मनु जी, अब अगले बार अब बुधवार को कुछ मैं गाना भी सुनाऊंगा। आज तो समय हो चुका है और इधर सुन ही रहा था मैं, थोड़ी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा थोड़ा मतलब जेहन में कम से कम नाम तो सबके,
0: आपका नाम हमारे हृदय तल पर अंकित है।
2: अरे बहुत
0: आपका आशीर्वाद है बस।
2: जी मनु जी,
0: अच्छा क्षण स्पर्श।
2: अरे बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभ रात्रि।
0: शुभ जी भाई, तो घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहेगा, प्रसन्न रहेगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल 1 बजे आपसे मुलाकात होगी ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

0: ग्वालियर के पास ही एक कस्बे में राधा नाम की एक लड़की रहती थी, जिसका नाम इस छोटे से कस्बे में हर किसी की जबान पर था। राधा की बेजोड़ लगन और पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि ने राधा को उस छोटे से कस्बे में एक मिसाल बना दिया था। लड़कियां तो क्या, लड़कों के माँ बाप भी अपने बच्चों को राधा का उदाहरण देकर उन्हें पढ़ने के लिए हौसला देते थे। स्कूल में हमेशा अव्वल रहने वाली राधा जैसे हर विषय को पूरी तरह समझना चाहती थी। पढ़ना न सिर्फ उसकी मजबूरी बल्कि उसका जुनून था। वो हर शब्द को जैसे जैसे जीना चाहती थी। जिज्ञासा से भरपूर राधा अपने स्कूल में हर टीचर की फेवरेट थी, पर सिर्फ एक पढ़ाई ही नहीं थी जिसने राधा को पूरे गांव में लोकप्रिय होने के साथ साथ सबका प्रिय बना दिया था। इसकी सबसे बड़ी वजह राधा का हेल्पिंग नेचर था। गांव का हर स्टूडेंट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लड़का हो या लड़की, हर सवाल राधा से होकर गुजरता था। अपने आसपास रह रहे हर बच्चे का राधा को जैसे खुद ख्याल रहता था। वो खुद उनके पास जाकर पढ़ाई में उनकी मदद करती थी। राधा के लिए जैसे पूरा गांव उसका परिवार था और गांव के हर परिवार का हिस्सा थी राधा। स्कूल में पहली क्लास से अव्वल रहने वाली राधा ने जब पूरे जिले में 12th बोर्ड में टॉप किया तो जैसे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गांव के सरपंच ने सबके सामने राधा को सराहा। सरकार ने भी राधा को पढ़ाई में मदद करने की घोषणा की। अब राधा को अपने डॉक्टर बनने का सपना सच होता नजर आ रहा था। मेहनत से राधा ने कभी मुंह नहीं मोड़ा था, लेकिन उसके और उसकी पढ़ाई के बीच सबसे बड़ा कांटा पैसा था। तीन बहनों में सबसे बड़ी थी राधा। राधा के पिता, जिनके पास सालों से टीबी से जूझ रही राधा की मां की दवाइयों तक के पैसे ना थे, वो भला राधा के डॉक्टर बनने का खर्चा कैसे उठाते। ऊपर से राधा की बहनों की पढ़ाई का खर्चा, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा राधा खुद गांव में ट्यूशंस पढ़ाकर पूरा करती थी। पर राधा ने बचपन से ही अपनी किस्मत खुद अपनी मेहनत की कलम से लिखने की ठानी थी और आज उसने वो कर दिखाया था। आज राधा का गांव में आखिरी दिन था। वो पीएमटी की तैयारी के लिए ग्वालियर आ रही थी, जिसका ज्यादातर खर्चा सरकार ने उठाया था। और ग्वालियर में राधा का वो पहला कदम अपने सपनों को पूरा करने की ओर, पहला कदम अपने परिवार को उस गरीबी के दलदल से निकालने की ओर। राधा पर जैसे उसके पूरे गांव की निगाह टिकी थी। राधा का डॉक्टर बनने का सपना अब सिर्फ राधा की आंखें नहीं, उसके गांव के हर व्यक्ति का सपना था। गांव के मंदिरों मस्जिदों में राधा के डॉक्टर बनने की दुआ जैसे खुद ब खुद शामिल हो जाती। राधा जब ग्वालियर में रहकर पीएमटी यानी अपने डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी तो उसके हॉस्टल की बहुत ही कम लड़कियां उसे पसंद करती थी। और लड़कियों की तरह ना तो वो यहां वहां घूमने जाया करती और ना ही किताबें पढ़ने के अलावा उसके कोई और शौक थे। फैशन के नाम पर थी तो सिर्फ माथे पर छोटी सी बिंदी और पैरों में पायल। जब राधा रात में कॉरिडोर में टहलकर पढ़ा करती थी तो रात के सन्नाटे में उसकी आवाज एक अजीब सी हलचल पैदा करती थी, जिसकी वजह से कॉरिडोर के पास बने कमरे में सोती लड़कियों की नींद टूट जाती। जब लड़कियां उसे रात में एक जगह बैठकर पढ़ने को कहती तो राधा का जवाब होता, रात में एक जगह बैठकर पढ़ने से नींद आती है। राधा कई रात और दिन यूं ही पढ़ती रहती थी। शायद यही वजह रही कि धीरे धीरे गांव की तरह यहां भी राधा की लगन और मेहनत की रोशनी से कोई बच नहीं पाया। जब भी हॉस्टल की लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता या कॉलेज का कोई लेक्चर वो मिस कर देती तो राधा उनकी मदद करती। अब राधा के रात में टहल के पढ़ने से भी किसी को कोई एतराज ना था। लोग जैसे उसकी दिनचर्या में घुल गए थे।
1: एक्चुअली राधा वॉज माई रूममेट, पढ़ाई के प्रति उसके जैसी लगन मैंने आज तक कभी किसी में नहीं देखी। हम सारे पढ़ते थे पर कभी मूवी देखने के बहाने, कभी इधर घूमना, कभी उधर घूमना, कभी बाड़े जाने के बहाने हम अपने घंटे और दिन वेस्ट करते रहते थे। पर राधा को मैंने कभी भी अपना दिन का एक घंटा क्या एक मिनट भी वेस्ट करते हुए नहीं देखा। उसके लिए उसकी पढ़ाई सब कुछ थी।
0: पीएमटी के एग्जाम का दिन जैसे जैसे नजदीक आया, राधा की टेंशन का पारा और बढ़ता गया। खुद अपने सपने के साथ साथ परिवार, टीचर्स और गांव की ख्वाहिशों के बोझ के तले राधा जैसे दबती चली जा रही थी। कई दिनों तक बिना खाए पिए लगातार पढ़ती रहती। भूख प्यास तो जैसे उसने पुड़िया बांधकर फेंकती थी। हंसी मजाक तो क्या, डॉक्टर बनने के सपने ने जैसे राधा की आवाज छीन ली थी। राधा की नींद जैसे खुद ब खुद रात को 3 बजे खुल जाती। वो कॉरिडोर की लाइट जलाती और वहां टहलकर पढ़ती रहती। उसकी इस आदत को देख हॉस्टल की कई लड़कियों ने राधा को कहा कि वो उन्हें भी सुबह 4 बजे पढ़ने के लिए उठा दिया करे। फिर तो ये नियम जैसे राधा की सांस लेने की तरह पक्का हो गया। रोज सुबह 3 बजे उसका उठना, कॉरिडोर की लाइट जलाना, 1 घंटे तक खुद टहल कर पढ़ना और 4 बजे जिन लड़कियों ने उसे उठने की कही थी उनके दरवाजे पर दस्तक देकर उन्हें उठाना।
2: नेहा, नेहा, नेहा, उठो, पढ़ना नहीं है क्या? उठो।
1: मुझे ऐसा कोई भी दिन याद नहीं जब राधा खुद 3 बजे ना उठी हो और उसने हमें सुबह सुबह 4 बजे जगाना मिस कर दिया हो। रोज सुबह 4 बजे हमारे दरवाजों पे दस्तक होती थी और राधा की आवाज आती थी, सब लोग उठो, 4 बज गए, पढ़ना नहीं है क्या? वो हर रोज हमें इसी तरह से आवाज देकर उठाती थी। कभी कभी हम उसे मजाक में अलार्म क्लॉक भी बुलाते थे, पर वो बहुत स्वीट थी। उसने कभी हमारे किसी मजाक का बुरा नहीं माना। और फिर आया वो मनहूस दिन।
0: राधा ये कभी नहीं भूलती थी, जैसे उन सब के नंबर उसके नंबर्स में जुड़ने वाले हों। पर ये बात आज की नहीं थी, राधा बचपन से ही ऐसी थी। हर किसी की मदद करना जैसे उसके संस्कारों में था। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और आखिरकार एग्जाम्स के दिन आ गए। पूरे हॉस्टल में पढ़ाई का आलम छा चुका था, पर इसका सबसे गहरा असर राधा पर था। वो दुनिया से जैसे कट चुकी थी। दिन रात बस किताबों में रहती, किसी से कोई बातचीत नहीं। पर रोज सुबह 4 बजे सभी को उठाना वो कभी मिस नहीं करती थी।
2: ओ, पढ़ना नहीं है क्या? उठो, ओ, पढ़ना नहीं है क्या?
0: और फाइनली वो दिन आया जब पीएमटी का रिजल्ट आना था। एग्जाम और रिजल्ट्स के बीच के दिन वैसे तो हर स्टूडेंट के लिए भारी होते हैं, पर राधा के लिए ये इतने भारी साबित हुए कि वो इनका बोझ सह नहीं सकी। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ दूसरों की उम्मीदों का होता है, और यहां तो राधा के गांव वाले, उसका परिवार, दोस्तों और टीचर्स ने जैसे राधा को खुद की उम्मीद और आशाओं के तले रौंद दिया। रिजल्ट अच्छा ना आने का डर राधा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर धोखे से भी वो नाकामयाब हुई तो ये उसके लिए किसी श्राप से कम ना होगा। और आखिरकार जो हुआ, उसने ना सिर्फ राधा बल्कि उसके आसपास के कई लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। आंसुओं और चीखों से राधा का सारा हॉस्टल और गांव गूंज उठा। लोगों की उम्मीद के तले दबी बेचारी राधा खुद अपनी उम्मीदों तक पे खरी ना उतर सकी। जिस कमरे की छत को तकते हुए राधा डॉक्टर बनने के सपने अपनी आंखों में बुना करती थी, रिजल्ट अच्छा ना आने की वजह से उसी छत के पंखे पर लटककर उसने अपनी जान दे दी।

राधा का शरीर तो आग की लपटों में ध्वस्त हो गया, पर शायद राधा की रूह वो हॉस्टल छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं थी। राधा की मौत की वजह से हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ था, वो भी ऐसा सन्नाटा कि छत से टपकते पानी की बूंद की गूंज भी सारे हॉस्टल में साफ सुनाई दे रही थी। उस दिन हवा भी जैसे राधा के जाने का गम मना रही थी। सभी नींद में थे। कि तभी राधा की रूममेट को हॉस्टल के कॉरिडोर में पायल की छनछन सुनाई दी। वो कभी तेज होती तो कभी धीरे। ये बिल्कुल उसी तरह की आवाज थी जब राधा रात में उठकर पढ़ा करती थी। राधा की रूममेट नेहा ने सोचा शायद राधा पढ़ने उठी होगी, और दूसरे ही पल वो कांप उठी। उसके जहन में तुरंत ये बात आई कि राधा कैसे, कल ही तो राधा

0: मुझे आज तक वो आवाज याद है, आज तक मेरे कानों में वो आवाज गूंजती है। पायल की उस आवाज के साथ मैंने कई साल गुजारे हैं। मैं उन्हें पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। कदमों की वो सधी हुई आहट, वो पायल की छन छन, बिल्कुल वही थी जैसी राधा के मरने से पहले जब वो पढ़ाई करती थी सुबह सुबह तब आती थी।
1: नेहा की दिल की धड़कनें उस तेज होती पायल की आवाज के साथ बढ़ती जाती। उसने थोड़ी हिम्मत की और खिड़की से जैसे ही बाहर झांका, आगे का नजारा वो देख ना सकी और वापस उसने चादर से अपना मुंह ढक लिया।

कॉरिडोर की लाइट्स जल रही थी और वो कुर्सी जिसे राधा कमरे से ले जाकर बाहर कॉरिडोर में रखकर पड़ा करती थी, वो कमरे की जगह कॉरिडोर में थी। और पायल की वो आवाज, वो बुरी तरह डर गई और बिस्तर से उठना उसके लिए मुमकिन न था। उसने अपनी बगल वाली रूममेट्स को आवाज दी, पर वहां से पलटकर कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल मानो जैसे धड़कना बंद सा हो गया, पर पायल की आवाज नहीं, वो उसी तरह आ रही थी जैसे राधा अब भी वहां टहल रही हो। उसे महसूस हुआ जैसे राधा अब भी इस हॉस्टल में हो और बाहर कॉरिडोर में टहल रही हो। बीच बीच में उसे कुर्सी पर किसी के बैठने और उठने की आवाज आती, ठीक उसी तरह जब राधा कॉरिडोर में पड़ते हुए कुर्सी पर कुछ पल आराम करती थी। ये सिलसिला तकरीबन एक घंटे चला। नेहा का डर से बुरा हाल था। जिस राधा के पास होने का एहसास उसे सबसे अच्छा लगता था, राधा की मौत के बाद उसके होने के एहसास ने उसे भीतर तक डर और खौफ से भर दिया था। पर यह तो बस शुरुआत थी। सुबह के 4 बजते ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जिसकी आवाज सुनकर उसका कलेजा मुंह में आ गया।

ये राधा ही थी, यानी उसकी रूह, उसकी रूह। वो समझ गई थी कि राधा की आत्मा अब भी यही है, जो ये हॉस्टल छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं थी। नेहा की खुद की रूह भी दहशत में थी। उसने फिर हिम्मत करके वार्डन को आवाज देनी चाही। अपनी पूरी ताकत समेट कर वो कुछ बोलने ही वाली थी कि एक आवाज ने जैसे उसकी आवाज को वापस उसकी हालत में धकेल दिया।

0: The Haunted Place।
1: सोचिए, अगर आप देर रात एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं और आपसे सफेद साड़ी में एक औरत रास्ते में लिफ्ट मांगती है। जैसे ही आप उसे लिफ्ट देने के लिए अपनी गाड़ी रोकते हैं तो वो औरत पलक झपकते ही गुम हो जाती है। आप इसे अपना कोई भ्रम समझते हैं और अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए चल पड़ते हैं, पर जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के कांच पर पड़ती है, आप उसी औरत को अपनी पिछली सीट पर बैठा पाते हैं। मान लीजिए इसके उलट आप रास्ते पर उस औरत को देखकर रुकने की जगह डर से गाड़ी की स्पीड दुगनी कर लेते हैं और 100 से ऊपर की स्पीड में अपनी कार भगाते हुए डर से भीगे अपने माथे पर पसीने की बूंदें पहुंच ही रहे होते हैं कि खिड़की के बाहर आप उसी औरत को अपनी कार के साथ चलता पाते हैं। सौ के ऊपर की स्पीड के साथ किसी औरत का यूं आराम से चलना नॉर्मल तो कतई नहीं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि दिल्ली कैंट के हाईवे पर होते हादसों की एक बहुत बड़ी वजह है। यहां के स्थानीय लोग डरते हुए उस औरत के बारे में बताते हैं जिसे उन्होंने अक्सर देर रात दिल्ली कैंट के रास्तों में बैठा हुआ तो कभी लोगों से लिफ्ट मांगते हुए देखा है। सफेद साड़ी पहने धुंधली सी छवि वाली ये औरत अक्सर दिल्ली कैंट के रास्तों पर होते हादसों की वजह बनी है, पर यहां के लोगों का यह भी कहना है कि बहुत साल पहले ये खुद सड़क के किनारे किसी तेज गाड़ी का शिकार हुई थी, तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। वो ना वहां से जा पाती है और ना चैन से वहां रह पा रही है। ये कितना सच है और कितना झूठ ये तो हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि उसकी वजह से दिल्ली कैंट का रास्ता एक हॉन्टेड प्लेस बना हुआ है।
0: The Haunted Night। डर और खौफ से जुड़ी कुछ कहानियां और सच्चे अनुभव।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। यार सुन, कभी सोचा है जिंदगी में अगर गाने ना होते तो दोस्ती कैसे जताते?
1: वैसे ही जैसे बिना चाय के बिस्कुट, काम तो चल जाता पर मजा नहीं आता।
0: बात तो ये भी सही है। तो तुम्हें पता है कि आज हम इकट्ठा हुए हैं, क्यों हुए हैं?
1: हाँ पता तो है।
0: अरे इसमें बताने की कौन सी बात है, इतने दिन बाद आई हो, मिले हैं। हाँ। और हमारे श्रोता अगर इस बात से रूबरू नहीं होंगे कि भैया जो हमारी एनर्जी आप अक्सर सुनते हैं, फील करते हैं, वो आई कहाँ से है? और कहीं ना कहीं आपकी भी लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा होगा।
1: तो एक चीज ये फाइनल हो गई कि तुमसे शुरू तुम पे खत्म है सारी दोस्ती, ये बात मेरे दिल से है। और ऐसी दोस्त बहुत रेयर मिलते हैं, और जो जिसके पास भी दोस्त हैं, कृपया करके वो दोस्त अपने अपने को संभाल के रखे, खोए ना। अगर कोई पूछे कि डायमंड कहाँ मिलता है या दोस्त कहाँ मिलता है, वो ऐसा कोई नायाब हीरा कहाँ मिलता है, तो वो सुनार के दुकान पे नहीं मिल सकता वो डायमंड, वो मेरे दोस्त के नज़र में मिल सकता है।
0: हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि हमारी सखी यानी हमारी मित्रानी के एहसासों का आपने सुना, तो इनका नाम भी है आरजे एहसास। भाई आज अनोखी के साथ में एहसास आई है, तो बात तो कुछ खास होने वाली है। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो भूले बिसरे गीत, जहाँ पे हम बात करते हैं उन नगमों को, उन किस्सों कहानियों को, उन संगीतकारों को जिनको हम कहीं धुंध में खोए हैं। लेकिन आज हम अपनी सखी के साथ में बैठे हुए हैं, तो भाई गुफ्तगू भी गहराइयों वाली होगी। तो इसी के बीच में मुझे गाना याद आया यार।
1: जी बिल्कुल, फरमाइए।
0: गाना है कि खास हम आपके लिए है।
1: जी बिल्कुल।
0: ए यार सुन, यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। इतनी प्यारी है मेरी सखी,
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त।
0: और इनके एहसास ने कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन दिया। जब भी मैं गिरी, जब भी मैं लड़खड़ाई, इन्होंने मेरे हाथों को थाम लिया, मेरे कदम को लड़खड़ाने नहीं दिया। उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया।
1: आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, आप भी किसी नायाब हीरे से कम नहीं है।
0: माय गॉड, मैं तो शर्माने लगी। फिलहाल भाई ये जो गाना है वो है शान मूवी से, जो आई थी 1980 में, और गायक मोहम्मद रफी साहब और गीतकार है आनंद बख्शी।
1: आनंद बख्शी ने ये गीत उस दोस्त के नाम लिखा है जो मुश्किल वक्त में बिना बुलाए साथ खड़े होते हैं। सपोज दैट, सीधी सी बात ये है कि दोस्त वो नहीं कि जो पैसे के उससे आए या पैसे खिलाए तो आए, दोस्त वो कि इंसान उस दोस्त का चेहरा देख के उसकी परेशानी उसकी आवाज़ से जो पहचान जाए। मैं जिसके साथ बैठी हूँ आज, वो मेरी बहुत करीबी दोस्त है, बहुत खास दोस्तों में से एक है। तो ये चीज़ उसमें कही गई है, आनंद बख्शी ने कहा है कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो बिना बुलाए साथ खड़े हों।
0: और ये गाना कोई दोस्ती का इकरारनामा है
1: जी,
0: जहाँ दोस्त जिंदगी से भी ऊपर है। क्यों? बेशक बेशक बेशक, ये हमारी मुस्कान आप समझ गए होंगे कि हम दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है, और माशाल्लाह ऊपर वाला ऐसे ही से नवाजे रहे।
1: जी बिल्कुल।
0: यार ये लाइन सुनते ही लगता है कि कुछ रिश्ते खून से नहीं वक्त से बनते हैं।
1: जी बिल्कुल बनते हैं। हाँ यार, और निभाते ही खामोशी से।

0: तो भाई आज का आपका जो शो चल रहा है वो स्पेशली डेडिकेट है हमारी यानी आपकी आरजे एहसास को, और ये हमारे बीच में आई हैं। तो भैया ये आई हैं मुंबई से, तो जो नेक्स्ट वाला नगमा मैंने चुना है वो हमारी मोहतरमा को फुल ऑन डेडिकेट है। नगमे के बोल हैं, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, दिन को खाओ पियो, रात को आराम करो। जी हाँ, फिल्म है अमीर, और जब दोस्ती की बात आती है ना तो अमीरी गरीबी साइड में रह जाती है, सबसे ऊपर हमारा दोस्त ही होता है, चाहे वो नकचढ़ा हो, चाहे वो झंझटी हो, चाहे वो कितना भी लुत्फनकार हो। और हमारी ये जो मोहतरमा है ये तो हमारी, हम बोलेंगे कि हमारी लाइफ की कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मर है।
1: जैसे बहुत सारी बातें हमारी मित्र ने बताया मुझे कि इतनी तारीफ आज तक किसी ने घर वालों ने नहीं की, लेकिन दोस्ती होती ऐसी नायाब तोहफा है, सभी के पास होना चाहिए। उसी तरह से एक छोटी सी लाइन है, ये गीत उस दोस्त के लिए है जो दूसरे शहर से आया और पूरा मोहल्ला खुश हो जाए। गीतकार ने दोस्ती को त्योहार बना दिया, मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि वो दोस्त जो दूर का रिश्ता है, लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत लोग रहते भी हैं, बहुत लोग का रिलेशन भी रहता है और कुछ दोस्ती का भी रिश्ता रहता है, यानी कि दूर हो गए तो दोस्ती खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो जो दोस्त आता है उसके स्पेशली, आप जान लीजिए स्पेशली मैं इनसे मिलने आई हूँ, और यही चीज इसमें बताया गया है कि अगर दोस्त आए, समझ लो ईद हो गई, सबसे बड़ा त्यौहार हमारा मनाया जाता है ईद, तो दोस्त जब मिलते हैं हम लोग तो किसी ईद के त्यौहार से कम नहीं होता।
0: बेशक, और मेरे लिए तो वो जगह ही इबादत हो जाती है जहाँ पे इनके कदम पड़ जाते हैं। भाई क्या बोले, दिल से सजदा करते हैं हम अपने।
1: इस लायक आपने समझा, तहे दिल से शुक्रिया आपका।
0: ऐसे आपका नाम एहसास नहीं रखा है
1: जी, बिल्कुल।
0: हाँ जी, तो जब दोस्त आता है ना यार तो घर छोटा पड़ जाता है पर दिल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है।
1: हाँ।
0: क्यों?
1: और नींद?
0: और नींद की तो बात ही मत करो, वो तो आती ही नहीं है। फिलहाल बढ़ते हैं इसी नगमे की ओर और आते हैं फिर एक और प्यारी सी कहानी किस्से के साथ में, अपने प्यारी सखी यानी एहसास के साथ में।

0: छोड़ेंगे। बिल्कुल, और हमने तो भैया फिक्स कर लिया इस जन्म के लिए, तो इनफ है या अगले जन्म भी रहना है?
1: हमेशा, जितना भी जन्म हो आपके साथ।
0: ओह माय गॉड, तो ये दोस्ती
1: ऐसे
0: तो वाकई
1: दोस्त मिले।
0: मैं खुद भी इतना ही चाहती हूँ और हमारी दोस्ती यूं ही बरकरार रहे। और आप सब भी, अगर आपकी लाइफ में भी कोई दोस्त हो तो उसको ये सॉन्ग डेडिकेट करने में बिल्कुल देरी मत करिएगा। और हमने ना जाने कितनी दफा इनको ये वाला गाना डेडिकेट किया, और आज की तो पूरी पूरी प्ले लिस्ट ही हमारी प्यारी सखी यानी आपकी अपनी आरजे एहसास के नाम है। ये जो गाना है वो है शोले मूवी से, जो की आई थी 1975 में, और गायक हैं किशोर कुमार और मन्ना डे, गीतकार हैं आनंद बख्शी साहब।
1: जैसा कि आज लगता है कि पूरी किताब लिख देंगी हमारे जो मित्र हैं, इतना सम्मान मिला है मुझे, और ये जो हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई आज से। गहरी तो थी शुरू से ही, लेकिन आज कुछ ज्यादा गहरी हो गई।
0: एहसासों पे एक बार फिर से हवा लहरा गई है, और
1: जितनी भी पुरानी बातें सब ताजा हो रही हैं।
0: बिल्कुल
1: जी। जैसे यार जय वीरू की दोस्ती सिर्फ पर्दे पर नहीं थी, ये हर उस दोस्त की कहानी थी जहाँ हालात टूट जाए पर हाथ नहीं छूटे। इसमें ये डेडिकेट किया गया, बताया गया है कि कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी परेशानी आ जाए, या दोस्त अमीर हो जाए या दोस्त गरीब हो जाए, साथ नहीं छोड़ना चाहिए, वही दोस्ती सच्ची होती है।
0: मतलब ये गाना नहीं वादा है,
1: वादा है जो मौत तक साथ चलने की हिम्मत देता है।
0: बिल्कुल, तो चलिए फिर इसी गाने को सुन लेते हैं
1: जी। बिल्कुल।

तो दोस्तों आज आप जो सुन रहे हैं वो आपका ही शो है जिसका नाम है भूले बिसरे गीत। बस अंतर इतना हो गया कि आज आपकी आरजे अनोखी के साथ में उनकी जिगर, उनकी दोस्त, उनकी जान, उनकी जाने बहारा यानी आरजे एहसास उनके साथ जुड़ गई हैं और आप लुत्फ उठा रहे हैं आज के प्लेलिस्ट का जो कि दोस्ती पर पूरी तरह से फोकस्ड है। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सॉन्ग की ओर जो है या

0: हम कुछ भी करेंगे जान तो क्या ईमान भी देंगे। बहुत ही प्यारा सा नगमा है दोस्तों, जो कि है याराना मूवी से, जो आई थी 1981 में। आवाज से सजाई से किशोर कुमार साहब ने और गीतकार है आनंद बख्शी साहब।
1: किशोर दा ने इस गाने को गाया नहीं है, जिया है। क्यों जिया है? क्योंकि दोस्तों में ही जिंदगी छुपी होती है, समझ जाए आप सबको।
0: और ये गाना बताता है कि दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती। क्यों
1: जी? जी बिल्कुल, कोई शर्त नहीं होती, कोई शर्त है ही नहीं, कोई बना ही नहीं कोई शर्त दोस्ती के लिए।
0: बस खाली निभाना होता है
1: दिल से। वो
0: चलिए तो फिर चलते हैं हम भी इस नगमे की ओर।

0: अब आते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की ओर, जो कि है भोले ओ भोले मेरे यार को मिला दे वो प्यार फिर जगा दे। ऐसा होता है ना कई दफा कि हमारा दोस्त अगर हमसे रूठ जाता है तो हम उसको मनाने के लिए सीधे ऊपर वाले से प्रे करने लगते हैं। कई दफा आपकी भी लाइफ में हुआ होगा, क्यों ऐसा?
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा, मैं आपसे कभी नाराज हुई थी?
1: हाँ हुई होगी, बट मेरी बात है ऐसी कि आप मान जाती है फौरन।
0: ओह माय गॉड, ये वाला जो पोर्शन है ना, आप लोग भी सोचते होंगे कई दफा कि मतलब मैं सेल्फ मोटिवेट कैसे होती हूँ, तो मैंने इन्हीं से सीखा है, मतलब खुद की तारीफ खुद ही कर लेने का, नो लपड़ा नो झंझट।
1: नहीं, मैं यही भी कहना चाहती हूँ यही कि अपनी तारीफ जब तक खुद से आप नहीं करोगे तब तक आप मोटिवेट नहीं होगे, होना चाहिए, करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही। और आपकी पता है एक पंक्ति है जो हमारे किसी और खास मित्र को की जुबान पे रखी हुई है कि भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत हमसे करें। तो ये वाला फंडा भी भैया हमने अपनी लाइफ में बहुत अपनाया है। भाई इतनी प्यारी सखी हो और एक जन्म तो क्या, इनके लिए जितने भी जन्म हो वो कम पड़ेंगे, हमें तो यही फील होता है। और इस गाने में दोस्त के लिए भगवान से दुआ कर रहा है एक दोस्त अपने दोस्त के लिए, ऐसी दोस्ती जहां अपना सुख पीछे और दोस्त की खुशी आगे होती, यही तो है दोस्ती। तो हाँ। चलिए फिर बढ़ते हैं इस दोस्ती की ओर।
1: देखो आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तो मित्र इकट्ठा हुए अपनी दिल की बातें करने के लिए, तो इससे अच्छा मौका नहीं था। और मैं इस बात से अनजान थी कि मतलब जो हमारी मैम है, इस अनोखी मैम जो इस लायक हमें समझी, लेकिन ये अब और भी ज्यादा मेरे लिए खुशी का जरिया जिसको मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में। और इतनी अच्छी अच्छी लाइन मेरे लिए ढूंढ के रखी, इतने प्यारे से बोल इनके हैं और इतनी तारीफें, मतलब इसमें बताया गया है कि आप अपने सुख दुख को भूल जाते हो अगर दोस्त मिल जाए तो।
0: बिल्कुल, और मैं क्या ही बोलूं, हम दोनों एक दूसरे के ऐसे ही तारीफ करते हैं फोन पे भी, आप लगी रहा होगा आपको सुन। तो भाई जहाँ पे ऐसी तारीफों के पुल आपके लिए बांधे जाए, समझ लीजिए वो फुल टाइम फिक्स हो गया ही है आपकी दोस्ती, और ये बॉन्ड कभी तोड़िएगा नहीं। अगर आपको भी हेल्दी रहना है तो भैया ऐसी वाली दोस्ती कहीं ना कहीं खोज ही लीजिए, मैं तो यही कहती। चलिए फिर बढ़ते हैं इसी वाले नगमे की ओर।

0: अब उस गाने की बात करेंगे जो कि है, जब हम जैसे दो हैं और हम जैसे दो और मिल जाए, मतलब चार यार मिल जाए, तो वही रात दो गुजार।
1: हाँ,
0: रात दो गुजार या फिर रात हो गुजार।
1: क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ। देखो, मैंने दोस्तों में दुनिया देखी है। हाँ। अगर दोस्त साथ हो तो न रात हो न दिन।
0: क्या बात है भैया, मतलब रात और दिन साइड कर दीजिए और गुलजार हाँ। भी साइड कर दीजिए, बस दुनिया और दुनिया और दुनिया और दोस्त। हाँ।
1: जी,
0: क्या बात है। तो भैया, ये जो नगमा है वो है मूवी नमक हलाल से, जो आई थी 1982 में, और किशोर दा की आवाज में और आनंद बख्शी साहब के बोल। और इस गीत को लिखते वक्त आनंद बख्शी ने कहा था, चार दोस्त और सच्ची हंसी महंगी शराब से ज्यादा नशा देती है, क्यों मोहतरमा?
1: हाँ, बिल्कुल, इससे मैं सहमत हूँ, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि शराब तो कुछ पल का नशा है। शराब कुछ पल का नशा, जब तक आप पीते हो और उतर भी जाता है। दोस्ती का ऐसा नशा है जो कभी नहीं उतरता।
0: जी हाँ, और अगर आसपास आपके दोस्त का होना, मतलब आप एहसास कर रहे हो
1: जी,
0: तो भाई फिर मन करता है सबको छोड़ के बस दोस्ती में ही रम जाएं, जैसा कि भगवान की भक्ति।
1: जी जी, बिल्कुल,
0: इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हम तो भाई इनकी सजदा करते हैं, इनके लिए इबादत करते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं इसी नगमे की ओर और फिर आते हैं अपनी एक और प्यारी से सॉन्ग के साथ।

के लाले बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली चूहा आगे आ।

like drunkard husband, fighter wife. बीवी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े, अरे झगड़े.

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उलपत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उलपत जीती लुटी खुशी पे।

डूब गए, प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जहां चारिया

0: तो दोस्तों आज आप एंजॉय कर रहे हैं दोस्ती को मेरे यानी आपकी अपनी आरजे अनोखी के साथ में और उनकी प्यारी सखी यानी आरजे एहसास के साथ में। बढ़ते हैं एक और गीत की ओर जो कि है यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। जी हाँ, गीतकार है प्राण और इन्हीं पर फिल्माया गया ये नगमा भी है। फिल्म का नाम है जंजीर जो आई थी 1973 में और गायक है मन्ना डे साहब।
1: जैसे कि इतने अच्छे अच्छे लाइन इतने अच्छे अच्छे गाने मुझे पेश कर रही हैं तो अनोखी जी ने बताया है, बहुत अच्छी अच्छी लाइन बताई है, गाने बहुत अच्छे अच्छे मेरे पर डेडिकेट किया है। ये गाना दोस्ती को धर्म कहते हैं, जहाँ दोस्ती निभाते हैं इबादत जैसा होता है। बिल्कुल सही लाइन है कि दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो किसी इबादत से बढ़ के अगर ईमानदारी और सच्चाई से निभाई जाए।
0: बिल्कुल, तो भाई बहुत ही गहराई की बात कह दी है हमारी एहसास जी ने और इसीलिए हमने इनका नाम भी एहसास रखा हुआ है। फिलहाल बढ़ते हैं इसी नगमे की ओर और आते हैं नेक्स्ट नगमे के साथ।
1: इसी साथ मैं कहना चाहूंगी कि जो अनोखी हैं तो ये सच में अनोखी हैं। आप ले जान के चलिए, दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा बना ही नहीं है कि इनसे हेलो उनका सुनते ही फोन पे मेरी खुशी, मेरी हंसी, मेरे दिल का सुकून, करार सब मिल जाता है मुझे और अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, और इस हंसी और इन सारी चीजों को भैया इनके जज्बात जो हैं, जो एहसास हैं आज हमारी मैडम एहसास के, वो उमड़ घुमड़ के आ रहे हैं तो एक गाने के माध्यम से हम इसको बांधना चाहेंगे। गाना है एहसास।

0: है दोस्तों।
1: क्या बात है भाई। फिल्म है गुलजार और आवाज से सजाई से मोहम्मद रफी साहब ने।
0: यह गीत कृतज्ञता है उस दोस्त के लिए जो बिना बताए जिंदगी संवार देता है।
1: बिल्कुल, जैसे आपने मेरी सवारी
0: आपने मेरी भी सवारी है।
1: तो भैया हम दोनों एक दूसरे की सवार लेते हैं जिंदगी, तब तक आप इस गाने को एंजॉय करिए।

0: अब आते हैं नेक्स्ट वाले सॉन्ग की ओर, जो है खुदा ही जुदा करे तो करे, कुदरत मूवी से, दोस्ती की आखिरी हद, जहां जुदाई भी इंसान नहीं सिर्फ तकदीर कर पाए,
1: जहां जुदाई भी इंसान नहीं सिर्फ तकदीर कर पाए। देखो इसमें क्या बताया गया है कि इंसान किसी इंसान को जुदा नहीं कर सकता। देखो कुछ ऐसे गलतफहमी हम लोग कह सकते हैं कि गलतफहमी हो गई, वो इंसान उससे बात नहीं करता या कुछ भी नहीं,
0: नाराजगी हो गई।
1: लेकिन अगर इसमें कहा गया कि सिर्फ तकदीर पर, तो तकदीर भी इंसान खुद से ही लिखता है। अगर देखो कहते नहीं कि भगवान ने लिखा है किस्मत, चलो ठीक है, लेकिन बाकी की किस्मत जो है दोस्त लिखते हैं। मेरा मानना ये है, आप क्या सोचते हो नहीं पता, बट किस्मत जो है दोस्त ही लिखते हैं।
0: और मेरा मानना एहसास जी यहाँ पे ये है कि जो हमारे दोस्त होते हैं उन्हीं के साथ रह के हम उनके फन में कहीं ना कहीं रंग जाया करते हैं, तो जो हमारे कर्तव्य होते हैं, जो हमारे कृत्य होते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं, वो नोटिस होते हैं हमारे ऊपर वाले के पास में, और वही हमारी तकदीर के रूप में आते हैं। तो भाई जब भी दोस्त चुनिए तो हमारी एहसास जी की तरह ही चुनिएगा। फिलहाल बढ़ेंगे इस नगमे की ओर और इसको सुन के आते हैं एक और नगमे के साथ में, और वहीं से आपसे बोलेंगे अलविदा। भाई आज की दोस्ती आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक देना।

तुम जो गिरो थामेंगे हम, तूफान हो चाहे किनारा हो, एक दूसरे का सहारा हो, कोई आपस जुदा।

0: बड़के
1: मुद्दा
0: मिस्की बाबू
1: पानी
0: पूरे ब्रांडी मामा
2: अब भाई चलने का वक्त आ गया है और चलते चलते एक बतौर तोहफा नगमा आपके पेश खिदमत करेगी आपकी अपनी आरजी अनोखी और हमारे साथ में हमारी आरजी यानी हमारी मित्रानी एहसास जी। तो ये नगमा कौन सा है जरा आप इस बार सजेस्ट करेंगी?
3: एक गाना है इमली का बूटा बेरी का पेड़ घर भी जाना है थोड़ा जल्दी करो।
2: ओके तो मतलब हमारी एहसास जी का कहना है कि अब घर चलने का वक्त हो गया है मतलब आप लोगों से अलविदा करने का वक्त हो गया है। तो भाई बतौर तोहफा ये गाना आप सुनिए जो कि है फिल्म सौदागर से और ये गाना कहीं ना कहीं बचपन की दोस्ती को दिखाता है जहां खट्टे मीठे बेफिक्रे और बेइंतहा सच्ची मोहब्बत और दोस्ती है जहां देर हो जाए पर दोस्ती साथ हो।
3: बचपन के दोस्त अब कहां मिलते हैं पर मिल जाए तो फिर उम्र मान नहीं रखती। सही बात है अगर बचपन के दोस्त मिल जाए ना तो कोई मान नहीं उम्र की कि किस एज के आप हो। वो सारी जिंदगी सारा जो बीता हुआ वक्त है वो पुरानी जितनी भी याद है। जैसे मैं अभी बैठी हूँ तो मुझे जब से मेरी इनकी दोस्ती हुई जब से हुआ तब से सब कुछ याद आ रहा है सब रिवाइंड हो रहा है माइंड में। तो सारी उम्र का कोई लिहाज नहीं है दोस्ती में और ना होना उम्र का लिहाज होना ही नहीं चाहिए किसी दोस्ती में। अभी हम ही लोग को ले लीजिए अगर देखा जाए तो हम लोग की दोस्ती माशाल्लाह 10 साल हो गया 12 साल और इंशाल्लाह मैं चाहूंगी कि लाइफ टाइम ये दोस्ती चले।
2: बेशक आमीन। और दोस्ती कोई ट्रेंड नहीं है ये वो राग है जो हर दौर में गूंजता है और अब जब ये गाना बजते और अब जब ये गाना बजेगा किसी ना किसी की दोस्ती आपको जरूर याद आने वाली है। तो याद करिए अपने दोस्त को और सुनिए रेडियो गानसले 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मुझे दे इजाजत मेरी यानी मेरी प्यारी आरजे एहसास के साथ में मैं थी आपकी अपनी आरजे अनोखी। गुड नाइट शुभ रात्रि शपथ।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।

9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।